मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज मंगलवार है, सक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि यानी 9 जून 2026 इस समय सुबह के 5:56:56 हुए हैं। अब आज की हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में मैं आपके साथ हूँ, आपके रेडियो मित्र रश्मि राहुल। सभी श्रोताओं को रश्मि राहुल का नमस्कार।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को है। कुछ देर में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भार।

0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और DMK पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना के इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं समूह सुर में देशगान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के प्रारंभ में अभी आपको सुनवाया सामूहिक स्वर में देशगान। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मंगलवार है, तो आइए कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं पंडित राजन और साजन मिश्र के द्वारा भगवान श्री हनुमान को याद करते हुए ये भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। तो आइए श्री राम के चरणों में नमन करते हैं और कार्यक्रम में ए हरिहरन की आवाज़ में ये कार्यक्रम का अगला भजन सुनते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। तो आइए कार्यक्रम में आप सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में कार्यक्रम का ये अंतिम भजन।

शाम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं और ध्यान दें तो एक नया अर्थ सामने आता है। रंग भी शाम है और पिया भी शाम है, तो शाम रंग में पिया मोरी रम दे चुनरिया। शब्दों की ओर ध्यान दें।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा के स्वर में गाया हुआ ये भजन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना इसी भजन के साथ ही संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। चिंतन के इस कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं मन मंदिर पर ओकार सिंह भदौरिया के का आलेख। वाचक स्वर है यतीन्द्र चतुर्वेदी का।
1: मनुष्य की आवश्यकताएं कई तरह की होती हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा आदि मनुष्य की भौतिक या शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। शिक्षण, प्रशिक्षण, पठन पाठन, ज्ञानार्जन आदि मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं होती हैं। मनोरंजन करना और मन की शांति प्राप्त करना मनुष्य की मानसिक आवश्यकताएं होती हैं। समाज के सभी लोग अपनी अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार अपनी शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मन की शांति के लिए लोग अनेक प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं। इसके लिए कोई मस्जिद में जाता है, कोई गिरजाघर में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई मंदिर में जाता है और वहाँ पर अपने इष्ट देव या ईश्वर का स्मरण, ध्यान, वंदन और पूजन करता है। मन की शांति के लिए कोई सत्संग करता है तो कोई भगवान के भजन कीर्तन गाता है। मंदिरों में सेठ साहूकार भी जाते हैं और चोर डकैत भी जाते हैं, सदाचारी भी जाते हैं और दुराचारी भी जाते हैं, परंतु जाते वही लोग हैं जिन्हें ईश्वर के प्रति विश्वास होता है और ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा होती है। सच बात तो ये होती है कि जिन लोगों के मन में ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास होता है और उनके प्रति श्रद्धा भी होती है, उनके मन ही मंदिर बन जाते हैं। परंतु जिन लोगों के मनों में ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं होता है, उसके प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं होती है, उनके लिए मंदिर ईश्वर का वास स्थान नहीं बल्कि ईंटों, पत्थरों, लकड़ी व लोहे का एक ढांचा मात्र होता है। पत्थर एक निर्जीव पदार्थ होता है जिसको तराश कर मनुष्य अपनी कल्पना के अनुसार अपने इष्ट देव या ईश्वर की मूर्ति बनाता है और मंदिर में स्थापित करवा देता है। जिन लोगों को ईश्वर के प्रति विश्वास होता है और उसके प्रति श्रद्धा होती है, उनको मंदिर में स्थापित मूर्ति साक्षात ईश्वर के समान प्रतीत होने लगती है। परंतु श्रद्धाहीन व्यक्तियों को वही मूर्ति मात्र सोना, चांदी, तांबा या पत्थर की वस्तु नजर आती है। समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अमीरी में और गरीबी में, सुख में और दुख में सदैव ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं। वे अपने ईश्वर या इष्ट देव को हमेशा स्मरण करते रहते हैं, उसका पूजन करते हैं। वे ईश्वर को कभी भूलते नहीं हैं। परंतु समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी अमीरी आ जाने पर, थोड़ा सा सुख मिल जाने पर, थोड़ा सा यश मिल जाने पर इतराने लगते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। वे ही लोग अचानक कोई संकट या कष्ट आ जाने पर और गरीबी आ जाने पर ईश्वर के प्रति विश्वास रखने लगते हैं। वे अपने संकटों एवं कष्टों का निवारण करने के लिए ईश्वर से गिड़गिड़ाने लगते हैं। संकट या कष्ट आने के पहले उन्होंने भले ही बहुत कुकर्म किए हों और उनके मनों में गंदे विचार रहे हों, परंतु संकट और कष्ट आ जाने पर उनके मनों से गंदे विचार हट जाते हैं, उनके स्थान पर अच्छे विचार आ जाते हैं, उनके मन पवित्र हो जाते हैं, उनके मन ही मंदिर बन जाते हैं। समाज में मंदिरों का होना जरूरी होता है क्योंकि वे श्रद्धा तथा विश्वास के केंद्र होते हैं। परंतु मंदिर श्रद्धा और विश्वास के केंद्र तभी बन पाते हैं जब सभी लोगों के मन निश्चल व निष्कपट अर्थात पवित्र हो जाएं और उनको ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास हो जाए, उनके प्रति सच्ची श्रद्धा भी पनप जाए। ऐसा हो जाने पर ही मंदिरों का होना सार्थक हो सकता है। ईंटों तथा पत्थरों से बनवाए गए मंदिर सही मायनों में तभी मंदिर बन पाएंगे जब लोगों के मन भी मंदिर बन जाएंगे।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आज आपने सुना मन मंदिर। इस विषय पर ओकार सिंह भदौरिया का आलेख और वाचक स्वर था यतीन्द्र चतुर्वेदी का। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं तो लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

श्री राम भक्त ऐसा मानते हैं कि चैत्र मास की नवमी तिथि को सभी तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। श्रद्धालुजन पवित्र सरयू में स्नान करते हैं। इस पवित्र नदी के दर्शन, स्पर्श और जल के पान से सभी पाप मिट जाते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्यापुरी मोक्षदायिनी है। श्रद्धा की इसी भावना से गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्मल कथा के लेखन का आरंभ यहां किया। रामचरितमानस को सुनने मात्र से अपूर्व शांति मिलती है। विषय वासना की आग में जलता मन रूपी हाथी यदि इस मानस रूपी सरोवर की शरण आ जाए तो उसे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनियों के प्रिय इस मानस रूपी कथा की रचना देवाधिदेव महादेव ने की थी। सो अवसर आने पर मन में रची ये कथा उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई। उसी सुखदायिनी कथा का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। भगवान शंकर की कृपा से उनमें सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप वो एक समर्थ तथा श्रेष्ठ कवि कहलाने के अधिकारी हुए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं, तो लीजिए प्रस्तुत है कृषि चर्चा। सामाजिक चर्चा के अंतर्गत आज आप सुनेंगे गाजर घास खरपतवार का नियंत्रण क्यों और कैसे। जानकारी दे रहे हैं SS चौधरी। तो आइए सुनते हैं कृषि चर्चा।
1: किसान भाइयों, गाजर घास खरपतवार, जिसे हम चटक चांदनी के नाम से भी जानते हैं, ये सभी जगह खेतों, खलिहानों, नालों, सड़क के किनारे, घरों के आसपास बहुत ही तेजी से चारों ओर फैल रहा है। ये एक समस्याजनक खरपतवार है। इसका कुप्रभाव मनुष्य व पशुओं के स्वास्थ्य पर तो पड़ता ही है, साथ ही ये फसलों और चरागाहों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। इसका नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा फसलों को उगाने की जगह नहीं रहेगी, पशुओं को चारा नहीं मिलेगा और अधिकांश आबादी एक्जिमा और चर्म रोगों से पीड़ित हो जाएगी। निकट भविष्य में हमारे सामने एक बड़ा संकट आ सकता है, तो हमें समन्वित रूप से इसके नियंत्रण के प्रयास करने चाहिए। गाजर घास का पौधा उचित जलवायु और तापक्रम मिलने पर बहुत ही तेजी से बढ़ता है। ये पौधा 100 से 130 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। इसकी पत्तियां गाजर या सेवंती से मिलती जुलती हैं। इसके फूल छोटे और सफ़ेद होते हैं और गुच्छों में लगे होते हैं। 30 से 300 पुष्प गुच्छ प्रति पौधा हो सकते हैं। इसके बीज बहुत ही छोटे, लगभग 2000 बीज प्रति पौधा होते हैं। बीजों की अंकुरण क्षमता लगभग 75% और इनकी कोई सुषुप्तावस्था भी नहीं होती। गाजर घास का पौधा अपना जीवन चक्र करीब 125 दिनों में पूरा कर लेता है। इसके 40 दिन बाद फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं। किसान भाइयों, गाजर घास खरपतवार के नियंत्रण हेतु समन्वित कार्यक्रम की आवश्यकता है, क्योंकि भूमि किसी एक ही संस्था या व्यक्ति के कब्जे में तो है नहीं। तो गाजर घास खरपतवार के नियंत्रण के लिए पड़ती और फसली क्षेत्रों में अलग अलग उपाय किए जा सकते हैं। फसली क्षेत्रों में हल बखर चला करके नष्ट कर सकते हैं। मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें, इससे इसके बीज गहराई पर चले जाते हैं और अंकुरण भी नहीं हो पाता। एक बीजपत्री फसलों में 20 दिन बाद की अवस्था पर 2,4-D खरपतवार नाशी दवा 1 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें। पड़ती भूमि में गाजर घास खरपतवार को नियंत्रित करने का सबसे सरल और सस्ता उपाय है 15% नमक के घोल का छिड़काव, जिसे 500 लीटर घोल प्रति हेक्टेयर की दर से अगर छिड़का जाए तो समूल नष्ट किया जा सकता है। 15% नमक का घोल पौधे की प्रत्येक अवस्था पर असर करता है, परंतु पुष्पन अवस्था के बाद संपूर्ण भाग को उपचारित करना जरूरी है। यदि कुछ पौधे ना मरें तो दूसरी बार छिड़काव करना चाहिए, लेकिन अच्छा तो ये रहता है कि फूल आने के पहले ही गाजर घास को हम नष्ट करें। हाथ में दस्ताने पहनकर ही उखाड़ें और जला दें। क्योंकि गाजर घास के बीज साल भर उगते हैं, इसलिए इन तरीकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार 3 या 4 बार भी करना पड़ सकता है। सड़क के किनारे व खाली स्थानों में फूल आते समय ही इसे काट देना चाहिए या ट्रैक्टर चला करके नष्ट कर दें। इस प्रकार इसका फैलाव कम होगा और नियंत्रण करने में सुविधा रहेगी। किसान भाइयों, गाजर घास के संपर्क में आने से मनुष्य व पशु दोनों को हानि होती है। इसके पराग कणों द्वारा एलर्जी होती है। इसका लक्षण जो मनुष्यों में दिखाई देता है वह है खुजली, उसके बाद लाला में सूजन और फफोले तक चेहरे व गले में पाए जाते हैं। इसके बाद कोहनी और घुटनों में फैल जाता है। क्रांतिक अवस्था में प्रमुख लक्षण चमड़ी का मोटा व काला होना है। जानवर जब इसके संपर्क में आते हैं गाजर घास के, तो इसके प्रभाव से अयन तथा पूरे शरीर में चर्म रोग हो जाता है। भेड़ बकरी तथा मुर्गियों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कभी कभी जानवर इसे खा लेते हैं और बुरा प्रभाव पड़ता है, तो इसका नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी है।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। सामायिक चर्चा के अंतर्गत आज आपने सुना गाजर घास खरपतवार का नियंत्रण क्यों और कैसे, जानकारी दे रहे थे SS चौधरी। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है सूचना पर कार्यक्रम दर्पण।

जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। 1000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0% जीएसटी है, जबकि 1000 से 2499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2500 से लेकर 7499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण अब आप मीडियम वेव के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से ऐप न्यूज ऑन AIR और फिर लाइव रेडियो के ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए AIR ग्वालियर पर और जुड़ जाइए हमसे। तो सुनते रहिए कभी भी कहीं भी आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
3: सड़क पर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। जेब्रा क्रॉसिंग पर अपने वाहन की गति धीमी रखें। हमेशा सड़क के बाईं ओर चलें क्योंकि दाहिनी ओर से वाहन ओवरटेक करते हैं। कभी भी वाहन के बाईं ओर से ओवरटेक ना करें। सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड्स के निर्देशों का पालन करें। बेवजह हॉर्न ना बजाएं और बड़े वाहनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।
4: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने
5: जाना। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सूचना पर कार्यक्रम दर्पण। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही देर में संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनप्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
6: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत।

0: ये रक्षा सैन्य दलानां केंद्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां राज्य केंद्र शासित प्रदेशयोः आरक्षकेभ्यश्च सप्त कीर्तिचक्राणि पञ्चदश वीरचक्राणि एकोनत्रिंशत् शौर्यचक्राणि च प्रदत्तानि। जम्मूनगरस्य अन्ताराष्ट्रिय सीमायां कर्तव्यपारायणतावधौ प्राणत्यागं कृतवन्तौ बीएसएफ इत्यस्य आरक्षकं दीपक चिंगखम इत्यमुं उपनिरीक्षकं मोहम्मद इम्तियाज इत्यमुं च मृत्योपरांतं वीरचक्रं प्रदत्तम्। आंध्रप्रदेशे गतसायं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इत्यस्य विशाखापत्तनम स्टील प्लांट इत्यत्र महते अग्निदुर्घटनायां अष्ट जनाः मृताः, अन्ये षट् जनाः च व्रणिताः अभवन्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमन्त्री एन चन्द्रबाबू नायडू च अस्यां दुर्घटनायां मृतजनानां प्रति शोकं प्रकटितवन्तः। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्रिणा प्रत्येकस्य मृतकस्य निकटवर्तिसदस्यस्य कृते द्विलक्षरूप्यकाणां, व्रणितानां कृते पञ्चाशत्सहस्ररूप्यकाणां च अनुग्रहराशेः घोषणा कृता। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां भूपत्तनप्रबन्धनव्यवस्थायाः LPMS इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिकतन्त्रज्ञानसक्षमसीमाप्रबन्धनव्यवस्थायाः कृते महत्त्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। सप्तचत्वारिंशदधिकद्विसहस्रतमवर्षपर्यन्तं व्यापारसौकर्यं, सम्पर्कं, राष्ट्रियसुरक्षां, विकसितभारतस्य दृष्टिकोणं च सुदृढं कर्तुं लक्ष्येन सह एतत् मञ्चः संरेखितः अस्ति। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः पश्चिमबङ्गस्य विकासयात्रां त्वरितं कर्तुम् उपायेषु विचारं कर्तुं पश्चिमबङ्गस्य मुख्यमन्त्रिणा शुभेन्दु अधिकारिणा सह नवदिल्ल्यां मेलनं कृतवती। राज्यविभिन्नेषु क्षेत्रेषु ऋणप्राप्तिविषये, सर्वकारस्य योजनानां कार्यान्वयनस्य विषयेऽपि चर्चा जाता। वित्तमन्त्री सीतारामनः अघोषयत् यत् राज्यसर्वकारेण सह निकटसमवायेन प्रधानमन्त्रिमुद्रायोजना, प्रधानमन्त्रिजनधनयोजना, प्रधानमन्त्रिजीवनज्योतिबीमायोजना, प्रधानमन्त्रिसुरक्षाबीमायोजना, अटलपेन्शनयोजना, प्रधानमन्त्रिस्वनिधियोजनादीनां नवीकृतसन्तृप्ति अभियानं प्रत्येकं योग्यं लाभार्थिम् आच्छादयितुं क्रियते। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् नवान्वेषणैः वैश्विक सहभागित्वेन अन्ताराष्ट्रिय आपणे प्रवेशस्य विस्तारेण च आगामिषु पञ्चवर्षेषु भारतस्य औषध निर्माण उद्योगस्य आकारः द्विगुणितः भविष्यति। श्रीगोयलवर्यः ह्यः नवदिल्ल्यां फार्मास्यूटिकल क्षेत्रस्य वैश्विकराजदूतसम्मेलनं 26,000 ग्लोबल ड्रग रेगुलेटर्स कॉन्क्लेव तथा 26,000 फार्मा एंड हेल्थ केयर इत्यस्य अन्ताराष्ट्रिय प्रदर्शन्याः पूर्वालोकन समारोहं च सम्बोधयन् इदमुक्तवान्। केन्द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी वर्यः अवदत् यत् नरेन्द्र मोदिनः सर्वकारस्य द्वादश वर्षेषु भारतस्य अंगार खनन क्षेत्रयोः महतीं परिवर्तनम् अभवत्। महिला क्रिकेट क्रीडायां यूनाइटेड किंगडम देशस्य कार्डिफ नगरे 26,000 आईसीसी महिला विंशति प्रति विंशति विश्वचषक क्रीडायाः प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं 26 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था

0: और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपये का स्मारक सिक्का और 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में कल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हो चुके हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम की प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार ये हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकट तम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। दुर्घटना की जांच जारी है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले शामिल थीं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये शुल्क नहीं लगाया जा सकता। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। ये फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज दम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:05 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले जानकारी हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रमों के बारे में। तो अब से कुछ ही देर में यानी 7:20 पर आप सुनेंगे आदिवासी संस्कृति और बिरसा मुंडा पर डॉक्टर मनीष जैसल से के द्वारा एक वार्ता। 7:30 पर आप आनंद ले पाएंगे फिल्म संगीत का। 8:30 पर होगा लोक संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे कमल सिंह कुशवाहा व साथियों के द्वारा लोकगीत। सुबह 9 बजे

आप सुन सकेंगे सूचना और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। 9:30 पर होगा शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत आज आप सुन पाएंगे अब्दुल राशिद खां के द्वारा सारंगी पर राग अहीर भैरव। 10 होगा कार्यक्रम जिले की चिट्ठी, जो हमारे भोपाल केंद्र द्वारा अनुप्रसारित की जाएगी। 10:05 पर आप एक बार फिर आनंद लेंगे व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का। साथ ही बता दें फिल्म संगीत का आप आनंद ले पाएंगे 11:00, 12:00 और दोपहर 2:00, 2:30 पर। महिला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 1:00, 1:30 पर होगा लोक संगीत कार्यक्रम। 1:45 पर आप सुन सकेंगे सुगम संगीत। ये तीनों ही कार्यक्रम हमारे इंदौर केंद्र की प्रस्तुति होंगे। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रमों के बारे में। तो आइए अब जानकारी ले लेते हैं हमारी द्वितीय सभा के कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोताओं, शाम 5 बजे आप सुन सकेंगे 5:02 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी। फिल्म संगीत का आप आनंद ले पाएंगे शाम 5:33 पर, 8:15 पर, रात्रि 10 बजे आपकी फरमाइश के अंतर्गत। NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6 बजे। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल आप सुन सकेंगे शाम 7:20 पर, जिसमें चर्चा के विषय होंगे डिजिटल इंडिया और यातायात के नियमों का पालन करें, सतर्क रहें। साथ ही इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप एक फोन आउट कार्यक्रम कृषक प्रेरणा आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फोन पर मौसम संबंधी जानकारी और कृषि सामायिक वार्ता को भी सुन सकेंगे। रात्रि 9:30 पर आप सुन सकेंगे उर्दू कार्यक्रम कहकशा। रात्रि 10:30 पर कार्यक्रम होगा राग रजनी। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारी द्वितीय सभा के कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोताओं, 7:20 पर आप सुनना ना भूलें हमारी स्पेशल वार्ता आदिवासी संस्कृति व विरसा मुंडा पर डॉक्टर मनीष जैसल के द्वारा वार्ता। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारी प्रथम सभा और द्वितीय सभा दोनों ही सभाओं के कार्यक्रमों के बारे में।

इसी के साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार हमारे भोपाल केंद्र द्वारा अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: सबसे पहले मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 5 दिवसीय बैठक आज से इंदौर में, खेती किसानी पर होगा मंथन। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज प्रदेश भर में आयोजित होंगे विशेष मातृत्व स्वास्थ्य शिविर। HPV टीकाकरण अभियान में मध्यप्रदेश शीर्ष राज्यों में शामिल। और प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसून गतिविधियों ने पकड़ा जोर। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 5 दिवसीय बैठक आज से इंदौर में शुरू होगी। इसमें 20 देशों के कृषि मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। कल भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस आयोजन को भारत और विशेष रूप से इंदौर सहित मध्य प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण अवसर बताते हुए इसकी रूपरेखा साझा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अध्यक्षता में हो रहा यह आयोजन खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि, छोटे किसानों के सशक्तिकरण और कृषि नवाचार जैसे वैश्विक मुद्दों पर ठोस दिशा तय करेगा।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि सुरक्षित मातृत्व प्रत्येक महिला का अधिकार है। राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रदेश की सभी गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों से अपील की है कि वे 9 जून को आयोजित विशेष प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविरों में पहुंचकर निःशुल्क जांच, परामर्श और उपचार सुविधाओं का लाभ अवश्य लें। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था दी समय पर जांच और उच्च जोखिम स्थितियों की शीघ्र पहचान से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है और सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित किया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा है कि इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में संचालित करते हुए प्रत्येक गर्भवती महिला तक गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाई जा सके। मध्य प्रदेश HPV टीकाकरण अभियान में शीर्ष राज्यों में शामिल है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अभियान से जुड़े चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, ANM शिक्षकों, जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें सफलता के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अभियान राज्य की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाकर सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य अमले, सहयोगी विभागों की प्रतिबद्धता, सतत मॉनिटरिंग के परिणाम स्वरूप प्रदेश में 7.63 लाख से अधिक पात्र बालिकाओं का सफलतापूर्वक HPV टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपये का स्मारक सिक्का और 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग द्वारा उद्यम स्वरोजगार योजना में दी जाने वाली सब्सिडी व ऋण सहायता सुलभ और समय में देकर उसके उपयोग की निगरानी भी की जाए। विभाग अपनी विभागीय प्रक्रिया को पूरी कराने के अलावा संबंधित हितग्राही को बैंक से समुचित सब्सिडी ऋण दिलाने में भी हितग्राही का सहयोग करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल विभागीय योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्तियां उसी वर्ष तय तारीख तक आवश्यक रूप से वितरित कर दी जाएं जिस वर्ष में वो छात्रवृत्ति दे है। विभागीय अधिकारी इसके लिए स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों से बेहतर समन्वय करके काम करें। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।

ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर परिषद की सहमति ली जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव से हंस 2028 की तैयारियों के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति और योजना तथा आर्थिक सांख्यिकी विभाग की बैठक भी लेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने कहा है कि मतदान सबसे पवित्र अधिकार है, उससे कोई भी पात्र मतदाता वंचित नहीं रहे। साथ ही कोई भी अपात्र मतदाता मतदान के अधिकार का उपयोग नहीं कर सके। उन्होंने भारतीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा में कहा कि नाम जोड़ने और हटाने का कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा करें। प्रारूप मतदाता सूची में दावे आपत्ति 15 जून तक लिए जाएंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 25 जून तक किया जाएगा और फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 जुलाई को किया जाएगा। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन और सतत पर्यावरण प्रबंधन के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया जा रहा है। इसको वैज्ञानिक तथा तकनीक आधार प्रदान करने की दिशा में मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जल स्रोतों के संरक्षण, पुनर्जीवन और भूजल प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मेपकास द्वारा विभिन्न वैज्ञानिक दस्तावेज और एटलस तैयार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जलगंगा संवर्धन अभियान वर्ष 2026 के अंतर्गत मेपकास द्वारा उपग्रह छायाचित्रों पर आधारित महत्वपूर्ण वैज्ञानिक दस्तावेज भूजल एटलस अंतर्जली तैयार किया गया है। इसके तहत भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर जिलों के भूजल एटलस तैयार कर संबंधित विभागों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे भूजल प्रबंधन और जल गुणवत्ता का आकलन प्रभावी होगा। क्रिकेट में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 से पहले खेले गए अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। ब्रिटेन के कार्डिफ में कल खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। भारत का अगला अभ्यास मैच कल मेजबान इंग्लैंड से होगा। वहीं विश्व कप में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत रविवार को एजबिस्टन में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसूनी गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। मौसम विभाग ने राज्य के ग्वालियर, सागर, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, भोपाल संभागों के कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रदेश में मानसून 15 से 18 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने के अवसर पर आज खंडवा और श्योपुर जिलों में हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष प्रसव पूर्व जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आगरमालवा कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में प्राकृतिक और जैविक खेती के रकबे में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। मंदसौर में मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। गुना में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। धार जिले में आगामी दिनों में विभिन्न धार्मिक त्योहार जुलूसों के संबंध में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने आगामी कानून व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने नवीन तहसील और एसडीएम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। कटनी में भी मलेरिया निरोधक माह के अंतर्गत जिले में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मलेरिया जागरूकता रथ को रवाना किया गया। डिंडौरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से समस्याग्रस्त बसाहटों में सार्वजनिक उपयोग हेतु 46 नवीन नलकूप खनन और हैंडपंप स्थापना कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है आदिवासी संस्कृति और विरसा मुंडा पर डॉक्टर मनीष जैसल के द्वारा वार्ता।

नमस्कार। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन। भारत का इतिहास केवल राजाओं, उनके द्वारा लड़े गए युद्धों और बड़े राजनीतिक आंदोलनों की कहानी भर नहीं है, यह उन लोगों की भी कहानी है जिन्होंने अपने समाज, अपनी संस्कृति और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। बिरसा मुंडा ऐसे ही एक महान जननायक हैं। आज उन्हें आदिवासी स्वाभिमान, सामाजिक न्याय और संघर्ष की प्रेरणा के रूप में याद किया जाता है। जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं तो हमारे मन में अक्सर महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं के नाम आते हैं, लेकिन इसी दौर में देश के जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में भी ऐसे नायक थे जो अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। 19वीं शताब्दी के अंत में छोटा नागपुर क्षेत्र के एक युवा ने अंग्रेजी शासन और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई तथा आदिवासी समाज में आत्मसम्मान और जागरूकता की नई चेतना पैदा की। वह युवा थे बिरसा मुंडा, जिन्हें उनके अनुयायी सम्मानपूर्वक धरती आबा अर्थात धरती पिता कहकर पुकारते थे। श्रोताओं, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। वे मुंडा जनजाति से थे और एक साधारण परिवार में पले बढ़े थे। उस समय अधिकांश आदिवासी परिवारों की तरह उनका परिवार भी खेती और जंगलों पर निर्भर था, लेकिन यह वह दौर था जब छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी समाज के सामने अनेक चुनौतियां खड़ी हो रही थीं। अंग्रेजी शासन की नई नीतियों के कारण जंगलों और ज़मीनों पर आदिवासियों के पारंपरिक अधिकार धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहे थे। जिन संसाधनों को वे पीढ़ियों से अपना मानते आए थे, उन पर अब प्रशासन, जमींदारों और महाजनों का नियंत्रण बढ़ता जा रहा था। बचपन से ही बिरसा ने अपने आसपास यह बदलता हुआ सामाजिक और आर्थिक माहौल देखा था। उन्होंने स्थानीय विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और कुछ समय मिशनरी स्कूल में भी अध्ययन किया। पढ़ाई के दौरान वे समाज में हो रहे परिवर्तनों को भी समझने लगे। तेज बुद्धि के, जिज्ञासु स्वभाव के और नेतृत्व की क्षमता से संपन्न थे। जैसे जैसे उनकी समझ बढ़ी, उनके मन में एक सवाल बार बार उठने लगा कि आखिर उनके अपने लोग अपनी ही धरती पर अपने ही जंगलों और संसाधनों से दूर क्यों होते जा रहे हैं। यही सवाल आगे चलकर उनके जीवन के मिशन और संघर्ष का आधार बना। श्रोताओं, बिरसा मुंडा के जीवन और उनके आंदोलन को समझने के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि उनका संघर्ष केवल अंग्रेजी शासन के खिलाफ नहीं था। वे केवल राजनैतिक स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने समाज की पहचान, संस्कृति और सम्मान को बचाने के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। इतिहासकार और मानव विज्ञानी डॉक्टर कुमार सुरेश अपनी चर्चित किताब बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट में लिखा है कि बिरसा का आंदोलन सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक जागरण और राजनीतिक चेतना, इन तीनों का संगम था। वे चाहते थे कि आदिवासी समाज अपनी जड़ों को पहचाने, अपनी परंपराओं पर गर्व करे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। उस समय छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी समुदायों की स्थिति बेहद कठिन थी। अंग्रेजी शासन की नई भूमि व्यवस्था ने सदियों पुरानी सामुदायिक व्यवस्था को कमज़ोर कर दिया था। बाहरी जमींदारों, महाजनों और ठेकेदारों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। जिन जमीनों पर आदिवासी पीढ़ियों से खेती करते आए थे, वे धीरे धीरे उनके हाथों से निकल रही थी। कई परिवार कर्ज, शोषण और अन्याय के कारण अपनी पैतृक भूमि खोने को मजबूर हो गए थे। समाज के सामने केवल आर्थिक संकट नहीं था, बल्कि अपनी पहचान और अस्तित्व को बचाने की भी एक चुनौती सामने थी। बिरसा मुंडा ने इस पीड़ा को गहराई से समझा। उन्होंने लोगों को समझाया कि जीवन केवल खेती का साधन नहीं है और जंगल केवल संसाधन नहीं है। इनके साथ लोगों की संस्कृति, परंपराएं, जीवन पद्धति और सामुदायिक स्मृतियाँ जुड़ी होती हैं। आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और स्थानीय समुदायों के अधिकार की बात कर रही है, तब बिरसा मुंडा के विचार और भी अधिक प्रासंगिक दिखाई देते हैं। उन्होंने बहुत पहले ही यह समझ लिया था कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध केवल उपयोग का नहीं, बल्कि साझेदारी और सह अस्तित्व का भी है। बिरसा मुंडा केवल राजनैतिक नेता नहीं थे, बल्कि वह समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने समाज को नशाखोरी, अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का भी संदेश दिया। वे स्वच्छता, अनुशासन और नैतिक जीवन के पक्षधर थे। उनका मानना था कि यदि समाज को मजबूत बनाना है तो पहले उसे भीतर से जागृत करना होगा। उनकी वाणी में बहुत अद्भुत आकर्षण था।
वे लोगों को केवल संघर्ष के लिए प्रेरित नहीं करते थे बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का भी पाठ पढ़ाते थे। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। लोग उन्हें एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक और सामाजिक नेता के रूप में भी देखने लगे। बिरसा ने अपने अनुयायियों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया था, अपने अधिकारों को पहचानो और अन्याय के सामने झुको मत। उनका प्रसिद्ध नारा था, अबुआ राज एते जाना, महारानी राज तुंदु जाना, यानी हमारा राज स्थापित होगा और महारानी का राज समाप्त होगा। 1890 के दशक में उनके नेतृत्व में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ वो आगे चलकर उलगुलान नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुंडारी भाषा में उलगुलान का अर्थ केवल विद्रोह नहीं बल्कि महान हलचल, महान जागरण या महान परिवर्तन भी माना जाता है। उलगुलान भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण जन आंदोलनों में से एक है। यह केवल हथियारबंद संघर्ष नहीं था बल्कि सामाजिक चेतना का एक आंदोलन था। इसका उद्देश्य था शोषण का अंत, भूमि अधिकारों की रक्षा और समुदाय के आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना। हजारों आदिवासी बिरसा के नेतृत्व में एकजुट हुए। अंग्रेजी शासन इस आंदोलन से चिंतित हो उठा। उन्हें लगने लगा कि छोटा नागपुर क्षेत्र में एक नई राजनैतिक चेतना जन्म ले चुकी है। आंदोलन का प्रभाव तेजी से फैलने लगा। 1899 और 90 के बीच संघर्ष तीव्र हो गया। अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के लिए सैन्य कार्यवाही शुरू कर दी। अनेक स्थानों पर झड़पें हुई, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए और कई लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान भी दिया। बिरसा मुंडा की आंदोलन को केवल अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक विद्रोह के रूप में देखना उनके योगदान की व्यापकता को सीमित कर देना होगा। वास्तव में उनका संघर्ष राजनैतिक प्रतिरोध से कहीं अधिक गहरा और बहुआयामी था। उन्होंने अपने लोगों को बताया कि जल, जंगल और जमीन केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं बल्कि उनकी संस्कृति, परम्परा और अस्तित्व की आधारशिला भी है। बिरसा मुंडा की सबसे बड़ी विशेषताओं में उनकी असाधारण नेतृत्व क्षमता भी शामिल थी। उन्होंने बिखरे हुए आदिवासी समुदायों को एक साझा उद्देश्य और सामूहिक पहचान के सूत्र में बांधने का कार्य किया। बिरसा मुंडा का सबसे स्थायी योगदान आदिवासी अस्मिता और स्वाभिमान की पुनर्स्थापना था। औपनिवेशिक शासन के दौर में आदिवासी समुदायों को अक्सर पिछड़ा, असंगठित और मुख्य धारा से अलग समझा जाता था। बिरसा ने इस मानसिकता को चुनौती दी। उन्होंने अपने लोगों को उनकी परंपराओं, ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक मूल्यों पर गर्व करना सिखाया। उनके आंदोलन ने आदिवासी समाज में आत्मविश्वास जगाया और आने वाली पीढ़ियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा दी। उनकी शहादत के बाद भी यह चेतना समाप्त नहीं हुई। उनके संघर्ष ने ब्रिटिश प्रशासन को आदिवासी भूमि अधिकारों, पारंपरिक व्यवस्थाओं के महत्व को स्वीकार करने के लिए आगे चलकर छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट 1908 जैसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आए जिन्होंने आदिवासी भूमि की सुरक्षा को कानूनी आधार प्रदान किया। आज भी भूमि अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक विविधता और स्थानीय स्वशासन जैसे जिन मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है उनमें बिरसा मुंडा के विचारों की स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देती है। बिरसा मुंडा की विशेषता यह थी कि उन्होंने केवल विरोध नहीं किया बल्कि समाज निर्माण का भी कार्य किया। उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने, अपनी संस्कृति पर गर्व करने और सामूहिक रूप से आगे बढ़ने का संदेश दिया। यदि हम उनके जीवन को व्यापक दृष्टि से देखें तो पाते हैं कि उन्होंने तीन महत्वपूर्ण बातें हमें सिखाई हैं। पहली, अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता आवश्यक है। दूसरी, सामाजिक परिवर्तन आत्मसम्मान से शुरू होता है। और तीसरी, प्रकृति और समाज का संबंध अविभाज्य है। आज स्वतंत्र भारत में बिरसा मुंडा की स्मृति राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बन चुकी है। उनके नाम पर विश्वविद्यालय, संस्थान, संग्रहालय, हवाई अड्डे और अनेक सार्वजनिक स्थल स्थापित किए गए हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी स्मृति लोगों के मन में है। वर्ष 2021 में भारत सरकार ने उनके जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। आज के युवाओं के लिए बिरसा मुंडा का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि परिवर्तन के लिए बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता होती है स्पष्ट उद्देश्य, साहस और समाज के प्रति समर्पण की। उन्होंने कभी व्यक्तिगत लाभ नहीं चाहा, न कोई पद, न कोई संपत्ति, न कोई विशेषाधिकार। उनका पूरा जीवन अपने लोगों के अधिकारों, सम्मान की रक्षा के लिए समर्पित रहा। हमें उन्हें इसलिए याद करना चाहिए क्योंकि उन्होंने स्वाभिमान का अर्थ हमें समझाया। हमें उन्हें इसलिए भी याद करना चाहिए क्योंकि उन्होंने वंचित समुदाय को आवाज़ दी। उन्होंने जल, जंगल, जमीन को केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार माना। उन्होंने अन्याय के सामने

0: रोकने से इनकार किया। और हमें उन्हें इसलिए भी याद करना चाहिए क्योंकि उन्होंने यह सिखाया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो स्वयं के पहले समाज के बारे में सोचता है। आज जब हम विकसित, समावेशी और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण की बात करते हैं, तब बिरसा मुंडा के विचार हमारी राह को और प्रकाशित करते हैं। सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक सम्मान, पर्यावरणीय संतुलन और लोकतांत्रिक भागीदारी जैसे जिन मूल्यों पर आज चर्चा हो रही है, उनके बीज हमें बिरसा के चिंतन में दिखाई देते हैं। श्रोताओं, आज 9 जून के अवसर पर हम जब बिरसा मुंडा को स्मरण कर रहे हैं, तब यह केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि देने का अवसर नहीं है, बल्कि उनके आदर्शों को याद करने का भी समय है जिनके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वर्ष 1900 में इसी दिन रांची कारागार में उन्होंने मात्र 25 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। जीवन भले ही छोटा रहा, लेकिन उनके विचारों की ज्योति आज भी समाज को दिशा दे रही है। उन्होंने अपने लोगों को स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस दिया और जल जंगल जमीन के महत्व को समझाया। आज भी उनका संघर्ष हमें यह संदेश देता है कि अपनी संस्कृति, अपने अधिकारों और अपने समाज के प्रति सजग रहना ही सच्ची प्रगति का आधार है। तो आइए इस महान जननायक को नमन करें, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आदिवासी संस्कृति और बिरसा मुंडा पर डॉक्टर मनीष जैसल के द्वारा ये वार्ता। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। नीचे प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत जिसे हमने लिया है एक महल हो सपनों का। इस फिल्म से गीत में आवाज़ है किशोर कुमार की। गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत दिया है रवि ने। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

अल्पविराम के पास स्वागत है एक बार फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। तो आइए कार्यक्रम में सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म उपहार से। गीत में आवाज़ है मुकेश की और गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आनंद लीजिए फिल्म उपहार के इस गीत का।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। GST परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा। यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। GST परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
4: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
6: अल्पविराम के बाद स्वागत है श्रोताओं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म एक फूल दो माली से लिया हुआ ये गीत। गीत को लिखा है प्रेम धवन ने, गीत और संगीत संगीत दिया है रवि ने, और इस गीत में आवाज़ है रवि की। तो आइए सुनते हैं फिल्म एक फूल दो माली का ये गीत।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
3: अल्पविराम के बाद स्वागत है श्रोताओं फिल्म संगीत में। तो आइए कार्यक्रम में आप सुनवाते हैं आपको फिल्म आनंद से लिया हुआ ये गीत, जिसे लिखा है योगेश ने। गीत में आवाज है मन्ना डे की और संगीत दिया है सलील चौधरी ने। तो आनंद लीजिए फिल्म आनंद के इस गीत का।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत में प्यारे से गीत। तो आइए कार्यक्रम में अब सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है मुकेश की आवाज़ में फिल्म बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म से। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

श्रोता, अभी आपने सुना फिल्म एक फूल जो बन गया मोती से ये गीत मुकेश की आवाज़ में। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही देर में समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र द्वारा अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का

0: शुल्क रद्द किया और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गृह मंत्रालय ने कहा है ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
3: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
5: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
4: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले

0: में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 186,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
1: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाके ठीक ठाक रह रहा हूँ।
0: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जाँच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांतिवार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने

0: पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारती फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दामबुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Union Home Minister Amit Shah to launch land port management system in New Delhi today. 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merivale after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. US federal court strikes down President Donald Trump's $1,00,000 H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation series at Dambulla this morning. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं कमल सिंह कुशवाहा व साथियों के स्वरों में गाया हुआ लोकगीत। तो आइए इनके द्वारा सुनते हैं ये ढोला।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं कमल सिंह कुशवाहा और उनके साथियों के स्वरों में गाया हुआ लोक संगीत। तो आइए इनके द्वारा सुनते हैं अब ये ढिमरियाई लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं लोक संगीत, और लोक संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं कमल सिंह कुशवाहा साथियों के द्वारा गाए हुए लोकगीत। तो आइए इनके द्वारा सुनते हैं ये देवी गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं कमल सिंह कुशवाहा व साथियों के स्वरों में गाए हुए कुछ लोकगीत। तो आइए इनके द्वारा सुनते हैं ये चेतावनी लोकगीत।

खाद्य सुरक्षा, कृषि और किसानों के सशक्तिकरण पर ब्रिक्स देशों की बैठक आज से इंदौर में शुरू हो रही है। 5 दिवसीय इस बैठक में 20 देशों के कृषि मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया को बताया कि बैठक में कृषि नवाचार जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर परिषद की सहमति ली जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव सिंह 2028 की तैयारियों के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति और योजना तथा आर्थिक सांख्यिकी विभाग की बैठक भी लेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रदेश में इस अवसर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि सुरक्षित मातृत्व प्रत्येक महिला का अधिकार है। उन्होंने राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों से अपील की है कि वे आज आयोजित होने वाले शिविरों में पहुंचकर स्वास्थ्य जांच अवश्य कराएं। और क्रिकेट में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 से पहले खेले गए अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया है। भारत का अगला अभ्यास मैच कल इंग्लैंड से होगा। वहीं विश्व कप में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत रविवार को एजबेस्टन में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम पे 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजे हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है सूचना और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

गुड मॉर्निंग ग्वालियर सुनने वाले सभी श्रोताओं को रश्मि राहुल का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और हमारे इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम भी तो करते हैं आपका इंतज़ार, क्योंकि हमें आपको देनी होती है ढेर सारी जानकारियाँ। तो आइए कार्यक्रम में सबसे पहले बात करते हैं बदलते मौसम की। जैसा कि आपने देखा था कि अभी गर्मी ने ज़ोर शोर से अपना आगाज़ किया था, फिर नौतपे के समय पर मौसम का बदलाव और थोड़ी सी ठंडक और राहत हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से गर्मी ने दस्तक दी है, यानी कि दोपहर के समय पर तापमान ने बढ़ोतरी की है। हालांकि देखा जाता है कि कल के मौसम में थोड़ा सा बदलाव यानी थोड़े से बादल, थोड़ी सी नरमी भी रही, लेकिन फिर से गर्मी अपना प्रकोप जारी रखा। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो 41.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.7

0: डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन फिर भी गर्मी में अभी ज़्यादा सुधार होने की बिल्कुल भी आप इच्छा नहीं करेंगे। और लेकिन अगर आपकी इच्छाएं बाहर जा कर घूमने की हैं तो एक बार ज़रूर अपने आप को ढक कर रखेंगे, गर्मी का प्रकोप बढ़ सकता है, इसलिए अपने आप अपने शरीर का तापमान नियंत्रित रखने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा लू लपट वाली जगहों पर नहीं जाएंगे। अगर जाने का प्रयास भी है या फिर ज़रूरत होने पर जाना भी पड़ रहा है तो ऐसे में फुल कपड़े पहनेंगे, यानी कि सूती कपड़े, पतले और ऐसे जो हमारे पसीनों को सोख सकें ऐसे कपड़े ज़रूर पहनेंगे, और जहाँ पर जाएंगे अपने शरीर को पूरा तरीके से ढक कर ही जाएंगे। ये तो है आपके स्वास्थ्य की, हमें है बहुत चिंता, इसलिए हम देते हैं इस तरह की जानकारी कि हमारे तापमान, हमारे शरीर का तापमान भी हमारे बदलते हुए तापमान से मेल जोल खाए, यानी कि नियंत्रित रहे हमारा तापमान, हम स्वस्थ रहें, तभी तो हम ये कार्यक्रम सुन पाएंगे, तभी तो हम आपको बहुत सारी जानकारियाँ दे पाएंगे। इसलिए कार्यक्रम में हमेशा हमसे जुड़ें और बहुत सारी जानकारियों के लिए, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए भी इसी तरह से हमें हर बार हर रोज़ मिलते रहें। अब तो बात हो गई जब तापमान की, तो आइए एक छोटे से अल्प विराम के बाद फिर से हाजिर होते हैं कार्यक्रम में।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: बिल्कुल, हम भी कहते हैं कि आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, और बिल्कुल अपने आसपास भी लोगों को बिल्कुल सतर्क रहने के लिए बोलिए। और जहाँ तक हो सका सके हम बात कर रहे थे कि मानसून की, बदलते हुए तापमान की, तो आइए इसी विषय से जोड़ते हैं इस बात को, यानी कि बदलते हुए मानसून को हम जब बदलते हुए तापमान को जब हम देखते हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है कहीं ना कहीं हमें छाया और राहत की इच्छा होती है, तो वो छाया और राहत भी हमारे हाथ में ही है दोस्तों। बिल्कुल, अब जैसे कि आपको पता है कि अभी गर्मी का मौसम है और जल्द ही ये मौसम परिवर्तित होगा, यानी कि बारिश के रूप में आने वाले मानसून के लिए हमें तैयार भी तो होना पड़ेगा। बारिश के रूप में जब आएगा तो हमें भी तो उपहार स्वरूप मानसून को कुछ देना पड़ेगा, यानी कि हमें भी अगर चाहिए राहत तो क्यों ना हम भी इस राहत के कदम में आगे बढ़ें। यानी कि देखा जा रहा है कि बदलते मौसम को मैं राहत केवल पानी नहीं दे सकता, हमारे आसपास की हरियाली, हमारा एक छोटा सा कदम भी अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये आगे राहत के लिए हमें और ज़्यादा आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, हमें एक अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पर्यावरण भी देगा। यदि हम एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा पौधा लगाकर करते हैं और पौधे लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक ही दिन यानी कि 5 जून को नहीं मनाया जाता है दोस्तों, अगर हम चाहें तो इसे हर रोज़ मना सकते हैं, आने वाले समय के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर हम चाहें तो हमारी एक छोटी सी कोशिश आने वाले कई पीढ़ियों, कई सालों, कई लोगों को आज की तपती हुई गर्मी और आगे आने वाली तापमान को नियंत्रित करने के लिए बहुत प्रयास कर सकती है। यह संकेत है कि अगर आज हम सचेत नहीं हुए और आज हमने कोई प्रयास नहीं किया तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए और ज़्यादा मुसीबतें, यानी कि और ज़्यादा तापमान बढ़ता हुआ दिखेगा हमें। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम न केवल एक दिन विश्व पर्यावरण दिवस या हरियाली दिवस मनाएं, बल्कि हर रोज़ प्रयास करें कि जब मौसम बदलता है, जब मानसून आए, उससे पहले हम एक छोटा सा पौधा लगाने का प्रयास ज़रूर करें, ना केवल हम बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा दें। जहाँ तक कि मौसम विभाग की अगर माने और तो उनका कहना है कि हमें बदलते हुए मौसम के हिसाब से, यानी कि इस समय गर्मी में पौधारोपण नहीं करना चाहिए। पौधारोपण करने के लिए उचित समय होता है कि पहली बारिश के बाद, जब मौसम में थोड़ी सी गर्मी बाहर निकल जाती है, ज़मीन धरती की गर्मी थोड़ी बाहर निकल जाती है और मिट्टी थोड़ी सी उपजाऊ हो जाती है, तब हमें पौधारोपण करना चाहिए। ऐसे में अधिक संभावना होती है कि आपने जितने भी पौधों का रोपण किया है, संभवतः वह सभी पौधे लग सकते हैं। और यदि आप उनकी समय समय से देख रेख कर सकें, यानी कि खाद, मिट्टी, पानी का क्या है, खाद, मिट्टी, पानी को हम किस तरह से उसमें देखते रहें, पानी समय समय से देते रहें, उसकी सुरक्षा करते रहें, और साथ ही उस पौधे में कितना बदलाव आया है, यानी कि वह मिट्टी उसके हिसाब से उपजाऊ है या नहीं, वहाँ पर भी हम ज़रूरत के हिसाब से उसे खाद या मिट्टी का बदलाव करते रहें, तो संभवतः है कि आगे आने वाले समय में वह पौधा ना केवल एक छोटा सा पौधा बल्कि एक बहुत बड़ा पेड़ का, यानी एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप ले लेगा, और आगे आने वाले दिनों में तापमान नियंत्रित करने में और आगे आने वाले दिनों में गर्मी में राहत देने का काम करेगा। तो ये प्रयास केवल एक दिन से नहीं बल्कि हर रोज़ होगा, यानी कि ना केवल आप, यदि आप एक पौधा लगाते हैं और आप किसी एक व्यक्ति को प्रेरित करते हैं एक पौधा लगाने के लिए, तो ये प्रयास आज, यानी कि हम एक 5 जून के विश्व पर्यावरण दिवस के अलावा हर रोज़ पर्यावरण दिवस बनाएंगे, और अगले आने वाले पर्यावरण दिवस पर हम यह बहुत खुशी से कह सकेंगे कि हमने पर्यावरण दिवस का एक सार्थक रूप मनाया है। तो आइए हम भी इस मुहिम में जुड़ जाते हैं, क्योंकि ग्वालियर के कई सारे ऐसे सामाजिक संस्थान हैं जिन्होंने यह पहल की है, तो क्यों ना हम भी इस पहल में जुड़ें, आगे बढ़ें, और इसी तरह से हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और आइए इस गीत के साथ आपको इस कार्यक्रम में आगे ले चलते हैं।

बिल्कुल दोस्तों, इस जोशीले से गीत के बाद हाजिर है आपके साथ गुड मॉर्निंग ग्वालियर इस कार्यक्रम में। और गीत से पहले हम बात कर रहे थे हमारी प्रकृति के संसाधनों को सहज के रखने की, हमारी आने वाली पीढ़ी को एक हरी भरी प्यारी सी धरती देने के लिए। ये प्रयास आज से नहीं दोस्तों, हमेशा से किया जा रहा है। यानी कि यदि हम आज के दिन की बात करें तो यह दिन एक महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी जननायक धरती आभा कहे जाने वाले बिरसा मुंडा के बलिदान की स्मृति के रूप में आज मनाया जाता है। यानी कि आज 9 जून 1900 में मात्र 25 वर्ष की आयु में इन्होंने एक नई मुहिम छोड़ी थी। एक नई मुहिम के अंतर्गत इन्होंने ना केवल आदिवासी क्षेत्र जो कि जंगल जमीन और हरियाली के लिए जाना जाता है, बल्कि उनकी स्वतंत्रता की भी बात की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले एक भारतीय आदिवासी धरती आभा कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की, जिनका आज शहादत दिवस है। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता सगुनापूर्ति और माता कर्मीपूर्ति थे। और यह जो है प्रारंभिक पढ़ाई के बाद चईबासा विद्यालय में पढ़ाई करने चले गए थे। 19वीं शताब्दी के अंतर्गत जब अंत में अंग्रेज़ों ने कुटिल नीति अपनाकर आदिवासियों को लगातार जंगल जल और जमीन और प्राकृतिक संसाधनों की से बेदखल करने लगे थे, तब इन्होंने एक नई मुहिम छेड़ी थी। यानी कि जंगल भी हमारा, जमीन भी हमारी और ये विरासत भी हमारी है, तो हम इन्हें दूसरों को कब्जा, जो बाहरी तत्व हैं उन्हें दूसरों को कब्जा करने के लिए अनुमति नहीं देंगे। और जब हम सब एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे तो ये सब हमारा ही रहेगा और हम ही इसके आगे भागीदार रहेंगे। यह जो है केवल एक जोश नहीं था, बल्कि एक लगाव था अपनी धरती के प्रति, एक प्यार था, एक आस्था थी हमारे जमीन धरती जंगल और हरियाली के लिए। इन्होंने इस बात का भरसक प्रयोग किया कि लोगों में यह जन जागरूकता आए कि जमीन केवल उनके लिए एक रहने मात्र निवास स्थान नहीं है, बल्कि हमारी आने आगे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए माँ है, हरियाली है, स्वतंत्रता है। इनके विद्रोह से कई सारे अंग्रेज़ों को इनके खिलाफ कर दिया और इस कारण से इन्हें कई बार प्रताड़नाएं भी दी गईं। इन्होंने फिर भी अपना जागरूकता का जो अभियान है वह जारी रखा, लेकिन एक बार पकड़े जाने के बाद इन्हें जो है प्रताड़नाओं के रूप में जेल में कई सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इसी आज के दिन इनकी शहादत के रूप में हम मनाते हैं। लेकिन इनके जो उद्देश्य था, इनका जो आगाज था, उसे आज भी हम इसी रूप में याद करते हैं कि ये धरती हरियाली जमीन ये हमारी केवल माँ या स्थायी निवास स्थान नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए सब कुछ है। इसी को हमें हरियाली को इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है, इसी तरह से हमें हमारी स्वतंत्रता को स्वतंत्र ही रखना है। और इन्हें हमेशा हम एक इस शहादत को हमेशा हम जो है याद रखेंगे। तो श्रोताओं, ऐसे ही हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद लीजिए, एक बार फिर से हाजिर है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में, जिसमें हम देते हैं आपको ढेर सारी जानकारियाँ और साथ ही आपका रखते हैं ख्याल गीत संगीत मनोरंजन से भी। और साथ ही हम तो चाहते हैं कि आप इसी तरह सचेत रहें अपनी प्रकृति के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, तो बिल्कुल रहना चाहिए हमें अपने धन संपदा के प्रति भी। यानी कि अब एक जो खबर जो आपके लिए है बहुत ज़रूरी, जिस तरह से हम देखते हैं कि कई बार हमें जब बैंक का कोई काम होता है या किसी आईडी का काम होता है

या फिर हमें कभी अपने वार्ड में कोई नगर निगम में, नगर पालिका में या किसी प्रकार के कोई भी ऑनलाइन काम होते हैं उसमें अक्सर करके हमें एक OTP आता है और OTP देने के बाद ही हमारा वो काम आगे हमारे ऑनलाइन सिस्टम पर चालू होता है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि फेक आईडी की वजह से या फिर OTP पता चलने की वजह से कई बार आप किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो ऐसे में कई बार आपको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो धीरे धीरे ये OTP सिस्टम जो है किसी किन्हीं किन्हीं चीज़ों पर, यानी कि जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं उन पर कम किया जा रहा है। इसमें सबसे पहली पहल की गई है सरकार द्वारा समग्र आईडी से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। आय, जाति, मूल निवासी, BPL, EWS, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी समग्र आईडी का प्रिंट निकलवाने में OTP की अनिवार्यता खत्म की जा रही है। यानी कि ऐसे में जब इतने सारे काम जो कि समग्र आईडी के द्वारा होते हैं उसे निकालने के लिए आपको एक OTP दिया जाता था पहले, जो कि आपके मोबाइल में आपके रजिस्टर्ड नंबर पर आता था, अब उसकी सुविधा बंद की जा रही है। जिसकी वजह से सबसे पहला तो ये होगा कि आपका काम होना थोड़ा आसान हो जाएगा और इसके साथ ही आपके कई सारे काम जो कि इसके द्वारा किए जाते हैं यानी कि समग्र आईडी से रिलेटेड होते हैं वह आपके लिए थोड़े से परेशानी का सबब नहीं बनेंगे। यानी कि यदि OTP लेट आता है फिर दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है, लंबी कतारों में लगना पड़ता है, तो ऐसे में आपको इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है। अब नई व्यवस्था में आवेदक का व उसके पिता का नाम, वार्ड, जोन, नगर निगम या नगर पालिका जैसे जिले की जानकारी दर्ज पर समग्र आईडी प्राप्त कर सकेंगे, उनका प्रिंट भी ले सकेंगे। साथ ही सरकार ने सभी विभागों की योजनाओं में समग्र आईडी को अनिवार्य किया है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर पंजीयन का साथ समग्र आईडी के आधार को से लिंक होना भी जरूरी है। अधिकारियों के अनुसार कुछ जगह पर आधार कार्ड की संख्या की तुलना में समग्र पोर्टल पर अधिक पंजीयन दर्ज हैं। जांच के सामने आया कि कई लोग अलग अलग स्थानों पर एक से अधिक समग्र आईडी भी चलाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी जो समग्र आईडी है वो एक जगह रहे और इसके अलावा आपको OTP नहीं देना है। इसलिए आप आराम से कई सारे काम जो कि समग्र आईडी के द्वारा होते हैं बिना OTP के भी आसानी से कर सकेंगे। तो ये थी आपके लिए एक राहत की बात। चलिए इसी के साथ में जोड़ते हैं एक और राहत की बात, क्योंकि हम तो चाहते ही हैं कि जितना आपके लिए सरल, सुगम और सही रास्ता हम आपको बता सकें उतना ही ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, कई बार हम ये सोचते हैं कि हम स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान करे सभी स्वस्थ रहें, इसी तरह से एकदम किसी को कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन आप एक बात सोच कर देखिए कि हमारे पास दो आँखें हैं, हम सब कुछ देख सकते हैं, अच्छा बुरा, अच्छी जगह, सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन आप सोचिए वह लोग जिनके साथ में कोई न किसी दुर्घटना के कारण, किसी न किसी विचित्र के कारण दिव्यांगता है, उनके साथ कितनी परेशानियाँ होती हैं। आप एक बार सोच कर देखेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो हम कैसे मैनेज करेंगे। पर इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो कह रहे हैं ना आपको कि हम जितनी सुविधाएं, जितनी जानकारियां, अच्छी जानकारियां सभी के लिए लेकर आते हैं, तो हमारे उन दोस्तों के लिए भी जिनके साथ कुछ ना कुछ थोड़ी सी समस्याएँ हैं उनके लिए भी कुछ राहत की बात लेकर आएंगे। तो आइए ये खबर उनके साथ जोड़ते हैं। पुणे के 14 वर्षीय प्रतीक सिंगर ने सड़क हादसे पर व्हील चेयर का अनुभव मिलने पर स्टेयरलेस जर्नी के नाम का एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है। यह डिजिटल मैप है, देश भर में व्हील चेयर फ्रेंडली जगहों की जानकारियाँ देता है। यानी कि उन लोगों के लिए यह खबर बहुत ज़रूरी है जो कि व्हील चेयर पर आना जाना करते हैं, इनको परेशानियाँ हैं, तो उनके लिए एक मैप बनाया जा रहा है जिसमें कि देश भर में व्हील चेयर फ्रेंडली जगहों की जानकारी मिलेगी, जिससे कि दिव्यांगों को यह पता चल सकेगा कि कौन सी जगह व्हील चेयर के लिए सुलभ है, इससे परेशानी ना हो, समय की बर्बादी ना हो और बाहर जाने की अनिश्चितता कम होती है। अभी तक यह जो है पहले पुणे, गोवा और कोलकाता जैसे शहरों में 50 से अधिक स्थानों पर मैप कर चुकी है। इसमें दिव्यांग स्वयं सेवकों सहित एक टीम काम कर रही है। ये हमारे उन दोस्तों के लिए बहुत अच्छी और प्यारी सी खबर थी कि जिनको आने जाने में परेशानी होती है, उनको पता नहीं होता कि वहाँ पर हम लोग व्हील चेयर लेकर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे में उनके लिए बहुत ही खास और बहुत अच्छी खबर थी। तो आइए इसी के साथ में हम कैसे भूल सकते हैं आज का एक विशेष दिन और, जिसमें कि आज हम पूरा करने जा रहे हैं 10 वर्ष। अब आप सोच रहे होंगे किस चीज़ के लिए,
तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री मातृत्व स्वास्थ्य अभियान

0: जो है भारत के सरकार का एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें कि इसका उद्देश्य था प्रत्येक गर्भवती महिला को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध प्रसव पूर्व जांच सेवाएं उपलब्ध कराना, जिसके आज जो है 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इसी खुशी में हर जो है जिले पर जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहां पर कुछ विशेष कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। जिले में 9 जून को सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक विशेष गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि प्रसव वाली महिलाओं को या फिर जो कि इस समय से गुजर रही हैं उन सभी महिलाओं को कुछ राहत की बातें या कुछ जानकारियाँ और कुछ उपहार स्वरूप भी दिया जा सकता है। इसके लिए आप जो है आज के 10 वर्ष को पूर्ण रूप से एक अच्छे उसमें हम मनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से हम आपको जानकारी तो देते रहें, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद हाजिर होते हैं और फिर से हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ, 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: तो बिल्कुल दोस्तों, ऐसे ही हम आपको याद करते रहें और आप भी हमें ऐसे ही याद करते रहें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम रोज़ मिलें, रोज़ जानकारियाँ आप तक हम पहुँचाएँ और ढेर सारी ऐसी बातें, ऐसी जानकारियाँ और प्यारा से गीतों के साथ जो मनोरंजन होता है इस कार्यक्रम में वो बिल्कुल मिस ना करें। इसलिए हम रोज़ मिलें, रोज़ आगे बढ़ें और ऐसे ही मिलते रहें। उसके लिए लेकिन आज आपको देनी होगी रश्मि राहुल को इजाज़त। तो सभी श्रोताओं को रश्मि राहुल का प्यार भरा नमस्कार और इस वादे के साथ कि कल भी हाजिर होंगे। नमस्कार श्रोताओं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सूचना और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। तो लीजिए, अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे अब्दुल राशिद खान के द्वारा सारंगी पर राग अहीर भैरव। तबला पर संगत की है NP शर्मा ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत आज आपने सुना अब्दुल राशिद खां के द्वारा सारंगी पर राग अहीर भैरव, तबला पर थे एन पी शर्मा। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है। कुछ ही देर में जिले की चिट्ठी हमारे भोपाल केंद्र द्वारा आप सुन सकेंगे। कृपया जिले की चिट्ठी के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नीमच जिले की चिट्ठी। आलेख दिनेश प्रजापति, वाचन स्वर दीपा सिंह। नीमच जिले में अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अग्निकांड जैसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से प्रशासनिक टीमों ने निरीक्षण शुरू किए हैं। इसी क्रम में गुरुवार को एसडीएम पराग जैन और तहसीलदार संजय मालवी ने नीमच के ज्ञानोदय अस्पताल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने अस्पताल में स्थापित अलार्म सिस्टम और आपातकालीन निकास द्वार की उपलब्धता और कार्यशीलता का बारीकी से जायजा लिया। उज्जैन जोन का पदभार संभालने के बाद आईजी राकेश गुप्ता पहली बार नीमच पहुंचे। उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए अधिकारियों की बैठक ली। पुलिस अधिकारियों को विभिन्न मामलों में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में डीआईजी निमिष अग्रवाल, एसपी राजेश व्यास, एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया सहित जिले के सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी मौजूद रहे। नीमच जिले के जनजाति बाहुल्य ग्राम रातीखेड़ा में एक अनूठी प्रशासनिक पहल देखने को मिली। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। देर रात तक गांव में रुके और पीएम आवास योजना के लाभार्थी हरिराम के घर जमीन पर बैठकर भोजन किया। कलेक्टर चंद्रा अधिकारियों के दल के साथ बस से करीब 2 घंटे की यात्रा कर रातीखेड़ा पहुंचे। उन्होंने जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों की शिकायतें सुनी। पेयजल, सड़क, बिजली, शिक्षा और वन राजस्व से संबंधित मामलों पर उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए। नीमच प्रशासन ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए अनूठी पहल की है। कलेक्टर सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी अलग अलग वाहनों के बजाय एक ही बस में सवार होकर खातीखेड़ा जनसमस्या निवारण शिविर पहुंचे। प्रशासन की इस पहल की जिले भर में सराहना हो रही है। नीमच नगर पालिका द्वारा गौरव दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहीद पार्क में एक वृहद स्वच्छता कार्यक्रम और पौधरोपण अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और एसडीएम पराग जैन सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने शहीद पार्क परिसर की साफ सफाई की। प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने नीमच जिले की रामपुरा तहसील के ग्राम खिमला में निर्माणाधीन क्रेन को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इसके बाद क्रेन को परिसर में आयोजित बैठक में अधिकारियों ने पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति और भविष्य की कार्य योजना की जानकारी दी। विगत दिनों नीमच जिले के ग्राम बड़ी में राजस्व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने लगभग 3.800 हेक्टेयर बेशकीमती शासकीय भूमि को अवैध अतिक्रमणकारियों से मुक्त

कराया। नीमच जिले के नए पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने शनिवार को जावद अनुभाग के विभिन्न थानों और चौकियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सिंगोली, रतनगढ़, मनासा थानों सहित सरवानिया, महाराज, टिकिन और कंजाड़ा चौकियों की कार्य प्रणाली और संसाधनों का जायजा लिया। श्री व्यास ने थानों के निरीक्षण के दौरान हवालात की सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी। उन्होंने रोशनदानों को सुरक्षित करने, शौचालयों की नियमित सफाई और परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। पिछले दिनों नीमच जिले के जीरन में सीआरपीएफ जवान संजय पाटीदार का निधन हो गया। 35 वर्षीय श्री पाटीदार सीआरपीएफ नीमच के डीआईजी रेंज कार्यालय में पदस्थ थे। गुरुवार सुबह उन्हें राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। नीमच जिले में 9,162 किसानों से कुल 4,80,511 क्विंटल गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया, जो कुल खरीदी का 96% है। जिला प्रशासन के अनुसार कुल उपार्जित गेहूं में से 4,56,691 क्विंटल गेहूं का सुरक्षित परिवहन पूरा कर लिया गया है। जिले के 12 उपार्जन केंद्रों ने 100% परिवहन का लक्ष्य हासिल किया है। कुल 97% प्रकरणों में स्वीकृति पत्रक जारी किए जा चुके हैं। किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 124.21 करोड़ रुपए और स्टेट बोनस के रूप में 1.92 करोड़ रुपए मिलाकर कुल 126.13 करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें से 102.15 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं, जो औसत भुगतान का 86% से अधिक है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे नीमच जिले की चिट्ठी। आलेख दिनेश प्रजापति का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो में 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ये पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम। इस फिल्म से गीत में आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल सोनू निगम की। गीत को लिखा है प्रवीण ने और संगीत दिया है दब्बू मलिक ने। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें की है ग्राम पंचायत बठेना पाठन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति उमेश धनेश्वरी प्रहलाद वर्मा और चित्रेखा वर्मा ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं खमरिया छत्तीसगढ़ से सविता खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी प्रतीक कुमार श्री गणेश अविका आर्ट श्रीरामपुर से श्री अशोक कुमार अविका जीविका सोनू कुमार अर्चना कुमार कोयते बस्ती पूना वाले से अजय करिश्मा अविका साईशा सोनवणे कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले सविता दले अनिकेत रोहिणी ऋषिकेश जीविका अजय करिश्मा अविका विशाखा इन सभी ने। उदयपुर से रमेश नाचनी और भारती नाचनी ने। छटिया पोखर डुमराव से फातिमा बली बेलेदार डब्बू बली बेलदार आसमा बली बेलदार सोनम बली अकरम और उल्लाह कुटरिया ने। बिहार कॉलोनी महासमुंद से मोहम्मद याकूब आसमा कुरैसी मोहम्मद याशुक जेल रोड मथुरा से सरफुद्दीन बेलदार आफ्ताब बेलदार कल्लू मल्लू कलिया बेलदार ने। तो आइए इनकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। तो आइए कार्यक्रम में आप सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म उमराव जान से। गीत में आवाज़ है अलका याग्निक की, गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है अन्नू मलिक ने। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि इस गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है सरगुजा मेन पार्ट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा और रेशमा थापा ने। झांसी से फकरुद्दीन अंसारी, बदरुवली अंसारी, फर्जीवली अंसारी और फर्जुल अंसारी ने। रेडियो ग्वालियर लिसनर ग्राम महसवाड़ी से हमें लिख भेजा है मलकपुर ने, शतुधन धाड़े ने, वकील धाड़े ने, निनानी धाड़े ने और स्वप्निल धाड़े ने। फुल चिनौली तालुका पंडपुर से जाकिर मुनानी, सुमैया मुनानी, सुबान मुनानी, सुलमा, मुल्ताज, दिलशाद, नसीर, बानू भी, बादशाह,

इन सभी मुरारी परिवार ने इसी गीत को सुनना चाहते हैं। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभड़ी महाराष्ट्र से रूपे संघे महे संघे प्रज्ञे संघे प्रत्यय संघे पूरे संघे परिवार के द्वारा इस गीत को पसंद किया गया है। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से वीना मस्किन, तुलसी मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा। चंडीगढ़ से राहुल खुराना और रुचिता खुराना ने धनोरा बिटाली से इसी गीत को पसंद किया है। भगवान पाटिल ने, मंगेश पाटिल ने, सचिन पाटिल ने। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, मकरू निशा, सवाकिस्तान मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंजूरी ने। न्यू बजरंग कॉलोनी राजा गैस गोदाम गोल पहाड़िया लश्कर ग्वालियर से नेताराम गोड़िया, सरोज गोड़िया, शशि गोड़िया, भावना गोड़िया, नीरज, अर्चना, आध्या, श्रेया, दिव्यांशु इन सभी ने। दादा बाबू रेडिया गृहिणी झारखंड से मोहम्मद यासिन अंजान, साइमा नवाज, हसन बहू, बाबू अहमद, बिफरा नवाज, बेबी चाहत ने। अगले श्रोता है हमारे रिजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जयेंद्र पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, बिमलेश पाल, दिव्यांश बघेल ये सभी। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीत, गुरुशब्द सिंह राहुल ने। डबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार गौरव, आरव और अर्पिता मंदूरकर इन सभी ने। तो आइए इनकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म उमराव जान का ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम में अगला गीत सुनने से पहले लीजिए लेते हैं छोटा सा विराम और फिर हाजिर होते हैं आपके लिए कार्यक्रम का अगला गीत लेकर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
3: ए भाई,
4: सड़क पर चलते समय अपने वाहन की गति नियंत्रित रखें। किसी भी प्रकार का स्टंट करने की कतई कोशिश न करें। हो सकता है आप कुशल चालक हों, लेकिन दुर्घटना सिर्फ हमारी गलती से नहीं होती, दूसरों की लापरवाही भी हादसों का कारण होती है। दाहिने या बाएं मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करें। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
3: ए भाई, जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही।
0: अल्पविराम के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं श्रोताओं व्हाट्सएप फरमाइश के इस फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। तो आइए कार्यक्रम में आप सुनते हैं फिल्म सिर्फ तुम से लिया हुआ ये गीत। उदित नारायण की आवाज़ में इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। साथ ही आपको बता दें कि इस गीत के लिए हमारी फरमाइश करता है गंज डुंडवारा से समसूल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान खान, कलीम अंसारी। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून। गांव कैरो, जिला तारन तारन पंजाब से गुरदर्शन, लाल चलोत्रा, सुनीता, सिमी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशब्द। इन सभी ने छत्रपति सामाजी नगर शेरवाड़ी से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजल, सोहम, सदानंद, विराज, स्वीटी, अंशुमन, बेबी ओवी। श्रोता रघुवीर नगर से दिलवार खान, हसीना बानो, आलेजा नायब, नायाब और लड्डू। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लाव्या, आरव खुराना, एस के पप्पी। इन सभी ने इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश की है। मित्र नगर, भीड़ नगर महाराष्ट्र से विकास बनसोड़े, रेखा बनसोड़े, आदिति बनसोड़े, वैभव सिंधे। हिल स्टेशन खंडाला से प्रकाश सरोदे, प्रिया सरोदे। इसी गीत को पुराना तालाब डुमराव से भी पसंद किया गया है। पसंदीदा करता है वली उल्ला अंसारी, बेगम सबनम नाज, उस्मान नाज अंसारी, बेगम प्रमिला जाटव। जेल रोड बक्सर से राज अंसारी, शिल्पा अंसारी, उमा अंसारी। इंदिरा बिहार कॉलोनी से वसीम अंसारी, बेबी अंसारी, रोज और यामिनी राज। जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र यादव, महेंद्र यादव और जानवी यादव ने इसी गीत को पसंद किया है। मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, मकरून निशा, शाब्दिका मोहम्मद असीब, पलक लुबाना और यस मंसूरी ने। तो आइए इनकी फरमाइश पर आपको सुनाते हैं फिल्म सिर्फ तुम का ये गीत।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण अब आप मीडियम वेव के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से ऐप न्यूज ऑन AIR और फिर लाइव रेडियो के ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए AIR ग्वालियर पर और जुड़ जाइए हमसे। तो सुनते रहिए कभी भी कहीं भी आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम।
1: व्हाट्सएप फरमाइश पर एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं आपका। तो आइए कार्यक्रम में अब सुनते हैं फिल्म रफ्यूजी से लिया हुआ ये गीत, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने। गीत में आवाज़ें हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की, संगीतकार है अनु मलिक। और साथ ही आपको बता दें कि इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने। पुटिया कला दुर्ग से साहू संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू ने। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। शीतल रेडियो श्रोता संघ जिला बहरमपुर टेमा से, जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, समर, राज, आर्यन, बेबी, आरोही, इशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा, इन सभी वर्मा परिवार ने। साथ ही अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, इन सभी वर्मा परिवार ने। रागनी छत्तीसगढ़ से

दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, पटेल नगर मलोट से गगनदीप, आरजू, गीता, इन सभी जाजोरिया परिवार ने साथ ही इसी गीत को सुनना चाहते थे। मजनू का टीला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा, और सतना एमपी से उमंग मलिक, आशंका मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने। तो आइए इनकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं फिल्म रेफ्यूजी का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं वाणी परमार्श पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। तो आइए कार्यक्रम में अब आपको बताना चाहेंगे कि हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये अगला गीत उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ में फिल्म तुमसा नहीं देखा। इस फिल्म से साथ ही बताना चाहेंगे कि इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है कुम्हार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी, प्रतिज्ञा, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रतिमेश, संतोष, पांडुरंगन सभी ने। मारहरा दरवाजा एटा से नसीब हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवजेद अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रशीद अब्बासी, सुहेल हसन, अबन अनम, यसब अब्बासी। सिकंदराबाद राव से मुबीन अब्बासी और इफरत परवीन इन सभी ने। छटिया पोखर डुमराव से फातिमा डब्लू, आसमा, सोनम, अकरम उल्लाह इन सभी ने। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहते हैं बिहारी कॉलोनी महासमुंद से मोहम्मद याकूब आसमा कुरैसी, मोहम्मद यासुब आसमा कुरैसी, जेल रोड मथुरा से सराफुद्दीन बेलदार, आफ्ताब इन सभी ने। साथ ही इसी गीत के लिए हमारे अगले फरमाइश करता हैं मित्रनगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास, रेखा आदिति, विभव सिंधे, हिल स्टेशन खंडवा से आकाश, प्रिया सरोदे। इसी गीत के लिए हमें लिखा हुआ है अगले फरमाइशकर्ता ने जो है तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से स्वप्निल और रेखा ने। इसी गीत के लिए अगले फरमाइशकर्ता हैं हमारे जिन्होंने हमें लिखा है कोयते बस्ती पूनावाले से अजय, करिश्मा, अविका, साइदा, सोनू, अर्चना, अविका, डी अशोक कुमार इन सभी ने। तो इनकी फरमाइश पर आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए एक बार फिर से प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम का ये अगला गीत लेकर। इस गीत को हमने लिया है फिल्म क्रिमिनल से। गीत में आवाज़ है अलका याग्निक की। गीत को लिखा है इंदवर ने और संगीत दिया है मकरीम ने। साथ ही आपको बता दें इस गीत के लिए हमें फरमाइश आई है श्री गणेश अविका आर्ट श्रीरामपुर से, डी अशोक कुमार, अविका जीविका सुम्हार, सोनू कुमार, अर्चना कुमार ने। इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है सप्तरंग श्रोता परिवार से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिका दले और जीविका दले ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज जिला रतलाम।

से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, सोहा वर्मा, राहुल ज्योति, पायल वर्मा, प्रियांशु वर्मा, ऋषिका वर्मा, इन सभी ने इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहते हैं कोटवा नारायण, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवदा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय ने, ग्राम संदलपुर आंतरी से कालीचरण यादव, दीपक कुमार यादव, चांदनी यादव और उर्मिला देवी ने, मुरार ग्वालियर से गुड्डू मिश्रा और निशा मिश्रा ने इसी गीत के लिए हमें अगली फरमाइश लिख भेजी है। पटेल नगर ग्राम नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार ने और इसी गीत के लिए हमें अगली फरमाइश लिखते हैं। बडिंडा रोड डब वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग ने। तो आइए इन्हीं की फरमाइश पर आपको सुनाते हैं फिल्म क्रिमिनल का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। तो आइए कार्यक्रम के अंत में आप सुनते हैं फिल्म पद्मावत से लिया हुआ ये गीत शिवम पाठक की आवाज़ में। और साथ ही बता दें, इस गीत को सुनने की फरमाइश की है रीनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भगवत वर्मा ने, लेवई से गुलाबदास मनकीपुरी और लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू ने, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू ने और गांधी रोड रोपड़ से हरदेव मीका और बलविंदर मीका, जेतेग वीरक और मीका बिरक ने, हरदेव मीका, बलविंदर, जेतेग वीरक और मीका बिरक ने। तो इन सभी की फरमाइश को हम पूरा करते हैं, उनको सुनवाते हैं फिल्म पद्मावत का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम, जो हम इसी गीत के साथ ही संपन्न करेंगे। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10:58 होने को है। इस गीत के बाद हम सुनेंगे इस घंटे की कुछ खास खबरें।

0: भी हो जाता है, बिल्कुल पानी के बुलबुले की तरह। तो आज हमने हमारा कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में कुछ यही विषय चुना है आप सभी के लिए कि हमको जब गुस्सा आता है तो हम उस पे नियंत्रण किस प्रकार करते हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से। हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्ते।
0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते दीदी।
0: अपना नाम बताएं।
1: दयाशंकर कुशवाहा छतरपुर मत्र। हेलो
0: जी, फिर से बताएं अपना नाम।
1: दयाशंकर कुशवाहा छतरपुर से।
0: जी, हमारे आज की बातचीत का विषय है कि हम अपने गुस्से पर नियंत्रण किस तरह से करते हैं। तो गुस्सा सभी को आता है, जब हमें गुस्सा आता है बहुत, तो हम किस तरह से अपने आप को रोकते हैं, कुछ बताएंगे?
1: शांत रहना पड़ता है के लिए।
0: जब गुस्सा आता है तब आप शांत हो जाते हैं।
1: शांति रहने पर कहाँ है गुस्सा।
0: हाँ, जो तो आपने सही कही कि भाई शांत रहकर ही गुस्से को अपन रोक सकते हैं। सामने वाला हमको शांत देखकर फिर अपने आप स्वतः ही शांत हो जाता है।
1: जी,
0: है ना, क्योंकि एक जन गुस्सा करता है, सामने वाला भी क्रोध करे तो बात जो है बहुत बढ़ जाती है। तो आप मतलब शांत हो जाते हैं जब आपको गुस्सा आता है?
1: जी।
0: तो घर वाले समझ जाते हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है?
1: जी जी जी।
0: चलिए, फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: नमस्कार सर जी।
1: नमस्कार।
0: बात आपके नहीं, बात आपकी, गीत हमारे
1: आपने हाँ उल्टा बोल दिया।
0: आपको बोलना था वो हम बोल गए।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम जान सकते हैं हम किससे बात कर रहे हैं?
0: अनोखे सिंह।
1: अनोखे सिंह।
0: हाँ हाँ
1: जी। आपसे तो पहले भी बातचीत हुई है मेरी।
0: हाँ, ये जून में पहली बार हो रही बात।
1: नहीं, पहले भी कर चुकी हूँ मैं आपसे बात। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: बाग जिला धार।
1: धार से बोल रहे हैं?
0: हाँ
1: जी। हमारी आज की बातचीत का विषय है, जब हमें गुस्सा आता है तो उस पर हम नियंत्रण कैसे करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं गुस्से को, आप कैसे करते हैं?
0: गुस्सा तो अपने आप आता नहीं सर, बाकी कारण वंश अगर आए ऐसा तो उसको उतारना भी जरूरी है सर जी, किसी न किसी रूप में, भले नहा के उतारो के विवाद करके उतारो।
1: तो आप किस तरह उतारते हैं?
0: हम तो सर जी शासन और परमात्मा और पब्लिक का नियम है, तो हमको भी कोई गुस्सा दिला देता है या कुछ ऐसी प्रतिक्रिया होती है तो बिल्कुल हम उस गुस्से को उससे
1: उतारते हैं
0: सर,
1: सामने वाले पे उतारते हैं गुस्सा।
0: हाँ हाँ, अगर वो ऐसी परिस्थिति पैदा कर देता है तो, नहीं तो अनजाने में तो सब एक दूसरे को माफ करते।

0: माफ कर देते
1: हैं, हो जाते तो माफ कर देते हैं, जाने में कुछ बात हो।
0: चलिए तो आप गुस्सा उतार के फिर आपका गुस्सा शांत हो जाता है।
1: शांत नहीं, गुस्सा जब भी उतारो कि हमको सबक मिले या सामने वालों को सबक मिले, फोकट गुस्सा थोड़ी होता है।
0: फोकट गुस्सा नहीं होते।
1: गुस्सा भी कोई चीज से उत्पन्न होता है, वो चीजों की तो खुराक है ही नहीं हमने।
0: जी
1: भाई, आदमी की जैसी खुराक, जैसी हाइट, जैसा वैसा गुस्सा, उसका भगवान उसका गुस्सा नहीं खाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
1: धन्यवाद।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। नाम बताएं।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
1: जी मैं तुलसीराम साहू बोल रहा हूँ, ये खापरखेड़ा जिला रायसेन मध्य प्रदेश।
0: रायसेन से बोल रहे हैं तुलसीराम जी।
1: रायसेन जिला मेरा रायसेन है,
0: जी
1: ग्राम खापरखेड़ा, मतलब आपके भोपाल से 160 किलोमीटर
0: जी
1: दूर।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारे आज की बातचीत का विषय है, जब हमें गुस्सा आता है तो हम उस पर नियंत्रण किस प्रकार करते हैं, आप कुछ बताएंगे?
1: जी गुस्सा का कारण तो ये, जैसे हम गुस्सा कर रहे हैं तो अगर ज्यादा गुस्सा करेंगे तो हानि जरूर होगी, लेकिन जहां तक हो सके गुस्से को मतलब धीरे बन, मतलब धीरे से काम करो। कुछ भी काम करना आराम से काम लो, उसमें क्या आपको फायदा भी है। गुस्सा में बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात कही भाई। गुस्सा जब अपन करते हैं
1: गुस्सा
0: तो
1: गुस्सा
0: विवेक
1: एक
0: काम नहीं
1: अग्नि,
0: करते, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है ना।
1: यहाँ जुड़ क्या, गुस्सा एक अग्नि का रूप होता। और थोड़ी धीमी बात करो या मतलब धीरे काम करो, कुछ भी काम उसमें गुस्सा मत लाओ, तो भी एक मतलब संतुष्टि होती है उसमें। असंतोष कभी नहीं होता, गुस्सा में असंतोष होता।
0: जी।
1: ये कभी करो कुछ काम, या घर बच्चों से लड़ो या कुछ काम करो, गुस्सा में कभी मत, गुस्सा में बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल सही, गुस्से में काम बिगड़ जाते हैं, ये बात आपने अच्छी कही।
1: जैसे हम किसान लोग हैं जी, तो अभी ट्रैक्टर चल रहा हो खेत में, अगर हम सोचे भैया हमारे लिए गर्मी लग रही है, घाम लग रहा, हम छोड़ घर भाग जाए, नहीं, किसान ही काम है, मतलब थोड़े उसको करना भी पड़ेगा, गर्मी भी लगेगा, घाम भी मतलब लगेगा। किसान तो अपन है तो करना पड़ेगा किसानी काम। कई
0: करना पड़ेगा। अब
1: लोग
0: गुस्सा
1: गुस्सा में
0: दिखाएं
1: चलो
0: घर
1: भैया
0: वालों
1: काम
0: पे,
1: है,
0: दिखाएं कि भाई इतनी गर्मी में हम काम कर रहे हैं, सब घर में बैठे हैं आराम से, तो कोई फायदा तो होगा नहीं, है ना।
1: जी
0: आपसे
1: हाँ।
0: बातचीत करके अच्छा लगा। नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्ते।
1: नमस्ते। रमेश कोटवानी सतना से।
0: सतना से कोटवानी जी, आज हमारे कार्यक्रम का नाम है बात आपकी गीत हमारे, जिसमें आज का विषय है कि जब आप गुस्सा करते हैं तो उसको रोकते कैसे हैं, जब हमको गुस्सा आता है किसी पर बहुत।
1: आता है तो रोकते हो गया, वही है, हो गया, शांत कर लेते अपने आप को।
0: अच्छा, चुप हो जाते हैं एकदम से
1: हाँ
0: तो बातचीत बढ़ ही नहीं पाती है,
1: हाँ बढ़ने नहीं देते बात को।
0: बढ़ने नहीं देते हैं। बहुत अच्छी बात करते हैं आप। थोड़ी देर यदि हम
1: हाँ,
0: उस समय शांत हो जाएं, या हम,
1: आज हमारा पहली बार फोन लगा है।
0: जी
1: आप कौन बोल रहे दीदी?
0: मैं छाया पाठक बोल रही हूँ।
1: अच्छा, चाय पड़क जी,
0: जी
1: नमस्ते।
0: नमस्ते। चलिए, अच्छी बात बताई आपने कि आप शांत हो जाते हैं तो गुस्सा धीरे से अपने आप, समय के साथ गुस्सा भी चला जाता है।
1: जी जी जी
0: नमस्कार।
1: जी नमस्ते।

0: हेलो।
1: नमस्कार मैम
0: नमस्कार।
1: जी। मैम मैं तहसील बहादुरपुर जिला अशोकनगर एमपी से सूर्य प्रताप यादव बात कर रहा हूँ।
0: अशोकनगर से सूर्य प्रताप
1: यादव
0: यादव जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है मैम।
0: बढ़िया। और अशोकनगर में सब बढ़िया?
1: हाँ सब बढ़िया है।
0: जी। कार्यक्रम का विषय है बात आपकी गीत हमारे, है ना?
1: हाँ जी मैम।
0: इसमें हमारा विषय है कि जब हम गुस्सा करते हैं तो उसको कैसे रोकते हैं। किसी पर गुस्सा आता है जब हमको,
1: किसी पर अगर गुस्सा आए हमें तो सबसे पहले तो हमें अपने शब्दों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, संयमित रहना चाहिए। थोड़ा सा गुस्से में बोले गए जो शब्द होते हैं ना, वो मतलब एक तीर की तरह होते हैं, जो
0: तीर की
1: अगर
0: तरह चुभते हैं।
1: कमान से छूट जाते हैं तो फिर वो वापस नहीं आते हैं। तो अब सबसे पहले तो यही करना चाहिए कि अपने बोलने पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं।
0: क्या बात कही आपने, 100 बात की एक बात कह दी बिल्कुल, कि गुस्सा करें लेकिन अपने शब्दों पर कंट्रोल करें, संयमित व्यवहार करें, बोलें ऐसा जो चुभे ना लोगों को, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कहते
1: अगर
0: भी है ना
1: गुस्से
0: कि
1: में हम
0: भाई शब्दों के जो घाव होते हैं वो नहीं भरते,
1: वो नहीं भरते।
0: आपके शस्त्र का घाव भर जाएगा
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तीर
1: सही
0: का
1: बात
0: घाव
1: है
0: भर जाता है लेकिन शब्दों का जो हम घाव देते हैं किसी को वो नहीं भर पाता। हमेशा याद
1: जी।
0: रहता है सामने वाले को कि इसने हमसे ऐसा कहा था।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बहुत अच्छी बात। चलिए, फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: जी मैम। धन्यवाद।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्ते, जोर से बोलें थोड़ा।
1: हाँ जी, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जांगड़े छत्तीसगढ़ से, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। जी, हमारी आज की बातचीत का विषय है कि जब हमको गुस्सा आता है तो हम उस पर कंट्रोल कैसे करते हैं।
1: जी, इस बारे में तो हम यही कहेंगे कि जिस भी समय हम में थोड़ी उत्तेजना और गुस्सा का भाव हो तो उस समय कोशिश ये करें कि थोड़ा सा ध्यान को भटका ले। कहने का मतलब है या तो वहां से हट जाए या फिर दूसरी चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित कर ले। फिर इससे होगा ये कि जो हमारे मनोभाव रहते हैं वो हम किसी और के ऊपर उसको मतलब नहीं ये करेंगे,
0: नहीं कर पाते,
1: क्योंकि हम उस मनोदशा में जब गुस्से का भाव में होंगे तो कुछ न कुछ ऐसा बोलेंगे कि सामने वाला को गलत लगे। तो सबसे बेहतर यही है कि उस समय हम थोड़ा सा अपने मन को काबू करें।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई। वैसे भी देखो ना, होता ये है कि जैसे हमें किसी पर गुस्सा आ रहा है, वो उस समय नहीं है मान लो घर में मौजूद, पर हमें उसके किसी व्यवहार से आ रहा है, और जब तक हम उससे मिलते हैं 2-4 घंटे हो जाते हैं, तो आप देखिए गुस्सा स्वतः ही बहुत कुछ शांत हो जाता है।
1: जी।
0: अगर उसी समय वो सामने होता है तो हम हो सकता है बहुत कुछ कहें उससे, पर जब बहुत समय बाद मिलता है तो अपने आप गुस्सा जो है स्वतः धीरे धीरे चला जाता है।
1: जी
0: तो ये
1: जी
0: बात अच्छी बताई कि हम हमारे मन को दूसरी जगह केंद्रित कर लें।
1: जी
0: जी, नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: नमस्कार,
1: मैं विवेक व्यास बोलता हूँ मैडम, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव महू जिला
0: जी।
1: हेलो
0: हाँ, हम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारी बातचीत का विषय है जब हम गुस्सा करते हैं किसी पर या हमें गुस्सा आता है बहुत, तब हम क्या करते हैं उस समय, हम गुस्से को नियंत्रित कैसे करते हैं।
1: देखिए मैडम, मैं आपको बताऊँ, आप मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
0: छाया पाठक।
1: छाया जी नमस्कार। देखिए मेरा ये कहना है, मेरा तो ये मानना है कि जब भी हमको गुस्सा आता है तो हमारी कोशिश ये रहना चाहिए कि हमारा ध्यान जो है वो हम कहीं और लगाने की कोशिश करें, है ना। जैसे यार सबका अपना अपना रहता है, अब मैं अपना बताऊं कि मैं तो अपने प्रभु में का नाम सिमरन करने लगता हूँ, जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है ना, या कोई अच्छा म्यूजिक, यदि कोई अच्छा गाना है अपन को पसंद है
0: वो चला दिया,
1: गाना सोच लेता हूँ।
0: अच्छा।
1: या सबसे इजी तरीका मैं आपको बताऊं कि आप चुपचाप 10 तक गिनती गिनिए।
0: अरे वाह,
1: है ना,
0: 10 तक गिनती गिनिए मन में।
1: अपन को देखिए, क्योंकि क्या होता है
0: जी,
1: ये वो जो अपन को गुस्सा आता है, यदि अपन ने उस समय उसको कंट्रोल कर लिया तो आप फिर शांत हो जाएंगे। फिर आपके मन में ये जरूर रहेगा यार कि इसने बहुत गलत किया, लेकिन
0: गलत किया,
1: उतनी वो जो तीव्रता रहती है गुस्से की वो
0: खत्म हो जाती है। बिल्कुल, इसीलिए कई लोग लंबी सांसें लेने लगते हैं, कई लोग संगीत सुनते हैं, कई अपनी पसंद का काम करते हैं, कई कुछ एक्सरसाइज करने लगते हैं, कई घर से बाहर चले जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह से लोग अपने गुस्से को शांत करते हैं।
1: होता है ना मैडम, जो होता है वो अग्नि से भी तेज होता है, गा भी गया है ना, और समय तो अपन को समझ में नहीं आता, लेकिन जब अपना शांत होता है ना क्रोध, तो अपन सोचते हैं अपन ने बहुत गलत किया।
0: चले, बहुत अच्छी बात आपने बताई
1: जी
0: विवेक जी, फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। आपका नाम जान सकती हूँ मैं?
1: हरदयाल जाटव जिला सेफनी मत्थर दे
0: हरदयाल यादव।
1: जाटव जाटव
0: जादव
1: हरदयाल जाटव
0: जी, कहाँ से?
1: सेफनी जिला से।
0: सीपरी से। हमारे कार्यक्रम में आज का विषय है कि जब हमको गुस्सा आता है तो उसको हम
1: हाँ
0: किस तरह से उस पर कंट्रोल करते हैं। आप किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं उस समय?
1: गुस्सा को तो मैडम जी ये है कि अपने आप को काबू में करना पड़ता है और शांत करना पड़ता है।
0: कैसे काबू में करते हैं आप?
1: माने ऐसे करते कि अपन बगल माने शांत करने के लिए निकल जाते हैं, अंत माने
0: हाँ
1: बरकत दे जाते हैं किसी को,
0: जी,
1: माने काबू में कर लेते हैं शांत करके अपने।
0: नहीं, हम अपने आप को कैसे, हमको जब गुस्सा आता है किसी पर, हमको आता है, तो हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करते हैं?
1: अपने मन को तो कंट्रोल मैडम जी भगवान का नाम लेते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान
0: भगवान
1: उनको
0: का नाम
1: तसल्ली
0: लेते हैं।
1: दो, कंट्रोल में अपने आप हो जाता है। हाँ
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात। इस बहाने एक पन दो काज।
1: जी
0: देखिए, भगवान का नाम भी हो गया,
1: हाँ जी
0: तो हम तो ये चाहेंगे कि आपको हरदयाल जी बार बार गुस्सा आए,
1: नहीं जी,
0: ताकि
1: गुस्सा
0: ताकि आप
1: करते मैडम जी
0: ईश्वर
1: तो
0: का नाम
1: बात नहीं,
0: लेते रहें इसी तरह।
1: अगर सामने वाला लड़ता है तो अपन शांत रहे होते हैं, ठंडे मुंह से बात करते हैं। गुस्सा पर कभी जिंदगी में आया नहीं है।
0: नहीं आया आपको?
1: नहीं नहीं
0: बहुत
1: बिल्कुल
0: अच्छी,
1: नहीं।
0: बहुत अच्छी बात है। आए
1: मैडम
0: बिना
1: आपका नाम, मैडम
0: छाया पाठक।
1: आपसे पहले ही बात हो चुकी है।
0: जी,
1: हाँ
0: हो चुकी
1: जी,
0: बात है।
1: मैंने सर जैसे भी लगाया, घंटी गई, मैं उठाया कॉल नहीं, पर मैंने लगाना बंद कर, जब देखो तो ट्राई करके।
0: अच्छा, फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आज हमारा विषय था कि हम अपने गुस्से पर नियंत्रण किस तरह करें, उसको शांत करने के लिए क्या उपाय करें। बहुत से श्रोताओं ने हमसे अपने विचार साझा किए। कभी कभी ये भी होता है कि हम उस जगह को छोड़ दें या फिर हम उल्टी गिनती शुरू कर दें, जैसे 10 से लेकर 1, 10, 9, 8, 7, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई हम कुछ डायरी लिखने लगें, कल्पना मन में कर लें कि भाई हमें गुस्सा शांत रखना है, नहीं हमें नहीं बोलना। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, बाहर टहलने निकल जाएं, अपनी मनपसंद संगीत सुन लें या फिर शांत होकर के गहरी गहरी सांसें लें। ये बहुत से उपाय हैं जो हमारे गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आज के कार्यक्रम से आपसे अनुमति लेती हूँ। आज्ञा दीजिए छाया पाठक को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, प्रस्तुति छाया पाठक की थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे।

योजना का मुख्य उद्देश्य नवजात मृत्यु दर को कम करना है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत आज प्रदेश भर में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि सुरक्षित मातृत्व प्रत्येक महिला का अधिकार है।

4% से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अप्रैल 2026 से 1,00,000 संविदा कर्मियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा। राज्य एचपीवी टीकाकरण अवसरूप प्रदेश में 7.63 लाख से अधिक पात्र बालिकाओं का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया जा चुका है। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि राज्य में मानसून 15 से 18 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है आपके पसंद के गीतों से सजा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जिसे लेकर आपके साथ हूं मैं आकांक्षा। नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, जिसे हमने लिया है फिल्म साया से। आवाज़ अलका याग्निक और उदित नारायण की है, बोल आनंद बख्शी के हैं। इसे संगीत से सजाया है MM करीम ने। पसंद भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। उपाध्याय नगर देवास से मुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा। राजा राम नगर देवास से ही राजू अग्रवाल, मधु महाजन, राकेश अग्रवाल। रूपा खेड़ी से हरिराम माली, विष्णु माली, कपिल, निरंजन माली। सुपरमार्केट देवास से प्रकाश चंद जसवानी, पंकज जसवानी, सनी जसवानी। गंगेड़ी जिला उज्जैन से गोपाल बागवान, गोविंद सालग्राम और दशरथ बागवान। आप सभी की पसंद है फिल्म साया का ये गीत सुनने की। लीजिए सुनिए।

सारणी ज़िला बैतूल से गणेश सिमैया, विजय, अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका अवंतिका, शिवालिका पारसमणि वाद्य, पंजाब राव और संदीप पाटिल, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या, आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए फिल्म ना तुम जानो ना हम का गीत अभिजीत और पमेला जैन की आवाज़ों में। बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत है राजेश रोशन का।

नीलेश मिश्रा का लिखा गीत सुनिए, जिसे संगीत से सजाया है MM करीम ने। आवाज़ श्रेया घोषाल की है और फिल्म का नाम है जिस्म। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राजू शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरव शर्मा की। इसी गीत को सुनना चाहा है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने। साथ ही सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म जिस्म का ये गीत।

महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, प्रिया, जीत और इच्छा। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म राज का गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक ने, गीत लिखा है समीर ने और इसे संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। लीजिए सुनिए।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जंग लगी तलवार की चौथी कड़ी।
5: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, नारायणी को प्रसव का दर्द शुरू होता है। वो एक लड़के को जन्म देती है जो पैदा होते ही मर जाता है। नारायणी भगवान की इच्छा को अपने पाप के बोझ से मुक्त मिलने की बात सोचकर इस दुख को सहन कर लेती है। शिबू यशवंत के यूनियन में प्रतिनिधि बनने की खुशी में भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन करवाता है। ब्राह्मण पंडित दलितों की पूजा करवाने से इनकार कर देता है तो यशवंत स्वयं पंडित की भूमिका निभाता है। चारेंगखेरा से ठाकुर साहब का साई नदी पर तबादला हो जाता है। रामू बामू नामक दो जुड़वा भाइयों के चेहरे ठाकुर साहब को देखते ही खिल जाते हैं। विजिलेंस ब्रांच का एसपी ठाकुर साहब से मिलता है और सीमेंट घोटाले के मामले में सन 1974 की फाइल मांगता है। फाइल लेकर एसपी चला जाता है। यूनियन की बैठक होती है। बलबीर स्वामी मजदूरों की मांगे मनवाने के लिए हड़ताल को अंतिम अस्त्र बताता है। उधर नारायणी एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। शिबू बहुत खुश होता है और सभी को ये खुशखबरी सुनाने जाता है। अब आगे

0: जगन्नाथ।
1: अरे बेटा जगन्नाथ।
2: क्या है बापू?
0: बेटा एक गिलास पानी तो पिला।
2: अभी लाया बापू।
0: बेचारा जगन्नाथ, अरे अभी 10 बरस का ही तो है, पढ़ने लिखने का कितना शौक है इसे। मैं खुद तो पढ़ लिख नहीं सका, लेकिन लेकिन जगन्नाथ को पढ़ा लिखा कर बड़ा बाबू बनाने की बड़ी तमन्ना है मेरी। लेकिन कहाँ से, पेट भरने लायक भी तो नहीं कमा पाता हूँ, फिर भला इसे स्कूल कैसे भेज सकता हूँ। कैसे भेज सकता हूँ। और वो जगन्नाथ की माँ बेचारी ने 2 बरस पहले बीमारी और भूख के कारण दम तोड़ दिया। अरे मजबूरन साई नदी में बहा देना पड़ा। तब बेचारे नन्हे जगन्नाथ ने अपनी माँ की लाश की कैसी दुर्दशा देखी थी, कैसी दुर्दशा।

0: अरे शंभू, तू यहाँ क्या कर रहा है?
1: जगन्नाथ, चल नदी में नहाते हैं।
0: नहीं, मेरा बापू कहता है कि नदी में नहाने से मैं डूब जाऊंगा। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगा।
1: गहरे पानी में जाएगा तब डूबेगा ना। देख, उस तरफ गहरा पानी नहीं है, वहाँ हम नहीं डूबेंगे, चल ना।
0: नहीं, अगर मेरे बापू को पता चल गया तो वो मुझे बहुत मारेगा।
1: तेरे बापू को कौन बताएगा, तू खुद?
0: नहीं नहीं, भला मैं क्यों बताऊंगा?
1: तो मैं भी नहीं बताऊंगा, फिर भला कैसे पता चलेगा तेरे बापू को?
0: इसका मतलब बापू को पता ही नहीं चलेगा कि मैं नदी में नहाया था।
1: यही तो।
0: चल चल, बहुत मजा आएगा। चल चल चल, चल, चल, चल।

0: अरे बाप रे, इतनी सारी चील, इतने सारे गिद्ध,
1: हाँ
0: कैसी डरावनी आवाज निकाल रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
1: डर तो मुझे भी लग रहा है। मेरा बाबा कहता है कि चील और गिद्ध वहीं आते हैं जहाँ कोई लाश होती है।
0: अच्छा, तो क्या यहाँ भी कोई लाश पड़ी होगी?
1: शायद।
0: चल शंभू, घर वापस चलते हैं।
1: तू डरता क्यों है? गिद्ध लाश को नोचते हैं, जिंदा लोगों को नहीं। अरे उधर देख जगन्नाथ।
0: हाँ, किधर?
1: उधर
0: क्या है? उधर
1: वो नदी के किनारे किसी की लाश पड़ी है।
0: हाँ, हाँ। लगती तो लाश ही है। किसकी होगी शंभू?
1: क्या पता। चल चल पास चल कर देखते हैं।
0: अच्छा चल चल चल चल। शंभू,
1: हाँ
0: शायद ये किसी औरत की लाश है।
1: लाश, उसने धोती पहन रखी है।
0: हाँ चल थोड़ा और पास चलकर देखते हैं।
1: नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा।
0: चलना,
1: मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा।
0: चलना शंभू।
1: नहीं अरे जगन्नाथ।
0: हाँ?
1: ये तो तेरी माँ की लाश है।
0: ये तो सचमुच मेरी माँ की लाश है। माँ, माँ,
1: जगन्नाथ, जगन्नाथ, तू कहाँ जा रहा है?
0: जगन्नाथ,
1: सुनो, नहीं, देख,

0: बापू पानी।
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: हाँ, ये लो बापू।
1: जगन्नाथ। हाँ बेटा, हाँ मेरे पास बैठ।
0: अच्छा बापू।
1: जगन्नाथ
0: बापू। बापू
2: क्या नींद में हो शिव भैया?
3: अरे लिचू भैया आओ आओ आओ बैठो बैठो बैठो।
2: लगता है सो रहे थे।
3: अरे नहीं लिचू भैया, सो तो मुन्ना रहा है। अपनी आंखों में नींद।

0: हाँ, वैसे एक बात है, भगवान ने हमें धन भले ही ना दिया हो मगर नींद खूब दी है। अरे इतनी नींद दी है कि बस हम तो छक गए, अरे नींद से ऊब गए हैं हम तो।
1: मतलब शिवू भैया कि खटिया भी हमसे पनाह मांग गई है।
0: लच्छू भैया, और सुनाओ लच्छू भैया, क्या कोई नई खबर है?
1: अरे खबर क्या है शिवू, हड़ताल होगी, हड़ताल यानी महाभारत होगा।
0: अच्छा?
1: अरे फिर पिसेंगे हम गरीब, कौन है हम गरीबों की सुध लेने वाला? कोई नहीं, कोई नहीं, सब अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं।
0: हाँ लेचू भैया, ये सब तो दादा परदादा के समय से चला ही आ रहा है।
1: हाँ भैया,
0: पहले खेतों में मजदूरी करते थे, अब कंपनी में काम करते हैं। पहले साहूकार खून चूसते थे, अब कंपनी वाले चूसते हैं। लेचू भैया, हमारे लिए तो वो मरे हुए जानवरों का धंधा ही अच्छा था।
1: अजी काहे का अच्छा था, पहले तो मरे हुए जानवरों की खाल उधेड़ो, हड्डियां इकट्ठी करो, फिर जिस गांव में जाकर बैठो वहीं लात और घूंसे मिलते थे। अरे गालियों की तो कोई गिनती ही नहीं थी, दूसरे गांव जाओ तो वहां भी यही कहानी। अरे हर गांव की एक सी कहानी है शिवू, एक सी।
0: हाँ लीचू, ठीक कहता है। तो ऐसे लीचू,
1: हाँ
0: एक बात सोची है तूने कभी?
1: मैं तो रोज ही बहुत सी बातें सोचता हूँ शिव, मगर तू किस बात की बात कर रहा है?
0: अरे लीचू, मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई हमारी जिंदगी की सच्ची सच्ची कहानी लिखे तो क्या हो?
1: तू भी कैसी अजीब बात सोचता है शिव। अरे क्या हम कोई राजा महाराजा हैं, बड़ी कंपनी के मालिक हैं, कोई जागीरदार हैं या जमींदार हैं जो कोई हमारी जिंदगी पर कहानी लिखेगा? अरे किसे है हमसे हमदर्दी शिबू, किसे है?
0: क्यों, क्या फिल्मों में गरीब लोगों की कहानी नहीं दिखाते? अरे सच बात तो यह है लीचू कि फिल्मों में जितना दिखाते हैं ना, हमारी जिंदगी की सच्ची कहानी उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है।
1: हाँ तो ठीक कहता है शिबू, जितना दर्द हमारी जिंदगी में है, अरे उतना तो रोज पीटे जाने वाले जानवरों की जिंदगी में भी नहीं होता।
0: कभी सोचा है तूने ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है?
1: बहुत सोचा है, बहुत सोचा है शिबू, एक बार नहीं हजार बार सोचा है।
0: तो कुछ समझ में आया, क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है हमारे
1: साथ? हाँ आया, और इसके तीन कारण हैं।
0: तीन कारण?
1: हाँ
0: कौन कौन से तीन कारण
1: शिबू? पहला कारण तो ये है कि हमारे देश में मजदूरों की भरमार है। अरे एक मजदूर को हटाओ तो उसकी जगह लेने के लिए 10 मजदूर तैयार खड़े हैं। अब देखो ना, हम मजदूरों के संतान अधिक होती है जबकि साहब लोगों के घरों में कम। अरे उनकी मांग है और हमारी दुत्कार।
0: हाँ लीचू भैया, ये बात तो सच है। और दूसरा कारण?
1: और दूसरा हम मजदूरों का अनपढ़ होना। अरे हम मजदूरों का अनपढ़ होना, पढ़े लिखे को सब पूछते हैं शिबू जबकि अनपढ़ों को दुत्कार दिया जाता है उनकी अपनी किस्मत पर रोने के लिए।
0: हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब देखो ना, इस दलित लाइन में यशवंत अकेला पढ़ा लिखा है, तभी तो वो यूनियन का नेता बन गया, जबकि हम और तुम यहां बैठे इधर उधर की बातें मनाकर समय काट रहे हैं। ये बात तो है ही। वैसे लीचू, तीसरा कारण क्या है?
1: अरे तीसरी बात तो ये है शिबू कि हमारे अंदर ऊपर उठने की आत्मशक्ति ही नहीं है।
0: हा?
1: अरे हमें खुद पर ही विश्वास नहीं है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कुछ नहीं।
0: अरे वाह, अरे लीचू तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी बन गया रे।
1: अरे नहीं
0: कमाल है, तेरी बातें किसी पढ़े लिखे विद्वान से कम थोड़ी हैं।
1: अरे अब इन बातों को छोड़ो भैया, मुझे तो मजदूरों के ऊपर संकट के बादल घिरते नजर आ रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है शिवू जब यहाँ पर चारों ओर लाशें ही लाशें होंगी और आसमान में चील और गिद्ध उड़ेंगे। चील और गिद्ध?
0: चील और गिद्ध? क्या कह रहे हो लीचू भैया?

0: अरे कहाँ थे तुम दोनों?
1: आपके सेवक आपकी सेवा में हाजिर है सरकार।
2: हाँ सरकार, हुक्म करे।
0: अब दरवाजे पर खड़े रहने का ही इरादा है या अंदर ना आने की कसम खाई है?
1: चल बाबू, ठाकुर साहब अपने पास बुला रहे हैं।
2: अरे हाँ, चल रामू।
1: सरकार,
0: और बताओ नई खबर क्या है?
2: ठाकुर साहब, आपके आदेश का पालन करते हुए हम दोनों ने यूनियन की सभाओं में जाना शुरू कर दिया है।
0: ये तो बहुत अच्छा किया।
1: सरकार,
0: अंदर का समाचार क्या है?
1: हुजूर, यूनियन हड़ताल पर आमादा है।
2: हाँ,
0: अच्छा
2: ठाकुर साहब, आपके पैर दबा दूं?
0: चल दबा दे।
1: हुजूर, रेडियो तो बंद कर दीजिए, इसकी कान फोड़ू आवाज, आपकी मधुर आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचने दे रही सरकार।
0: तुम दोनों बहुत अच्छे हो।
1: मेहरबानी सरकार,
0: मैं अभी बंद करता हूँ।
2: धन्यवाद ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, एक बात कहूँ, आपके पैर दबाने में, आपकी सेवा करने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। देखो ना, कितना बलिष्ठ शरीर है आपका।
0: पुराना देसी घी खाया है रामू? जरा बाहर तो देख, आसपास कोई छिपा तो नहीं है?
1: अभी देखता हूँ सरकार, अगर कोई होगा तो हड्डी पसली तोड़कर सीधे अस्पताल पहुंचा लूंगा सरकार।
2: देखने गया हुजूर, अभी आके बताता है।
1: कोई नहीं है सरकार, कोई नहीं है। करा कौन हिम्मत करेगा, आपका रुआ भी काफी है सरकार।
2: सरकार।
0: सुना है यूनियन की कोई गुप्त सभा होने वाली है?
2: हाँ सरकार, हड़ताल की तारीख तय करने और नोटिस जारी करने के लिए गांव के चौधरी के खेत में सभा होने जा रही है सरकार। लेकिन सरकार, ये बात आपको कैसे पता चली?
1: हाँ सरकार,
0: तू मुझे नहीं जानता, मैं बहुत पहुंची हुई चीज हूँ।
2: सरकार, हाँ मेरे सरकार, इस बात को हमसे बेहतर और कौन जान सकता है? क्यों
1: ठीक कह रहा भाई तू।
0: मानता हूँ कि चापलूसी की प्रतियोगिता हो तो सोने का तमगा तुम दोनों को ही मिलेगा।
1: अरे अरे सरकार की बातें।
0: तुम दोनों को अपना काम पता है ना?
1: पता है सरकार। बिल्कुल, हम दोनों यूनियन की गुप्त सभा में जाएंगे।
2: हाँ, और वहाँ की तमाम गोपनीय खबर आप तक पहुंचाएंगे।
0: शाबाश
2: सरकार। सरकार, एक पैग और बनाऊं?
0: नहीं नहीं, मुझे नशा होने लगा है। तुम्हें पीनी हो तो अपने लिए बना लो।
1: तो सरकार, हम ये बोतल लिए जाते हैं, थोड़ी देर साई के तट पर बैठेंगे, वही इसके साथ अपना मनोरंजन कर लेंगे सरकार।
0: बहुत बड़े उस्ताद हो तुम दोनों।
2: अरे हम क्या है सरकार, ना तो हम पित्ती है ना पित्ती का शोरबा, अगर कुछ है भी तो आपकी शराफत का एक जर्रा भर है।
1: बहुत छोटा सा जर्रा सरकार।
0: भाई मैं तुम दोनों को इसलिए पसंद करता हूँ कि तुम सामने वाले को खुश कर देते हो। तुम जैसे लोग बहुत जल्दी तरक्की करते हो।
2: तो ठाकुर साहब, बोतल ले जाए।
0: आ जा जा जा, ले जाओ।
1: अरे सरकार जिंदाबाद।

0: अरे क्या बात है शिबू, इतना खांस क्यों रहा है?
1: अरे यशवंत नेता जी,
0: मुझे नेता कहकर हमारे इंसानी रिश्ते को ना तोड़ शिबू। अरे हम दोनों तो धर्म भाई हैं।
1: यशवंत जी आप पढ़े
0: लिखे। ना ना ना शिबू ना, अभी बिल्कुल ना बोल। देख शायद तेरी तबीयत ज्यादा खराब है, कहे तो डॉक्टर या वैद्य के पास ले चला। अरे
1: यशवंत बाबू,
0: हाँ
1: मेरी बात अधूरी रह गई। मैं कह रहा था कि आप पढ़े लिखे हैं और मजदूर यूनियन में आप पहले दलित प्रतिनिधि हैं।
0: हाँ
1: हम दलित मजदूरों को आपसे अपने उद्धार की बड़ी आस है। यशवंत बाबू,
0: हाँ शिबू,
1: जिस तरह अंबेडकर भगवान ने देश के दलितों की अगुवाई कर शोषण की दलदल से उबारा था,
0: शिबू
1: उसी तरह आप भी साईं साइट पर काम करने वाले दलित मजदूरों के उद्धार के लिए लड़ रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं, एक देशभक्त नेता का यही सच्चा गुण होता है।
0: शिबू
1: तो फिर मैं आपको नेताजी ना कहूं तो और क्या कहूं यशवंत बाबू?
0: अरे शिबू, थोड़े शब्दों में तूने मेरी प्रशंसा के पुल बांध दिए। मुझे भगवान बनाने की कोशिश ना कर शिबू, इस कलयुग में इंसान को भगवान के दर्शन नहीं होते। देख मुझे इंसानों से, अपने से अलग ना कर, मुझे अपने बराबर रहने दे मेरे भाई।
1: यशवंत बाबू आपकी बातें, आपके विचार सरल और सच्ची इंसानियत की मिसाल हैं। आप जैसे इंसान पर किसी भी समाज को गर्व हो सकता है, खासकर दबे कुचले और उपेक्षित समाज को। दलित मजदूरों में आपका सम्मान बहुत बढ़ गया है।
0: अरे शिबू, मुझे सम्मान नहीं, तुम लोगों का सहयोग और प्यार चाहिए। देख हड़ताल की ये जो बातें चल रही हैं ना, उस पर मुझे संदेह है।
1: संदेह? कैसा संदेह?
0: हड़ताल की तारीख घोषित होने वाली है, लेकिन अभी तक हड़ताल का हमें मकसद नहीं मालूम है।
1: यशवंत बाबू, उस दिन बलबीर स्वामी ने कहा तो था हम मजदूरों को परमानेंट करवाने के लिए हड़ताल होगी, लेकिन कभी किसी की छटनी नहीं होगी।
0: अरे शिबू, इस तरह पहले भी कई हड़तालें हो चुकी हैं, हर बार या तो यूनियन के नेता बिक जाते हैं या फिर धन के अभाव में हड़ताल दम तोड़ देती है।
1: अरे यशवंत बाबू, आपने सुना नहीं था क्या, मजदूरों से चंदा लिया जाएगा, जरूरत पड़ने पर मजदूर यूनियन के मुख्यालय से भी मदद ली जाएगी।
0: मजदूरों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई का चंदा तो मिल जाएगा यूनियन को शिबू, मगर इसी चंदे से बने यूनियन फंड से कोई मदद मिलेगी इसकी संभावना मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आती।
1: तो क्या यूनियन के स्थानीय नेताओं का दावा खोखला है? अरे शास्त्री जी का सहायक झूठ बोल रहा है।
0: झूठ और दावों का सहारा नहीं लेंगे तो मजदूर बहकावे में कैसे आएंगे? बहकावे में आए बिना भला मजदूर अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई का चंदा देंगे? और अगर चंदा नहीं आएगा तो यूनियन के नेता गुलछर्रे कैसे उड़ाएंगे शिबू?
1: हड़ताल के पीछे यूनियन नेताओं के मौज मस्ती का षड्यंत्र।
0: हाँ शिबू हाँ।
1: यशवंत बाबू,
0: हाँ।
1: आपको इसके खिलाफ मजदूरों को सचेत करना चाहिए।
0: अरे कोई फायदा नहीं होगा शिबू, कोई फायदा नहीं होगा। मेरे पास इतने साधन नहीं हैं जितने यूनियन के नेताओं के पास हैं, और मोर्चा हमेशा साधनों से जीता जाता है शिबू।
1: ठीक कहते हैं आप, मोर्चा हमेशा साधनों से जीता जाता है, तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना होगा?
0: अरे फिलहाल हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है।
1: यशवंत बाबू, थोड़े ही दिनों में मैं आपका स्वभाव अच्छी तरह से पहचान गया हूं।
0: अब
1: मैं जानता हूं इस षड्यंत्र के खिलाफ आवाज उठाने वाले आप पहले आदमी होंगे, और आपके हाथ में होगी तलवार, वो तलवार जिस पर लाचारी की जंग नहीं लगी होगी, बल्कि
0: शिवू,
1: बल्कि विद्रोह की चमक होगी, चमक।
0: देख शिवू, भविष्य के गर्भ में क्या है इस विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।
1: ठीक कहते हैं आप, ठीक कहते हैं आप।
0: अरे शिवू, ये क्या शिवू, बलगम के साथ खून? क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है?
1: 5-7 बार हो चुका है।
0: अरे और तूने इस बात पर गौर नहीं किया?
1: अरे यशवंत बाबू, इसमें गौर करने वाली बात ही क्या है।
0: अनपढ़ समाज में स्वास्थ्य जागरूकता का अभाव है। गंदगी में रहने के लिए विवश होने के कारण भी अनपढ़ गवार मजदूर अनजाने में खतरनाक बीमारियों को पालने लगता है। अरे शिबू, तुझे टीबी की बीमारी हो सकती है। टीबी की?
1: टीबी?
0: हाँ टीबी। देख, जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर को दिखा, नहीं तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा तू। शिबू।
1: अरे यशवंत बाबू, ये तो खुशी की बात है। हे भगवान, तेरा धन्यवाद।
0: शिबू,
1: जाति शोषण और अपमान भरी जिंदगी से मैं आप लोगों से पहले मुक्त हो जाऊंगा। क्यों? हो रही है ना आपको भी मेरे भाग्य से ईर्ष्या?
0: शिबू, देख तू पागलपन की बात ना कर। मेरी मान तो अभी जा डॉक्टर के पास। देख, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो मुझसे ले ले। अब ये ठहर, मैं तेरे साथ चलता हूं डॉक्टर के पास।
1: कोई जरूरत नहीं।
0: अरे अपने आप को संभाल शिबू, चल चल मेरे साथ। आ।

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से इस कार्यक्रम में जंग लगी तलवार, इस धारावाहिक की चौथी कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत आज प्रदेश भर में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सुरक्षित मातृत्व प्रत्येक महिला का अधिकार है। उन्होंने अपील की कि वे शिविरों में पहुंचकर स्वास्थ्य जांच अवश्य कराएं। इंदौर में आज ब्रिक्स कृषि सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, इंडोनेशिया, चीन, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। 5 दिवसीय इस सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों को मजबूत बनाने जैसे अहम विषयों पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश में संविदा कर्मियों के वेतन में 4.5% से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अप्रैल 2026 से 1,00,000 संविदा कर्मियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा। नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों की

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान है।

महिला सभा सुनने वाली सभी प्यारी सखियों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। आज आपके साथ हूँ मैं प्रीति जोशी, आप सभी को मेरा नमस्कार। सखियों, आज करेंगे आपसे बहुत सारी बातें और सुनवाएंगे कुछ प्यारे से मधुर गीत, लेकिन पहले बात करते हैं डिजिटल डिटॉक्स की। जी हाँ सखियों, आज के समय में मोबाइल, कंप्यूटर और सोशल मीडिया हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि इनके अत्यधिक उपयोग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में डिजिटल डिटॉक्स यानी कुछ समय के लिए डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए सखियों प्रतिदिन कुछ समय मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहें, भोजन के समय फोन का उपयोग बंद करें, किताबें पढ़ने, व्यायाम करने या किसी रचनात्मक गतिविधि में समय दें, सोने के एक घंटा पहले स्क्रीन बंद करने की आदत जरूर डालें और यही सारी चीजें आप अपने बच्चों को भी सिखाएं। इससे आपको कई लाभ होंगे। आंखों पर पड़ने वाला तनाव कम होगा, नींद अच्छे से आएगी, मानसिक तनाव भी कम होगा, परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, प्रकृति और वास्तविक जीवन के अनुभवों से जुड़ाव बढ़ता है। सखियों, डिजिटल तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाती है, लेकिन इसका संतुलित उपयोग ही हमें स्वस्थ और खुशहाल बना सकता है। इसीलिए समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स अपनाना बेहद जरूरी है। अब आगे आपसे और भी बातें होंगी, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: और सखियों अब बात करते हैं व्यापार संबंधी उद्यमिता विकास सहायता योजना की। सखियों, इस योजना का उद्देश्य युवाओं, महिलाओं तथा रोजगार शुरू करने के इच्छुक व्यक्तियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करना है। हमारे प्रदेश में यह सहायता विभिन्न योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के माध्यम से दी जाती है। इस योजना के बहुत सारे लाभ हैं सखियों। नया व्यापार या उद्योग शुरू करने के लिए बैंक ऋण की सुविधा है, अनुदान सहायता प्राप्त कर सकते हैं आप इस योजना के जरिए, ब्याज अनुदान ऋण गारंटी सहायता है, उद्यमिता विकास एवं व्यवसाय प्रबंधन का प्रशिक्षण, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना भी इस योजना का उद्देश्य है। पात्रता की बात करें सखियों तो आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी हो, स्वरोजगार या नया व्यवसाय स्थापित करने की इच्छा रखता हो, साथ ही वह शैक्षणिक योग्यता रखता हो। आवेदन करने के लिए सखियों आवेदक राज्य के MSME पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। तो सखियों आप भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। और अब कार्यक्रम में शामिल होते हैं और भरते हैं हौसलों की उड़ान।
1: उड़ान खुशियों की, उड़ान सपनों की, उड़ान हौसलों की, मेरी उड़ान।
0: सखियों श्रृंखला मेरी उड़ान में आज हम मिल रहे हैं क्लासिकल डांस टीचर से। आइए इनसे जानते हैं इनका परिचय।
2: नमस्कार सखियों, मैं क्लासिकल डांस टीचर हूं। इंदौर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में मेरी खुद की डांस एकेडमी भी है और मैं क्लासिकल गुरुकुल भी चलाती हूं। मेरा नाम दिया सिंह ठाकुर है।
0: दिया जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपने बताया कि आप एक डांस टीचर हैं, तो नृत्य कला के क्षेत्र में आपने कैसे सोचा कि मुझे इस फील्ड में आना है, इसे बतौर करियर लेना है?
2: मुझे बहुत ही शौक था बचपन से डांस करने का। पढ़ाई में मेरा मन लगता नहीं था, कहीं भी म्यूजिक सुनती थी तो मुझे अच्छा लगने लगता था। तब मैंने मेरे अपने पापा से बोला कि स्कूल में शंकर जी और पार्वती जी का डांस है तो वो एज अ वंदना, एज अ पूजा होगी, मुझे करने दीजिए। तब पापा एग्री हुए और वहां से डांस का सिलसिला शुरू हुआ और आज मैंने MA कंप्लीट करके PhD में हूँ कथक में। और मैं आप सभी को ये भी मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर कोई कला है तो उसे मत छुपाइए, लोगों को बताने की अलग अलग तरीके से कोशिश कीजिए। कोई तो ऐसा तरीका होगा आपके बताने का जो आपके पेरेंट्स को, आपके घर वालों को समझ में आएगा।
0: बहुत अच्छी बात कही। तो आप इस फील्ड में जब आई तो आपने किस तरह के कोर्स करे, क्योंकि हमारी कोई श्रोता सखी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती है, एक डांस टीचर बनना चाहती है, तो उन्हें किन बातों को जानना जरूरी है आप बताइए।
2: देखिए जैसे बॉलीवुड वेस्टर्न फिल्मी आजकल की तो देखा जाए तो पूरी दुनिया ही दीवानी है डांस और म्यूजिक की। हम चाहें तो इसमें हमारी आय का जरिया बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अगर आपको घर से कोई कोर्स करने की परमिशन नहीं है तो आप ऑनलाइन भी काफी सारे कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं, वो करके आप अपने घर पे भी क्लासेस खोल सकते हैं जिससे आप अपनी आय कमा सकते हैं। इसके अलावा क्लासिकल में डिग्री होती है, BA होता है, MA होता है, PhD होता है, डिपेंड ऑन यू। आपको कुछ भी अगर करने मिलता है तो यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं आजकल क्लासिकल की, कथक, भरतनाट्यम, बहुत सारे आर्ट फॉर्म है क्लासिकल में जिसकी डिग्रियां होती हैं, जिसका पे स्केल शुरू होता है फर्स्ट ईयर से 20,000। मतलब कि अगर आप चाहें तो बहुत अच्छी आय कर सकती हैं, अपने परिवार को भी चला सकती हैं, अपने हस्बैंड का भी सपोर्ट कर सकती हैं।
0: जब आप इस क्षेत्र में आई तो किस तरह की परेशानियों का सामना आपने किया?
2: एक्चुअली घर वालों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था, कुछ पता भी नहीं था कि मैं क्या करूं, कैसे आगे बढूं, तो ये बड़ा चैलेंज था कि घर वालों को कैसे मनाए। फिर पापा ने कहा कि नहीं बिल्कुल डांस में नहीं जाना है, अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करा। तब मैंने पापा से कहा कि नहीं पापा मैं पढ़ाई भी प्रॉपर करूंगी और मुझे डांस में भी डिग्री करनी है। फिर धीरे धीरे घर वाले मानने लगे, सिचुएशन सेट होती गई और आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप अपने पैरों पर खड़ी हैं। आर्थिक उपार्जन की बात करें तो आप संतुष्ट हैं इस फील्ड में आकर?
2: हाँ जी मैम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सखियों को मैं मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आप लोग भी चाहें तो जस्ट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं इतना ज्यादा स्कोप है। और होता ये कि ना किसी का कोई बर्डन है कि हमें ये काम, ये फाइल कंप्लीट करके देनी है, शाम तक हमारा एक टारगेट है वो पूरा है, कुछ नहीं करना है। बच्चों के साथ मस्ती करनी है, इंजॉय करना है, शौक पूरा करना है और साथ साथ में हमारी आय भी कर लेनी है। और मैं आप सभी को एक और मैसेज देना चाहूंगी कि यदि आप लोगों को अपने घर से परमिशन नहीं है किसी इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए या आप बाहर नहीं जा सकती हैं अपने परिवार की वजह से, बहुत सारी कारण होते हैं नहीं बाहर जाने के, तो उसके जगह पे आप बहुत अच्छे से अपनी एकेडमी भी ओपन कर सकती हैं। आजकल तो बहुत सारे लोन भी इजीली मिल जाते हैं, तो लोन लेके आप खुद की डांस क्लास ओपन कर सकती हैं, जिससे आपका नाम भी होगा, आपकी आय भी होगी और आपको बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ आप अपने पूरे परिवार का ख्याल भी रख पाएंगी।
0: दिया जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, आपकी बातें वाकई में बहुत प्रेरणास्पद है। आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: उड़ान खुशियों की, उड़ान सपनों की, उड़ान हौसलों की, मेरी उड़ान।

सखियों गीत सुनकर तो आनंद ही आ गया। अब बढ़ते हैं हमारे ब्यूटी सेक्शन यानी कि रूप लावण्य की ओर। सखियों रूप लावण्य में आज बात होगी सनबर्न से हाथ पैर अगर हो गए हैं काले तो लगाएं ये एंटीऑक्सीडेंट पैक। जी हाँ सखियों, आज हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे ही पैक जिनसे आपके जो हाथ जो काले हो गए हैं वो एकदम गोरे और सुंदर हो जाएंगे। तेज धूप में पसीना और लगातार यूवी किरणों के संपर्क में रहने से गर्मियों में हाथ पैरों की जो त्वचा होती है वो जल्दी टैन हो जाती है। इससे स्किन का रंग आसमान

जैसा दिखने लगता है, कई बार रूखापन भी आ जाता है। ऐसे में जो एंटीऑक्सीडेंट पैक होते हैं और एक्सोफोलेट जो गुणों से भरपूर होते हैं, जैसे कि हम बात करें टमाटर की, आलू की, चावल के आटे की, दही और शहद का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो आप सनबर्न और टैनिंग में राहत पाते हैं। तो आइए कुछ ऐसे ही पैक आपको हम बता देते हैं। चावल के आटे और दही का एक पॉलिशिंग पैक हम आपको बता रहे हैं। 2 चम्मच चावल का आटा और दही मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं। इसे हाथों और पैरों पर लगाकर 15 मिनट बाद हल्के हाथों से रगड़ लें। अब हम बता रहे हैं आलू का जो पैक है वो बता रहे हैं। आलू का रस निकालकर आइस ट्रे में जमा दीजिए। इन क्यूब्स को टैन हुई त्वचा पर 5 मिनट रगड़ें। इसमें मौजूद एंजाइम्स त्वचा की रंगत हल्की करने में मदद करते हैं। ग्रीन टी जो होती है वो भी बहुत मददगार होती है। ठंडी ग्रीन टी में हाथ पैर 10 मिनट डुबो कर रखें। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सन डैमेज कम करते हैं और त्वचा को राहत देते हैं। ऐसे ही सकियों, टमाटर और शहद का ब्राइटनिंग एक मास्क है वो हम आपको बता रहे हैं। तो टमाटर के रस में शहद मिलाकर 20 मिनट लगाइए। इसमें मौजूद जो लाइकोपिन है वो धूप से हुई क्षति को कम करता है। ऐसे ही सप्ताह में 1 से 2 बार आप कॉफी पाउडर, नारियल तेल और चीनी मिलाकर स्क्रब करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। साथ ही सखियों, कच्चे दूध में 3 से 4 केसर के धागे भिगोकर कॉटन से लगाएं। यह त्वचा को पोषण देकर रंगत निखारता है। तो ये कुछ एंटीऑक्सीडेंट पैक है जो आप लगाएंगे तो सनबर्न से दूर रहेंगे और आपकी त्वचा भी निखरी निखरी नजर आएगी। और अब सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

और सखियों अब पढ़ते हैं महिला सभा के किचन में। सखियों गर्मी के मौसम में आपने पुदीना, धनिया और टमाटर की चटनियां तो कई बार खाई होंगी, लेकिन क्या कभी ककड़ी, खीरा और लौकी की चटनी ट्राई की है? नहीं ना? तो चलिए आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे ही कुछ स्वादिष्ट चटनियां। ककड़ी की चटनी की बात करें सखियों, तो आपको चाहिए एक कप कद्दूकस की हुई ककड़ी, आधा कप दही, एक हरी मिर्च, एक चम्मच भुना जीरा, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा हरा धनिया। विधि बहुत ही आसान है सखियों। ककड़ी को हल्का निचोड़ लें ताकि अतिरिक्त जो पानी है वो निकल जाए। अब इस

में दही, हरी मिर्च, जीरा और नमक के साथ मिक्सी में हल्का सा इसे पीस लें। ऊपर से हरा धनिया डालकर सर्व करें। यह चटनी रायते जैसी ठंडी और स्वादिष्ट लगेगी। सखियों, एक बड़ा खीरा छिला हुआ, 2 चम्मच पुदीना पत्ते, 1 हरी मिर्च और 1/2 नींबू का रस, थोड़ा सा काला नमक, ये आप ले लें। और इसके साथ ही बनाने की जो विधि है, इसकी जो खीरे की हम जो ताजगी भरी जो चटनी आपको बता रहे हैं, उसकी विधि बहुत ही आसान है। खीरे को टुकड़ों में काट लें, पुदीना मिर्च के साथ पीस लें, इसमें नींबू का रस और नमक मिलाएं। ठंडी ठंडी चटनी स्नैक्स के साथ जरूर खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। सखियों, अब आपको बता रहे हैं लौकी की हेल्दी चटनी। इसके लिए आपको सामग्री चाहिए, 1 कप उबली हुई लौकी, 2 लहसुन की कलियां, 1 हरी मिर्च, 1 चम्मच दही, नमक 1/2 छोटा चम्मच, सरसों के दाने 1 चम्मच और थोड़ा सा हमें चाहिए इसके लिए तेल। लौकी का पानी निकालकर लहसुन, मिर्च, दही, नमक के साथ इसे अच्छे से मिक्सर में पीस लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके सरसों के दाने डालें, तड़का लगाकर चटनी में मिलाएं। सखियों, ये लो कैलोरीज और हाई फाइबर युक्त जो चटनियां हैं, वो जलन और एसिडिटी कम करती हैं। पाचन सुधारने के साथ साथ यह वजन नियंत्रण में भी सहायक होती है। यह शरीर में टॉक्सिन पदार्थ बाहर निकालने में भी मददगार है। तो आज इन चटनियों को आप अपने रसोई घर में जरूर ट्राई करें। और अब सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

सखियों, काम की बातों में आज बातें होंगी एसी की। जी हाँ सखियों, गर्मी का मौसम है तो अक्सर हम कूलर और एसी का उपयोग करते हैं। इससे हमारा जो बिजली का बिल है वो भी बहुत ज्यादा आता है। इसीलिए इसको कम करने के लिए कुछ जरूरी उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। कई बार सखियों एसी को 16 से 18 डिग्री पर चला देते हैं, जिससे बिजली ज्यादा खर्च होती है। विशेषज्ञों के अनुसार 24 से 26 डिग्री जो तापमान होता है वो शरीर और बिजली दोनों के लिए बेहतर माना जाता है। तो आप इस मोड पर अपना जो एसी है वो चलाएं, साथ ही फिल्टर की सफाई पर भी ध्यान दें। गंदे फिल्टर की वजह से एसी सही तरीके से कूलिंग नहीं कर पाता है, इसीलिए हर 15 से 20 दिन में फिल्टर साफ करना बहुत जरूरी है, ताकि हवा भी साफ मिले और मशीन पर दबाव भी न पड़े। और साथ ही सखियों, एसी के साथ साथ सीलिंग फैन चलाने से ठंडी हवा चारों तरफ फैलती है, इसीलिए आप एसी तो चलाएं लेकिन सीलिंग फैन भी जरूर चलाएं। और स्लीप या टाइमर मोड पर भी आप एसी को रख सकते हैं। रात भर एसी चलाने के बजाय टाइमर या स्लीप मोड सेट करना बेहतर होता है सखियों। यह रूम टेम्परेचर के अनुसार सेट हो जाता है, तो इन बातों का आप जरूर ख्याल रखें सखियों। और इन गर्मियों में आप अपने बिजली का बिल कम कर सकती हैं इन तरीकों को अपनाकर। सखियों, समय इशारा कर रहा है कि आपसे अनुमति ली जाए। आपको बता दें, आज के इस खूबसूरत से कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। अब प्रीति जोशी को दे अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।

0: और अब एक सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रम की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस निर्माता अधिकार स्वामी एग्रीगेटर कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम सोर्सिंग राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। यह सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधन आदेश के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। यह सभी दस्तावेज प्रसार भारती आकाशवाणी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रम की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in एवं hopairbhopal@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान है। पहले सुनिए निमाड़ी लोकगीत भाईराम गपोजी रणसोर और साथियों के स्वर में।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। लीजिए आप सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान है। इस कार्यक्रम में पहले सुनिए राधा कुलकर्णी के स्वर में गजल।

इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा है कि सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की राह पर है। उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक साझा करते हुए कहा कि सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो दूसरों के कल्याण से ईर्ष्या के बिना नेक काम करता है, और यही भावना राष्ट्र निर्माण में सरकार की सबसे बड़ी ताकत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी है। डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने खुद को हमेशा प्रधान सेवक माना और गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के जीवन में बदलाव लाए। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, और आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने करोड़ों परिवारों की जिंदगी को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती आबा ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए विदेशी शासन के खिलाफ अदम्य साहस से संघर्ष किया और जनजातीय समाज के आत्मसम्मान व अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वहीं लोकभवन में भी आज जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने जल, जंगल, जमीन की रक्षा और देश की आज़ादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में मंडी टैक्स को 1 से बढ़ाकर 1.5% करने का फैसला लिया गया, जिससे सरकार को सालाना करीब 835 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये राशि अधोसंरचना विकास और गो संवर्धन में लगाई जाएगी। वहीं कपास पर मंडी शुल्क को घटाकर प्रति गठान 50 पैसे किया गया है। मेट्रो रेल परियोजना की लागत में 3000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई है, जिससे यह अब करीब 10000 करोड़ रुपए की हो गई है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि तबादलों का काम 15 जून तक पूरा कर लिया जाए। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन शुरू हो गया है। इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात समेत कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ पहुंचे हैं। भारत इस बार सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। आज प्रतिनिधि एक साझा घोषणा पत्र के मसौदे पर विचार विमर्श करेंगे और दिन भर कई दौर की बैठकें होंगी। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती और छोटे किसानों को मजबूत बनाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज प्रदेश के सभी जिलों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त जांच, दवाएं और विशेषज्ञ परामर्श मिलेगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सभी गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों से इन शिविरों का लाभ उठाने की अपील की है। जरूरतमंद महिलाओं के लिए 108 एम्बुलेंस से मुफ्त परिवहन की सुविधा भी रहेगी। प्रदेश की शौर्या दल आज देश की सबसे बड़ी महिला सामाजिक नेटवर्क बन चुकी हैं। साल 2013 में महज 6 जिलों से शुरू हुई इस मुहिम में अब तक 22 लाख से ज्यादा महिलाएं और बेटियां जुड़ी हैं, जिनमें स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों से लेकर अनुभवी गृहणियां तक शामिल हैं। ये दल घरेलू हिंसा, बाल विवाह और मानव तस्करी जैसी समस्याओं को पुलिस के पहुंचने से पहले ही सामुदायिक स्तर पर सुलझा देता है। सरकार ने इस कार्यक्रम को 2030-31 तक जारी रखने का फैसला किया है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून अगले हफ्ते 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है। विभाग के मुताबिक मानसून इंदौर और जबलपुर के रास्ते प्रदेश में प्रवेश करेगा। अब तक प्री मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी। आज प्रदेश के करीब 2 दर्जन जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट है, जबकि भिंड, दतिया और बुंदेलखंड के कुछ जिलों में अगले 2 दिन तक लू चलने की आशंका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में आरोग्यम नर्मदापुरम अभियान के तहत जिले की सभी पंचायतों में प्रत्येक बुधवार और शनिवार को जन स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी जिले के प्रत्येक विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों में 12 से 18 जून तक 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। सिंगरौली कलेक्टर ने काठमांडू में आयोजित इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप के पदक विजेता जिले के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अग्निकांड जैसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से नीमच SDM और तहसीलदार ने आज ज्ञानोदय अस्पताल का निरीक्षण किया। और खंडवा में समान नागरिक संहिता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य प्रोफेसर गोपाल शर्मा और डॉक्टर शोभा पैटड़कर 11 जून को खंडवा आएंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
2: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनीमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
5: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई

0: इसे भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
1: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये पहली फरमाइश है हमारे इन सभी श्रोता साथियों की। ये है, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान, सारिका, सुरेखा, सोनम और ये साथी हैं। उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपंक, मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा, कोश मूड़त। इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमीला बामनिया, नंदनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है फिल्म बड़े दिल वाला, इस फिल्म का गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर, किशोर कुमार के। गीतकार हैं मजरूह और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और ये अगली फरमाइश है पंजाब रूपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर नीरक, जैतेंग बिरक, मीका बिरक, भाटापारा दतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार वर्मा, और नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रभाकर जोनले, आरती जोनले। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है राजा रानी, इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर, किशोर कुमार की, गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है आर डी बर्मन का।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश है। फिल्म है रफू चक्कर, और इसका ये प्यारा सा गीत गाया है शैलेंद्र सिंह आशा भोसले ने। गीतकार हैं गुलशन बावरा और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिकेश, साक्षी मनन तानिया, धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन राणा।

में सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश भेजी है बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी, मीनूराज श्रीमाली, और ये जो साथी हैं हमारे ये हैं अमलेश्वर छत्तीसगढ़ से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर, और बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है पराया धन, इस फिल्म का गीत जिसके लिए आवाज़ है किशोर कुमार, लता मंगेशकर की, गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है आर डी बर्मन का।

आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश है। बलिया उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय और सिंहपुर से राजेश नेमा, संगीता, भावना, प्राची नेमा और कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, सुनील सिंह, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, शेख जमील मंसूरी, इन सभी श्रोता साथियों ने पसंद किया है। फिल्म अनुरोध का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है किशोर कुमार की, गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश है हमारे इन सभी श्रोता साथियों की। ये है खंडवा मध्य प्रदेश से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र सनमति पंचोलिया, और राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मीन, प्रयागराज भट्ट, औरंगाबाद महाराष्ट्र से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, इन सभी श्रोता साथियों ने पसंद किया है ये प्यारा सा गीत, जिसके लिए आवाज़ है किशोर कुमार आशा भोसले की और फिल्म है जवानी दीवानी।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की राह पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद को हमेशा प्रधान सेवक माना है और गरीब युवा किसान और महिलाओं के जीवन में नया बदलाव लाए हैं। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती आबा ने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए विदेशी शासन के खिलाफ अदम्य साहस से संघर्ष किया और जनजातीय समाज के आत्मसम्मान व अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में मंडी टैक्स को 1 से बढ़ाकर 1.5% करने का फैसला लिया गया, जिससे सरकार को सालाना करीब 835 करोड़ रुपए मिलेंगे। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन शुरू हो गया है। इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात समेत कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज प्रदेश के सभी जिलों में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त जाँच, दवाएं और विशेषज्ञ परामर्श दिया जाएगा। और प्रदेश की शौर्य दल आज देश में सबसे बड़ी महिला सामाजिक नेटवर्क बन चुकी है। वर्ष 2013 में महज 6 जिलों से शुरू हुई इस मुहिम में अब तक 22 लाख से ज़्यादा महिलाएं और बेटियां जुड़ी हैं, जिनमें स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों से लेकर अनुभवी गृहिणियां तक शामिल हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

और रात 10 बजे सुनिए फिल्म संगीत। शाम 6 बजे सुनेंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 8 बजे आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष आर्थिक विकास ये कार्यक्रम।

उर्दू कार्यक्रम कहकशां रात 9:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी आप सुनेंगे रात 10:00। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे राग मारू बिहाग में ख्याल गायन संगीता गोस्वामी से।

आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे 7:21 पर। ये थी जानकारी आज शाम के सभा के कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 3:03 हुए हैं, हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम की सभा में 5 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, पर इस बीच डीटीएच पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान है। इस कार्यक्रम में पहले सुनिए निमाड़ी लोकगीत, भाईराम गप्पू जी रनसोर और साथियों के स्वर में।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। लीजिए आप सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान है। पहले सुनिए राधा कुलकर्णी के स्वर में ये गजल।

इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए, आप सुनते हैं चित्रपट संगीत।

हिमेश रेशमिया, कृष्णा, अहीर, इन साथियों के स्वर में अभी आपने आशिक बनाया। आपने इस फिल्म का गीत सुना, गीतकार थे समीर, संगीत था हिमेश रेशमिया का।

0: रन फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी अलका याग्निक, सोनू निगम की, गीतकार थे समीर और संगीत था हिमेश रेशमिया का।
1: जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा, Who is he?

कभी खुशी कभी गम इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक, सोनू निगम, करीना कपूर की आवाज में। गीतकार थे समीर और संगीत था संदेश शांडिल्य का।

0: इसके साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आज मंत्रालय में हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश के बुनियादी ढांचे, तकनीकी विकास और किसान कल्याण से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 13,800 करोड़ रुपए की स्वीकृति के साथ कई बड़े एवं महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती आबा ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए विदेशी शासन के खिलाफ अदम्य साहस से संघर्ष किया और जनजातीय समाज के आत्मसम्मान व अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेज ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की है। श्री गुटारेज ने सभी हितधारकों से हमले रोकने और संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने सभी पक्षों से लेबनान, ईरान और गाजा में हुए युद्ध विराम का पालन करने का आह्वान भी किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित रक्षा भूमि पर पहली बड़े पैमाने की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की पहली परियोजना है, जिसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा का विकास शामिल है। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से शुरू हो गया है। इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात समेत कुल 21 देशों के कृषि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी तथा विशेषज्ञ पहुंचे हैं। और प्रदेश की शौर्य दल आज देश की सबसे बड़ी महिला सामाजिक नेटवर्क बन चुकी है। साल 2013 में महज 6 जिलों से शुरू हुई इस मुहिम में अब 22 लाख से ज्यादा महिलाएं और बेटियां जुड़ी हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्द सागर। इसमें पहले सुनिए वार्ता, हिंदी पत्रकारिता दो सदियों का सफर। वार्ताकार हैं दीपक पगारे।
1: बीती 30 मई को जब हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे हो चुके हैं, तब पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति का अवलोकन करने से पूर्व हमें हिंदी पत्रकारिता के अग्रदूत पंडित बाबूराव विष्णु पराटकर का यह कथन ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा था, पत्र निकालकर सफलतापूर्वक चलाना बड़े बड़े धनिकों अथवा सुसंगठित कंपनियों के लिए ही संभव होगा।

संपादकों की नीति न होगी। इन गुणों से संपन्न लेखक विकृत मस्तिष्क समझे जाएंगे, संपादक की कुर्सी तक उनकी पहुंच भी न होगी। वेतनभोगी संपादक मालिक का काम करेंगे और बड़ी खूबी के साथ करेंगे। पंडित पराटकर ने यह टिप्पणी करीब 9 दशक पहले की थी, यानी तब तक हिंदी पत्रकारिता 225 साल की तो हो ही गई होगी। उसके बाद के सालों में उनकी यह टिप्पणी या चिंता दिनों दिन फलीभूत ही हो रही है। निसंदेह आज समाचार पत्रों का कलेवर आकर्षक हो चला है। कंप्यूटर क्रांति ने इसमें 4 चांद लगाए हैं। कंप्यूटर के दौर में समाचार पत्रों के दफ्तर भी आकर्षक हो गए हैं। पत्रकार भी अपनी पारंपरिक छवि तोड़कर एक लकदक जीवन जी रहे हैं, यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में वैयक्तिक और आर्थिक दोनों ही तरह की समृद्धि आई है। आज से 200 साल पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता, जिसे अब वर्तमान में कोलकाता कहा जाता है, वहां से पंडित युगल किशोर शुक्ल ने पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड निकाला था। उस पत्र का ध्येय था हिंदुस्तानियों के हित का हेत। इस समाचार पत्र के प्रकाशन का उद्देश्य था आजादी के प्रति लोगों के मन में एक चेतना जगाना। इसके बाद भी हिंदी तथा अन्य भाषाओं में जो पत्र निकले, उनका उद्देश्य भी स्वतंत्रता के लिए ही समाज में जन जागरूकता फैलाना था। इसके लिए उस दौर के पत्रकारों ने तरह तरह की प्रताड़नाएं झेली, लेकिन अपने उद्देश्यों से भटके नहीं। यदि हम इतिहास को खंगालेंगे तो पाएंगे कि देश को स्वतंत्रता दिलाने में समाचार पत्रों का अहम योगदान रहा है, और उसके बाद स्वतंत्र भारत को पुष्ट करने में भी इन्हीं पत्रों ने महती भूमिका निभाई है। लेकिन समय के साथ पत्रकारिता में कई तरह के बदलाव आए हैं। अब पत्रकारिता के नए नए माध्यम सामने आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पत्रकारिता का एक सशक्त माध्यम है ही, अखबार के बाद यह दूसरा विश्वसनीय माध्यम माना जाता है। इसके साथ ही सोशल मीडिया एक नया घटक आया है, लेकिन यह सर्वस्वीकार्य नहीं है। हालांकि स्वप्रचार का यह एक ताकतवर साधन है। समाचार पत्रों के ई स्वरूप का चलन भी बढ़ा है, उसके साथ ही एक अनुषंग के रूप में डिजिटल अंक भी आए हैं। कुछ बड़े समाचार पत्रों के अपने चैनल भी साथ साथ चल रहे हैं। इस तरह पत्रकारिता के अन्य माध्यम जुड़ने से पत्रकारिता अब मीडिया हो चली है। इसे मीडिया इंडस्ट्री कहा जाने लगा है, इसलिए यहाँ काम करना भी एक कैरियर मान लिया गया है। कुल मिलाकर 200 साल में पत्रकारिता में कई तरह के बदलाव आए हैं, और आना स्वाभाविक भी है। बदलाव या परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, तो पत्रकारिता भी इससे अछूती नहीं रह सकती। लेकिन सकारात्मक बदलाव तो ठीक हैं, अपने मूल उद्देश्य या प्रकृति से बदलाव चिंताजनक है। इस तब्दीली में हम यह महसूस कर रहे हैं कि पत्रकारिता के मूल भाव में बदलाव आया है। कभी यह मिशन था, अब प्रोफेशन हो चला है। आज पत्रकारिता का स्वर बदल गया है। कभी पत्रकारिता का स्वर था हिंदुस्तानियों के हित का हेत, लेकिन आज ये हो चला है सबका अपना हेत। सब समाचारों में अपना ही हित देख रहे हैं। कभी किसी शायर ने कहा था, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो एक अखबार निकालो। लेकिन आज कहते हुए दुख हो रहा है, सब अपनी अपनी तोप को बचाने के लिए अखबार निकाल रहे हैं। इस वजह से पत्रकारिता का जो मूल भाव है लोक कल्याण, वह मीलों पीछे छूट गया है। आज समाचार पत्रों में समाचार और विचार दोनों ही गौड़ हो गए हैं। जो सामग्री प्रकाशित हो रही है उसमें पाठक की रुचि नहीं, अपना हित देखा जा रहा है। यह स्थिति चिंताजनक है। बीते 2 दशकों में तो स्थिति और भी बदतर हुई है। उसके मूल में जाएं तो जैसा पहले उल्लेख किया कि समाचार पत्र का मीडिया बन जाना, मिशन का प्रोफेशन बन जाना, यही मूल कारण रहा है। इस प्रवृत्ति ने आपसी होड़ को जन्म दिया। व्यावसायिक मानसिकता के चलते समाचार पत्रों को अपने पाठक बनाने की जगह ग्राहक बनाने शुरू कर दिए हैं। पंडित पराड़कर ने तो सालों पहले यह चिंता जाहिर कर ही दी थी। इन ग्राहकों को एक के साथ एक फ्री जैसी लुभावनी स्कीम दी जाने लगी है।
इससे उसमें प्रकाशित होने वाली

0: वाली सामग्री प्रभावित हुई है। ऐसे लोग या संगठन जो समाज में अपनी बात मनवाना चाहते हैं, वे मीडिया का उपयोग अपने हित में करने लगे हैं। इसमें अखबार और टीवी चैनल दोनों ही बराबर के भागीदार हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस प्रवृत्ति के लोगों के लिए ये दोनों ही एक समान औजार की तरह कार्य कर रहे हैं। पाठक या ग्राहक को अपनी ओर खींचने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास होने लगे हैं। उसे आकर्षित करने के लिए राजनेताओं के बीच में विवाद, चरित्र हनन, बेवजह के स्टिंग ऑपरेशन जैसे उपक्रम चलाए जाते हैं। इस होड़ के चलते मीडिया की विश्वसनीयता संदिग्ध हो चली है। लोग इन माध्यमों में आई खबरों पर आज सहज विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उनके मन में संशय तो फिर भी रहता ही है। पिछले कुछ समय से एक नया चलन आ गया है। अब समाचार पत्र या अन्य माध्यम पाठक या श्रोता तैयार करने की बजाय टारगेटेड रीडर्स तैयार कर रहे हैं। ये टारगेटेड रीडर्स वही हैं जो इन संस्थानों के हित साध रहे हैं, इसलिए उसकी रुचि या उसके लाभ को देखते हुए ही सामग्री परोसी जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पत्रकारिता में आए बहुत से बदलाव सकारात्मक हैं। जैसे पहले उल्लेख किया कि आज समाचार पत्रों के ई स्वरूप सामने आ रहे हैं। इसका बड़ा लाभ यह है कि देश विदेश के अखबार पलक झपकते ही पाठक के सामने होते हैं। वह उसमें प्रकाशित समाचारों या लेखों में से किसी भी घटना का वैश्विक प्रभाव आसानी से जान समझ लेता है। इसी तरह डिजिटल स्वरूप से किसी घटना को फौरी तौर पर जान लेता है। उसी पत्र के चैनल के माध्यम से वह वहाँ की जीवंत तस्वीर देख लेता है। हालांकि बात के दो माध्यमों में अतिरंजना की गुंजाइश ज़्यादा रहती है, इससे बचना होगा। आज हम हिंदी पत्रकारिता के द्विशताब्दी वर्ष में पत्र पत्रिकाएं या विभिन्न संस्थाएं इस पूरी यात्रा के पुनरावलोकन की दिशा में कई तरह के अनुष्ठान कर रहे हैं और किए भी गए, किए भी जाएंगे। इससे साबित होता है कि अभी भी पत्रकारिता के इस गौरवशाली अतीत और उसकी बुनियाद पर उसके भविष्य को गढ़ने की ललक लोगों के मन में है। आज से 100 साल बाद जब पत्रकारिता 300 साल की होगी तो मौजूदा वक्त के हम लोगों में से शायद ही कोई जिंदा होगा, या होगा भी तो आयु के किस मुकाम पर होगा इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी उस पीढ़ी के लोगों में पत्रकारिता को बचाने की ऐसी ही ललक होनी चाहिए। यह तभी संभव है जब हम भावी पीढ़ी के सामने ऐसा माहौल छोड़कर जाएं जैसा हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ा था। हम उन्हें भी ऐसा ही एक अतीत दें जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया। आज भी और तब भी पत्रकारिता को एक कैरियर के रूप में देखा जाए तो इस पर कोई बुराई नहीं है। इससे भौतिकता के दौर में नई पीढ़ी के बच्चे इस तरफ भी आकर्षित होंगे। लेकिन इसमें सिर्फ ग्लैमर की तलाश रास्ते से भटका सकती है। ऐसे में पत्रकारिता का मूल दायित्व लोक कल्याण का भाव इस पीढ़ी में जगाए रखना ही होगा। यदि उनमें कर्तव्य बोध रहा तो निसंदेह सोशल मीडिया की तमाम चुनौतियों से निपटने में इसे सहायता मिलेगी। यदि नई पीढ़ी के पत्रकार तमाम तरह की चमक दमक के बाद भी अपने मन में पत्रकारिता को मिशन के रूप में अपनाते हैं तो इस पवित्र पेशे का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। विशेषकर समाचार पत्रों को तो ये शुचिता बनाए ही रखनी होगी, क्योंकि तमाम आकर्षणों विकर्षणों के बाद भी आज भी सुबह सुबह सभी को पेपर वाले का ही इंतजार रहता है। ये बात और है कि वह अब ठंड धूप या बरसात में साइकिल से नहीं मोटरसाइकिल से हमारे घर आता है। बदलाव का यह भी एक रूप है। लेकिन इस सब के बावजूद हमारा नैतिक दायित्व है कि हम पत्रकारिता की उस शुचिता को बचाए रखें जिससे उस पेपर वाले का सभी को इंतजार रहे। पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्व होने के मैं सभी हिंदी जीवियों, हिंदी प्रेमियों और हिंदी सेवियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भविष्य में पत्रकारिता का यही स्वरूप हमारे सामने हो यह कामना भी करता हूँ।
1: ये थी वार्ता हिंदी पत्रकारिता 2 सदियों का सफर। वार्ताकार थे दीपक पगारे। अब लीजिए सुनिए काव्य पाठ डॉक्टर चित्रा सिंह से।
2: पहली कविता का शीर्षक है चांद की आत्मा। रात जब सो रही हो गहरी नींद की गोद में, रात जब सो रही हो गहरी नींद की गोद में, तारों से छिप छिपा कर चांद की आत्मा कर जाती है प्रवेश नदी की देह में। सतह पर बैठकर पहरा देता है जल उन्मिलन के क्षणों का। सूर्य देता है अर्ध किरणों से पवित्र नदी का ध्यान भंग करने। उनके द्वारा की गई सामूहिक प्रार्थनाओं का सच केवल सुबह को पता होता है। कविता का शीर्षक लैंप पोस्ट। लैंप पोस्ट की रोशनी से बातें कर रही हूँ मैं। लैंप पोस्ट की रोशनी से बातें कर रही हूँ मैं। सामने से गुजरने वाली लंबी काली सड़क थम गई है। पत्तों ने भी बंद कर दी हैं आपस की बातें। अभी अभी अधनींद से जागी है कोई टहनी, पूछ रही है तने से सुबह होने में और कितनी देर बाकी है। अगली कविता का शीर्षक है हंसी की भाषा में। जैसे फिसल जाती है रेत गुपचुप, जितना भी बांधो या भींचो मुट्ठियाँ। जैसे फिसल जाती है रेत गुपचुप, जितना भी बांधो या भींचो मुट्ठियाँ। ऐसे ही कितने सारे शब्द जो कह नहीं पाते कभी किसी से अपना मन, कोई पदचाप किए बगैर ही होंठों के करीब से होकर गुजरते हुए हंसी की भाषा में चुपचाप झर जाते हैं। अगली कविता का शीर्षक है और यह एक दिन भी। और यह दिन भी गुजर जाएगा चुपचाप, आँखों की आस को धोखा होगा, दिखाई देगा उन्हें सुदूर चमकीला रेगिस्तान। प्यास लेती रहेगी थाह उम्मीद के कलसे की, तली में बचा रखी जमा आखिरी दो चार बूंदों से ही, भरना होगा हमें अपना रीता मन। झूठ मूठ को ही सही, खुद को भी रिक्त करते रहेंगे हम हर रोज यूं कुछ इसी तरह। कविता का शीर्षक छांव को चाहिए। छांव को चाहिए कि मांगे धूप से अपना हिस्सा। छांव को चाहिए कि मांगे धूप से अपना हिस्सा। उदासी के चेहरे पर मुस्कानों का स्वाद होना चाहिए। घोर निराशा को आशाओं का दामन पकड़ना चाहिए। लड़खड़ाती नाउम्मीद को उम्मीद के सहारे चलना चाहिए। भरोसे को चाहिए कि जा बैठे यकीन की किसी ऊंची मकान पर। अंधेरे को उजाले से रोशनी में मिलना चाहिए। अगली कविता का शीर्षक हरी धूप। कई रोज बाद चूहा धूप ने नम आँखों को। कई रोज बाद चूहा धूप ने नम आँखों को और जी उठे फिर कुछ स्वप्न। पेड़ों ने सीधी की अपनी रीढ़, शाखों ने भी खोली बंद मुट्ठियाँ। पत्तों ने जोर से झटके केश जो जा उड़े आसमानों तक, जिन्हें आखिर धरती पर वापस ले ही आई हवा और ढांप दिया महीनों से मलिन पड़े धरती के काईदार चेहरे को। उन नए सपनों का नाम हरी धूप है। अगली कविता का शीर्षक है कभी। कभी कभार उस पार देखने को बीच से एक मोटी दीवार का ढह जाना जरूरी होता है। कभी कभार उस पार देखने को बीच से एक मोटी दीवार का ढह जाना जरूरी होता है, बशर्ते कि उसकी जगह ले ले कोई झीना पर्दा केवल आड़ भर के लिए। आँखों को तब भी मिलता रहेगा स्पर्श अपने प्रिय दृश्य का, जिन्हें छूकर मैला हो जाने के इल्ज़ाम से बरी रहेंगी उंगलियाँ। अगली कविता का शीर्षक है नदी का मन। आसमानी लिफाफे से झांकते आखिरी खत ने भी नहीं बांचा उसका नाम और पता। आंखें खोजती रह गईं महफूज सी जगह उस पीड़ा को छिपाने की। दरख्तों के मजबूत कंधे भी नहीं सह पाए जिनका बोझ कोरे इंतजार।

बहार का मौसम रीत चुका है, बादलों सा बहकर करीब करीब पूरा मटमैला तो यूं ही था, अब अनमना भी हो गया है नदी का मन। अगली कविता, धरती की गोद भराई। पृथ्वी एक केंद्र बिंदु है वृत्ताकार गोले का, जिसकी परिधि के इर्द गिर्द असंख्य स्त्रियां नृत्य कर रही हैं। वे अपने सधे पैरों से देती हैं जब थाप, तो व्रत के भीतर हलचल और कोलाहल पैदा होता है। बिंदु के गर्भ में पड़ा एक बीज आंखें मल उठ खड़ा होता है, स्त्रियों के चेहरे पर सिंदूरी आभा बिखर जाती है। वे उसे नाम देती हैं शुभकामनाओं का फूल, जो धरती की गोद भराई से उपजा है। मौसम और धरती इस कविता का शीर्षक है। मौसम का अपना वक्त है आने जाने का, मौसम का अपना वक्त है आने जाने का, धरती का क्या है, धरती का क्या है, वो तो बिछी है उसके इंतजार में, उसके बस का कुछ नहीं, न धूप न कोहरा न बारिश, मौसम के हवाले हो गई है धरती पूरी की पूरी। शीर्षक है कविता का किनारे की मिट्टी। देख आते ही दूर से पानी के व्यग्र आवेग को, अपनी ओर सरक आती है थोड़ा और ज्यादा। देख आते ही दूर से पानी के व्यग्र आवेग को, अपनी ओर सरक आती है थोड़ा और ज्यादा। किनारे की मिट्टी है वह, बहाव से बचना उसे भली भांति आता है। एक छोटी सी कविता है नदी की प्यास। नदी ने किनारे की पीठ पर लिखी है अपने हिस्से की थोड़ी सी प्यास। नदी ने किनारे की पीठ पर लिखी है अपने हिस्से की थोड़ी सी प्यास। अगली बार मिलो तुम जब किसी नदी से, तो उसे पढ़ना जरूर। कविता का शीर्षक है हंसी के पंख। एक चिड़िया जिसके पास पंख हैं हंसी के, एक चिड़िया जिसके पास पंख हैं हंसी के, बैठी है एक डाल पर, खुली खिड़कियां जिसका स्वागत करने को हैं आतुर। चिड़िया अपनी चोंच में दबाए है जाने कितनी अच्छी अच्छी प्यारी बातें, जो नहीं मिलेंगी तुम्हें किसी किताब में। कविता का शीर्षक है उसकी आँखें। उसकी आँखें एक सघन जंगल हैं, उसकी आँखें एक सघन जंगल हैं। घर से निकलते ही सूर्य की किरणें पूछती हैं सबसे पहले जिसका पता। उसकी आँखें समुद्र का गहरा नीला पानी हैं, जिसमें तैरती असंख्य रंगीन मछलियाँ गूंथती हैं मोतियों की माला। उसकी आँखें कभी न खाली होने वाली नदी का मीठा पानी है, जिसकी कोरों पर रहकर ठहरे हर दुख ने बुझाई अपनी प्यास। उसकी आँखों के पास कई इंद्रधनुषी रंग हैं, जो ठहर जाएं जिस किसी दृश्य पर, वह दृश्य फिर देर तक रहता है हरा। अगली कविता का शीर्षक कैनवस। उसके बनाए कुछ चित्रों के चेहरे कैनवस से बाहर निकल गए हैं। उसके बनाए कुछ चित्रों के चेहरे कैनवस के बाहर निकल गए हैं, और उसी रास्ते बह गए हैं उनमें जमावट से भरे रंग भी। रंग जो एकाकार हो गए हैं अपना मूल स्वरूप खोकर, चित्रों के चेहरे भी बदरंग, लेकिन अपने कैनवस की बेतरतीबी से ना ही वो निराश है और ना हताश, क्योंकि वह जीवन को एक बहुत बड़े कैनवस पर देखती है। कविता का शीर्षक अतीत की झांक। कभी उसका भी एक सुंदर अतीत हुआ करता था, जिसमें झांक झांक कर देखा करती है वह अपना चेहरा। अतीत की झांक से केवल उसका मन ही नहीं झुलसा है, झुलसी है उसकी आत्मा भी। आत्मा से उठती हूक फिर भी जाने किसे पुकारती है।

अभी आप सुन रहे थे शब्द सागर में काव्य पाठ डॉक्टर चित्रा सिंह से। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

जब तक है जहाँ इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी राघव माथुर, शिल्पा राव की, गीतकार थे गुलजार, संगीत था ए आर रहमान का।

इसके साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है संग्रहालय से इस कार्यक्रम में जंग लगी तलवार, इस धारावाहिक की चौथी कड़ी।

सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, नारायणी को प्रसव का दर्द शुरू होता है। वो एक लड़के को जन्म देती है जो

पैदा होते ही मर जाता है। नारायणी भगवान की इच्छा को अपने पाप के बोझ से मुक्त मिलने की बात सोचकर इस दुख को सहन कर लेती है। शिबू यशवंत के यूनियन में प्रतिनिधि बनने की खुशी में भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन करवाता है। ब्राह्मण पंडित दलितों की पूजा करवाने से इनकार कर देता है तो यशवंत स्वयं पंडित की भूमिका निभाता है। चारेंगखेरा से ठाकुर साहब का साई नदी पर तबादला हो जाता है। रामू बामू नामक दो जुड़वा भाइयों के चेहरे ठाकुर साहब को देखते ही खिल जाते हैं। विजिलेंस ब्रांच का एसपी ठाकुर साहब से मिलता है और सीमेंट घोटाले के मामले में सन 1974 की फाइल मांगता है। फाइल लेकर एसपी चला जाता है। यूनियन की बैठक होती है। बलबीर स्वामी मजदूरों की मांगे मनवाने के लिए हड़ताल को अंतिम अस्त्र बताता है। उधर नारायणी एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। शिबू बहुत खुश होता है और सभी को ये खुशखबरी सुनाने जाता है। अब

0: जगन्नाथ।
1: अरे बेटा जगन्नाथ।
2: क्या है बापू?
0: बेटा एक गिलास पानी तो पिला।
2: अभी लाया बापू।
0: बेचारा जगन्नाथ, अरे अभी 10 बरस का ही तो है, पढ़ने लिखने का कितना शौक है इसे। मैं खुद तो पढ़ लिख नहीं सका, लेकिन लेकिन जगन्नाथ को पढ़ा लिखा कर बड़ा बाबू बनाने की बड़ी तमन्ना है मेरी। लेकिन कहां से पेट भरने लायक भी तो नहीं कमा पाता हूं, फिर भला इसे स्कूल कैसे भेज सकता हूं। हाँ, कैसे भेज सकता हूं। और वो जगन्नाथ की मां बेचारी ने 2 बरस पहले बीमारी और भूख के कारण दम तोड़ दिया। अरे मजबूरन साई नदी में बहा देना पड़ा। तब तब बेचारे नन्हे जगन्नाथ ने अपनी मां की लाश की कैसी दुर्दशा देखी थी, कैसी।

0: अरे शंभू, तू यहाँ क्या कर रहा है?
1: जगन्नाथ, चल नदी में नहाते हैं।
0: नहीं, मेरा बापू कहता है कि नदी में नहाने से मैं डूब जाऊंगा। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगा।
1: गहरे पानी में जाएगा तब डूबेगा ना। देख, उस तरफ गहरा पानी नहीं है, वहाँ हम नहीं डूबेंगे, चल ना।
0: नहीं, अगर मेरे बापू को पता चल गया तो वो मुझे बहुत मारेगा।
1: तेरे बापू को कौन बताएगा, तू खुद?
0: नहीं नहीं, भला मैं क्यों बताऊंगा?
1: तो मैं भी नहीं बताऊंगा, फिर भला कैसे पता चलेगा तेरे बापू को?
0: इसका मतलब बापू को पता ही नहीं चलेगा कि मैं नदी में नहाया था।
1: यही तो।
0: चल चल, बहुत मजा आएगा। चल चल चल, चल, चल।

0: अरे बाप रे, इतनी सारी चील, इतने सारे गिद्ध,
1: हाँ
0: कैसी डरावनी आवाज निकाल रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
1: डर तो मुझे भी लग रहा है। मेरा बाबा कहता है कि चील और गिद्ध वहीं आते हैं जहाँ कोई लाश होती है।
0: अच्छा, तो क्या यहाँ भी कोई लाश पड़ी होगी?
1: शायद।
0: चल शंभू, घर वापस चलते हैं।
1: तू डरता क्यों है? गिद्ध लाश को नोचते हैं, जिंदा लोगों को नहीं। अरे उधर देख जगन्नाथ।
0: हाँ, किधर?
1: उधर
0: क्या है? उधर
1: वो नदी के किनारे किसी की लाश पड़ी है।
0: हाँ, हाँ। लगती तो लाश ही है, किसकी होगी शंभू?
1: क्या पता, चल चल पास चलकर देखते हैं।
0: अच्छा, चल चल चल, चल, चल।

0: शंभू, शायद ये किसी औरत की लाश है।
1: लाश, उसने धोती पहन रखी है।
0: हाँ, चल थोड़ा और पास चलकर देखते हैं।
1: नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा।
0: चलना,
1: मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा।
0: चलना शंभू।
1: नहीं मैं, अरे जगन्नाथ।
0: हाँ?
1: ये तो तेरी माँ की लाश है।
0: ये तो सचमुच मेरी माँ की लाश है।
1: जगन्नाथ, तू कहाँ जा रहा है?
0: किस तरह नोच नोच कर खा रहे हैं।
1: जगन्नाथ,

0: बापू पानी।
1: हाँ, हाँ,
0: हाँ, ये लो बापू।
1: जगन्नाथ। हाँ, हाँ बेटा, हाँ मेरे पास बैठ।
0: अच्छा बापू।
1: जगन्नाथ
0: बापू। बापू
2: क्या नींद में हो शिवू भैया?
3: अरे लिचू भैया आओ आओ आओ बैठो बैठो बैठो।
2: लगता है सो रहे थे।
3: अरे नहीं लिचू भैया, सो तो मुन्ना रहा है। अपनी आंखों में नींद कहाँ। हाँ वैसे एक बात है, भगवान ने हमें धन भले ही ना दिया हो मगर नींद खूब दी है। अरे इतनी नींद दी है कि बस हम तो छक गए, अरे नींद से ऊब गए हैं हम तो।
2: मतलब शिवू भैया कि खटिया भी हमसे पनाह मांग गई है।
3: लिचू भैया और सुनाओ। लिचू भैया क्या कोई नई खबर है?
2: अरे खबर क्या है शिवू, हड़ताल होगी हड़ताल, यानी महाभारत होगा।
3: अच्छा?
2: अरे फिर पिसेंगे हम गरीब। कौन है हम गरीबों की सुध लेने वाला? कोई नहीं कोई नहीं, सब अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं।
3: हाँ लिचू भैया, ये सब तो दादा परदादा के समय से चला ही आ रहा है।
2: हाँ भैया,
3: पहले खेतों में मजदूरी करते थे, अब कंपनी में काम करते हैं। पहले साहूकार खून चूसते थे, अब कंपनी वाले चूसते हैं। लिचू भैया हमारे लिए तो वो मरे हुए जानवरों का धंधा ही अच्छा था।
2: अजी काहे का अच्छा था, पहले तो मरे हुए जानवरों की खाल उधेड़ो, हड्डियां इकट्ठी करो, फिर जिस गांव में जाकर बैठो वहीं लात और घूंसे मिलते थे। अरे गालियों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। दूसरे गांव जाओ तो वहां भी यही कहानी। अरे हर गांव की एक सी कहानी है शिवू, एक सी।
3: हाँ लिचू ठीक कहता है तू। ऐसे लिचू एक बात सोची है तूने कभी?
2: मैं तो रोज ही बहुत सी बातें सोचता हूँ शिव, मगर तू किस बात की बात कर रहा है?
3: अरे लिचू मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई हमारी जिंदगी की सच्ची सच्ची कहानी लिखे तो क्या हो?
2: तू भी कैसी अजीब बात सोचता है शिव। अरे क्या हम कोई राजा महाराजा हैं, बड़ी कंपनी के मालिक हैं, कोई जागीरदार हैं या जमींदार हैं जो कोई हमारी जिंदगी पर कहानी लिखेगा? अरे किसे है हमसे हमदर्दी शिबू, किसे है?
3: क्यों, क्या फिल्मों में गरीब लोगों की कहानी नहीं दिखाते? अरे सच बात तो यह है लिचू कि फिल्मों में जितना दिखाते हैं ना, हमारी जिंदगी की सच्ची

0: ये कहानी उसे कहीं ज्यादा दर्दनाक है।
1: हाँ तो ठीक कहता है शिवू,
2: जितना दर्द हमारी जिंदगी में है, अरे उतना तो रोज पीटे जाने वाले जानवरों की जिंदगी में भी नहीं होता।
0: लिचू, कभी सोचा है तूने ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है?
2: बहुत सोचा है शिबू, एक बार नहीं हजार बार सोचा है।
0: तो कुछ समझ में आया, क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है हमारे
2: साथ? हाँ, आया, और इसके तीन कारण हैं।
0: तीन कारण? हाँ। कौन कौन से तीन कारण
2: शिबू? पहला कारण तो ये है कि हमारे देश में मजदूरों की भरमार है। अरे एक मजदूर को हटाओ तो उसकी जगह लेने के लिए 10 मजदूर तैयार खड़े हैं। अब देखो ना, हम मजदूरों के संतान अधिक होती है जबकि साहब लोगों के घरों में कम। अरे उनकी मांग है और हमारी दुत्कार।
0: हाँ लेचू भैया, ये बात तो सच है। और दूसरा कारण?
2: और दूसरा हम मजदूरों का अनपढ़ होना। अरे हम मजदूरों का अनपढ़ होना, पढ़े लिखे को सब पूछते हैं शिबू, जबकि अनपढ़ों को दुत्कार दिया जाता है उनकी अपनी किस्मत पर रोने के लिए।
0: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब देखो ना, इस दलित लाइन में यशवंत अकेला पढ़ा लिखा है, तभी तो वो यूनियन का नेता बन गया, जबकि हम और तुम यहां बैठे इधर उधर की बातें मनाकर समय काट रहे हैं। ये बात तो है ही। वैसे लीचू, तीसरा कारण क्या है?
2: अरे तीसरी बात तो ये है शिबू कि हमारे अंदर ऊपर उठने की आत्मशक्ति ही नहीं है। हा? अरे हमें खुद पर ही विश्वास नहीं है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कुछ नहीं।
0: अरे वाह, अरे लीचू तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी बन गया। अरे
2: अरे नहीं,
0: कमाल है, तेरी बातें किसी पढ़े लिखे विद्वान से कम थोड़ी हैं।
2: अरे अब इन बातों को छोड़ो भैया, मुझे तो मजदूरों के ऊपर संकट के बादल घिरते नजर आ रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है शिवू जब यहाँ पर चारों ओर लाशें ही लाशें होंगी और आसमान में चील और गिद्ध उड़ेंगे।
0: चील और गिद्ध? चील और गिद्ध? क्या कह रहे हो लीचू भैया?

0: अरे कमाल है, ये रामू बामू अभी तक नहीं आए, जाने कहाँ रह गए?
1: हम हाजिर हैं ठाकुर साहब।
0: अरे कहाँ थे तुम दोनों?
2: आपके सेवक आपकी सेवा में हाजिर है सरकार।
3: हाँ सरकार, हुक्म करे।
0: अब दरवाजे पर खड़े रहने का ही इरादा है या अंदर ना आने की कसम खाई है?
2: चल बाबू, ठाकुर साहब अपने पास बुला रहे हैं।
3: अरे हाँ, चल रामू।
2: सरकार,
0: और बताओ नई खबर क्या है?
3: ठाकुर साहब, आपके आदेश का पालन करते हुए हम दोनों ने यूनियन की सभाओं में जाना शुरू कर दिया है।
0: ये तो बहुत अच्छा किया।
2: सरकार,
0: अंदर का समाचार क्या है?
2: हुजूर, यूनियन हड़ताल पर आमादा है।
3: हाँ,
0: अच्छा।
3: ठाकुर साहब, आपके पैर दबा दूं?
0: चल दबा दे।
2: हुजूर, रेडियो तो बंद कर दीजिए, इसकी कान फोड़ू आवाज आपकी मधुर आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचने दे रही सरकार।
0: तुम दोनों बहुत अच्छे हो।
2: मेहरबानी सरकार,
0: मैं अभी बंद करता हूँ।
3: धन्यवाद ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, एक बात कहूँ, आपके पैर दबाने में, आपकी सेवा करने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। देखो ना, कितना बलिष्ठ शरीर है आपका।
0: पुराना देसी घी खाया है रामू? जरा बाहर तो देख, आसपास कोई छिपा तो नहीं है?
2: अभी देखता हूँ सरकार, अगर कोई होगा तो हड्डी पसली तोड़कर सीधे अस्पताल पहुंचाऊंगा सरकार।
3: देखने गया हुजूर, अभी आके बताता है।
2: कोई नहीं है सरकार, कोई नहीं है। करा कौन हिम्मत करेगा, आपका रुआ भी काफी है सरकार।
3: सरकार।
0: सुना है यूनियन की कोई गुप्त सभा होने वाली है?
3: हाँ सरकार, हड़ताल की तारीख तय करने और नोटिस जारी करने के लिए गांव के चौधरी के खेत में सभा होने जा रही है सरकार। लेकिन सरकार, ये बात आपको कैसे पता चली?
2: हाँ सरकार,
0: तू मुझे नहीं जानता, मैं बहुत पहुंची हुई चीज हूँ।
3: सरकार, हाँ मेरे सरकार, इस बात को हमसे बेहतर और कौन जान सकता है?
2: क्यों बाबू, ठीक कह रहा भाई तू। हुजूर,
0: मानता हूँ कि चापलूसी की प्रतियोगिता हो तो सोने का तमगा तुम दोनों को ही मिलेगा।
2: अरे अरे सरकार की बातें।
0: तुम दोनों को अपना काम पता है ना?
2: पता है सरकार। बिल्कुल, हम दोनों यूनियन की गुप्त सभा में जाएंगे।
3: हाँ, और वहाँ की तमाम गोपनीय खबर आप तक पहुंचाएंगे।
0: शाबाश
3: सरकार। सरकार, एक पैग और बनाऊं?
0: नहीं नहीं, मुझे नशा होने लगा है। तुम्हें पीनी हो तो अपने लिए बना लो।
2: तो सरकार, हम ये बोतल लिए जाते हैं, थोड़ी देर साई के तट पर बैठेंगे, वही इसके साथ अपना मनोरंजन कर लेंगे सरकार।
0: बहुत बड़े उस्ताद हो तुम दोनों।
3: अरे हम क्या है सरकार, ना तो हम पित्ती है ना पित्ती का शोरबा, अगर कुछ है भी तो आपकी शराफत का एक जर्रा भर है।
2: बहुत छोटा सा जर्रा सरकार।
0: भाई मैं तुम दोनों को इसलिए पसंद करता हूँ कि तुम सामने वाले को खुश कर देते हो।
2: सरकार,
0: तुम जैसे लोग बहुत जल्दी तरक्की करते हो।
3: तो ठाकुर साहब, बोतल ले जाए।
0: आ जा जा जा, ले जाओ।
2: अरे सरकार जिंदाबाद, बहुत बहुत।

0: अरे क्या बात है शिबू, इतना खांस क्यों रहा है?
1: अरे यशवंत नेता जी,
0: मुझे नेता कहकर हमारे इंसानी रिश्ते को ना तोड़ शिबू। अरे हम दोनों तो धर्म भाई हैं।
1: अरे यशवंत जी आप पढ़े लिखे।
0: ना ना ना शिबू ना, अभी बिल्कुल ना बोल। देख शायद तेरी तबीयत ज्यादा खराब है, कहे तो डॉक्टर या वैद्य के पास ले चल। अरे
1: यशवंत बाबू,
0: हाँ
1: मेरी बात अधूरी रह गई। मैं कह रहा था कि आप पढ़े लिखे हैं और मजदूर यूनियन में आप पहले दलित प्रतिनिधि हैं।
0: हाँ
1: हम दलित मजदूरों को आपसे अपने उद्धार की बड़ी आस है। यशवंत बाबू,
0: हाँ शिबू,
1: जिस तरह अंबेडकर भगवान ने देश के दलितों की अगुवाई कर शोषण की दलदल से उबारा था,
0: शिबू
1: उसी तरह आप भी साइंस साइट पर काम करने वाले दलित मजदूरों के उद्धार के लिए लड़ रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं, एक देशभक्त नेता का यही सच्चा गुण होता है।
0: शिबू
1: तो फिर मैं आपको नेताजी ना कहूं तो और क्या कहूं यशवंत बाबू?
0: अरे शिबू, थोड़े शब्दों में तूने मेरी प्रशंसा के पुल बांध दिए। मुझे भगवान बनाने की कोशिश ना कर शिबू। इस कलयुग में इंसान को भगवान के दर्शन नहीं होते। देख मुझे इंसानों से, अपने से अलग ना कर, मुझे अपने बराबर रहने दे मेरे भाई।
1: यशवंत बाबू, आपकी बातें, आपके विचार सरल और सच्ची इंसानियत की मिसाल हैं। आप जैसे इंसान पर किसी भी समाज को गर्व हो सकता है, खासकर दबे कुचले और उपेक्षित समाज को। दलित मजदूरों में आपका सम्मान बहुत बढ़ गया है।
0: अरे शिबू, मुझे सम्मान नहीं, तुम लोगों का सहयोग और प्यार चाहिए। देख हड़ताल की ये जो बातें चल रही हैं ना, उस पर मुझे संदेह है।
1: संदेह? कैसा संदेह?
0: हड़ताल की तारीख घोषित होने वाली है, लेकिन

0: अभी तक हड़ताल का हमें मकसद नहीं मालूम है।
1: यशवंत बाबू, उस दिन बलबीर स्वामी ने कहा तो था हम मजदूरों को परमानेंट करवाने के लिए हड़ताल होगी, लेकिन कभी किसी की छटनी नहीं होगी।
0: अरे शिबू, इस तरह पहले भी कई हड़तालें हो चुकी हैं। हर बार या तो यूनियन के नेता बिक जाते हैं या फिर धन के अभाव में हड़ताल दम तोड़ देती है।
1: अरे यशवंत बाबू, आपने सुना नहीं था क्या, मजदूरों से चंदा लिया जाएगा, जरूरत पड़ने पर मजदूर यूनियन के मुख्यालय से भी मदद ली जाएगी।
0: मजदूरों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई का चंदा तो मिल जाएगा यूनियन को शिबू, मगर इसी चंदे से बने यूनियन फंड से कोई मदद मिलेगी इसकी संभावना मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आती।
1: तो क्या यूनियन

0: दावे में आए बिना भला मजदूर अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई का चंदा देंगे? और अगर चंदा नहीं आएगा तो यूनियन के नेता गुलछर्रे कैसे उड़ाएंगे शिबू?
1: हड़ताल के पीछे यूनियन नेताओं के मौज मस्ती का षड्यंत्र।
0: हाँ शिबू हाँ।
1: यशवंत बाबू, हाँ। आपको इसके खिलाफ मजदूरों को सचेत करना चाहिए।
0: अरे कोई फायदा नहीं होगा शिबू, कोई फायदा नहीं होगा। मेरे पास इतने साधन नहीं हैं जितने यूनियन के नेताओं के पास हैं, और मोर्चा हमेशा साधनों से जीता जाता है शिबू।
1: ठीक कहते हैं आप, मोर्चा हमेशा साधनों से जीता जाता है, तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना होगा?
0: अरे फिलहाल हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है।
1: यशवंत बाबू, थोड़े ही दिनों में मैं आपका स्वभाव अच्छी तरह से पहचान गया हूं।
0: अब
1: मैं जानता हूं इस षड्यंत्र के खिलाफ आवाज उठाने वाले आप पहले आदमी होंगे, और आपके हाथ में होगी तलवार, वो तलवार जिस पर लाचारी की जंग नहीं लगी होगी, बल्कि
0: शिवू
1: बल्कि विद्रोह की चमक होगी, चमक।
0: देख शिवू, भविष्य के गर्भ में क्या है इस विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।
1: ठीक कहते हैं आप, ठीक कहते हैं आप।
0: अरे शिबू, ये क्या शिबू, बलगम के साथ खून? क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है?
1: 5-7 बार हो चुका है।
0: अरे और तूने इस बात पर गौर नहीं किया?
1: अरे यशवंत बाबू, इसमें गौर करने वाली बात ही क्या है?
0: अनपढ़ समाज में स्वास्थ्य जागरूकता का अभाव है, गंदगी में रहने के लिए विवश होने के कारण भी अनपढ़ गवार मजदूर अनजाने में खतरनाक बीमारियों को पालने लगता है। अरे शिबू, तुझे टीबी की बीमारी हो सकती है, टीबी की।
1: टीबी?
0: हाँ टीबी। देख जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर को दिखा, नहीं तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा तू। शिबू।
1: अरे यशवंत बाबू, ये तो खुशी की बात है। हे भगवान, तेरा धन्यवाद।
0: शिबू,
1: जाति शोषण और अपमान भरी जिंदगी से मैं आप लोगों से पहले मुक्त हो जाऊंगा। क्यों? हो रही है ना आपको भी मेरे भाग्य से ईर्ष्या?
0: शिबू देख, तू पागलपन की बात ना कर, मेरी मान तो अभी जा डॉक्टर के पास। देख अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो मुझसे ले ले। अब यह ठहर, मैं तेरे साथ चलता हूं डॉक्टर के पास।
1: कोई जरूरत नहीं।
0: अरे अपने आप को संभाल शिबू, चल मेरे साथ। आ।

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक जंग लगी तलवार की चौथी कड़ी, डीटीएच के ऑडियो चैनल पर। यह आकाशवाणी भोपाल है। कुछ ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और इस महीने की 21 तारीख को फिर से होने वाली नीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आज मंत्रालय में हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश के बुनियादी ढांचे, तकनीकी विकास और किसान कल्याण से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 13,800 करोड़ रुपये की स्वीकृति के साथ कई बड़े एवं महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती आबा ने जंगल, जल और जमीन की रक्षा के लिए विदेशी शासन के खिलाफ अदम्य साहस से संघर्ष किया और जनजातीय समाज के आत्मसम्मान व अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की है। श्री गुटेरेस ने सभी हितधारकों से हमले रोकने और संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने सभी पक्षों से लेबनान, ईरान और गाजा में हुए युद्ध विराम का पालन करने का आह्वान भी किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित रक्षा भूमि पर पहली बड़ी पैमाने की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से शुरू हो गया है। इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात समेत कुल 21 देशों के कृषि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी तथा विशेषज्ञ पहुंचे हैं। और प्रदेश की शौर्य दल की टीम आज देश की सबसे बड़ी महिला सामाजिक नेटवर्क बन चुकी

दोस्तों नमस्कार। शाम के पास बज चुके हैं। श्वेत बादल और डूबता आफताब अपनी खूबसूरती चारों ओर बिखेर चुके हैं और अब बस किसी बात की कमी है तो वो है सुरीले गानों की और मीठी बातों की। और आपकी इसी कमी को पूरा करने हम आ गए हैं लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त पहल टेवरे और हर बार की तरह मैं फिर से लेकर आ गया हूं आप सभी को सुनाने बहुत सारे गाने और बहुत सारी बातें। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आज की इस खूबसूरत शाम को थोड़ा सलाम नमस्ते तो कह ही देना चाहिए। तो आइए इसी बात पर सुनते हैं आज का हमारा पहला गीत। ये

दोस्तों, अभी हमने सुना गीत सलाम नमस्ते, जो था फिल्म सलाम नमस्ते से, जिसमें स्वर दिए हैं कुणाल गांजेवाला और वसुंधरा दास ने। दोस्तों, जरा रुकें, बस एक पल के लिए। अभी जो भी आप कर रहे हैं वो सब छोड़कर खिड़की से बाहर देखें। क्या पता उनमें से किसी एक को खून की जरूरत हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रक्तदान की। क्या आप जानते हैं कि इस देश में हर साल लोगों को लगभग 1 करोड़ यूनिट की जरूरत पड़ती है? 1 करोड़! और इसमें से भी बहुत बड़ा हिस्सा पूरा नहीं हो पाता। तो आइए इसलिए जानते हैं, बात करते हैं कि आखिर रक्तदान में होता क्या है। जब भी आप किसी को खून देते हैं तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को रक्तदान कहते हैं। जब आप वहां जाते हैं तो वहां पहले एक छोटी सी जांच होती है, बीपी यानी ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, थोड़ी सी बेसिक बातें भी पूछते हैं, जैसे कि आपने खाना खाया या नहीं, रात को ठीक से सोया या नहीं। फिर क्या, 15 से 20 मिनट में एक यूनिट खून एक साफ अपैरेटस से लिया जाता है। उसके बाद आपको आराम कराकर आपके घर भेज देते हैं। इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में कोई दर्द नहीं होता, कोई कमजोरी ऐसी नहीं होती जो 1 या 2 घंटे से ज्यादा रहे, और कोई खतरा तो बिल्कुल ही नहीं है। तो अब बात करते हैं उस एक यूनिट खून की जो आपने दिया है। वो लैब में जाता है, वहां उसके 3 हिस्से किए जाते हैं। पहला हिस्सा लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल, जो हादसे में घायल इंसानों को, ऑपरेशन से जूझ रहे मरीजों को चाहिए होता है। दूसरा हिस्सा प्लेटलेट्स, जो कैंसर के मरीजों को, डेंगू से लड़ते बच्चों को चाहिए होता है। और तीसरा हिस्सा होता है प्लाज्मा, जो जलने वालों को, गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को चाहिए होता है। यानी एक बार दिया खून 3 अलग अलग लोगों की जिंदगियां बचाता है। एक बूंद, 3 रास्ते और 3 घरों में जिंदगी का बचाव। और एक बात जो शायद आपको नहीं पता हो वो ये है कि रक्तदान का कोई और विकल्प नहीं है। दुनिया के सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत ही होशियार वैज्ञानिक, सबसे महंगी लैब, कोई नहीं बना सकता इंसानी खून। तो ये जो हमारे शरीर में है ना, ये दुनिया की सबसे कीमती चीज है जो दुकानों पर नहीं मिलती। अब उन लोगों की बात करते हैं जो ये कहते हैं, ये सोचते हैं कि मैं कमजोर हो जाऊंगा। अरे भाई, आप ये ध्यान रखें कि हमारे शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर खून होता है। एक बार में ली जाती है आपसे केवल 350 से 450 मिलीलीटर की डोनेशन, यानी कुल खून का 10% से भी कम, और वो भी 24 से 48 घंटों में वापस बन जाता है। हमारा शरीर समझदार है, उसे पता है कि कमी हुई है, तो वो उस कमी को खुद पूरी कर लेता है। और एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं कि ये ब्लड डोनेट करने वाले जो होते हैं, ये खुद भी बहुत फायदे में होते हैं। जब पुराना खून निकलता है तो शरीर में नया खून बनता है, ताजा, एक्टिव। दिल को कम मेहनत करनी पड़ती है। शोध कहते हैं कि जो लोग नियमित रक्तदान करते हैं उनमें दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। साथ में हर बार डोनेशन से पहले फ्री जांच होती है, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, हेपेटाइटिस, एचआईवी सब चेक होता है। यानी साल में 3-4 बार मुफ्त हेल्थ चेकअप। तो खून देने के फायदे बहुत हैं। अब जरा सोचें, जब इस देश में कोई भी मुश्किल होती है तो हम सब कैसे एक हो जाते हैं। बाढ़ आए या भूकंप, लोग दौड़ते हैं मदद के लिए, पर रक्त

की कमी, ये कोई एक दिन की आपदा नहीं है, ये हर रोज की जरूरत है। हर रोज जब अस्पताल खुलते हैं तो वहां खून चाहिए होता है। थैलीसीमिया से लड़ते बच्चों को खून चाहिए होता है, सड़क हादसों में घायल लोगों को खून चाहिए होता है, बच्चों को जन्म देती माओ को खून चाहिए होता है, कैंसर से लड़ते बुजुर्गों को खून चाहिए होता है। ये मांग रुकती नहीं, इसलिए खून देना जरूरी है। शर्त सिर्फ तीन, उम्र 18 से 65 साल के बीच हो, वजन 45 किलो से ज्यादा हो और उस दिन तबीयत ठीक हो, बस। कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं, हर 3 महीने में एक बार दे सकते हैं आप खून, यानी साल में 4 बार, और साल में 4 बार मतलब 12 लोगों की जिंदगी। 12 अगर गिना जाए तो 10 साल में 120 जाने बचा सकते हैं आप। तो आज बस एक कदम उठाते हैं, अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल का ब्लड बैंक नंबर जानते हैं, अपने शहर में कब शिविर लग रहा है वो पता करते हैं, और जो दोस्त, जो भाई, जो पड़ोसी अभी तक नहीं गए हैं उन्हें इसकी खासियत बताते हैं। इसी बात पर चलते हैं, सुनते हैं हमारा अगला गीत, ये

दोस्तों, अभी हमने सुना गीत खून चला, फिल्म रंग दे बसंती से, बोल हैं प्रसून जोशी के। दोस्तों अभी उठें, नहीं अभी उठें, खिड़की खोलें और एक गहरी सांस लें। अब बताएं, वहां हवा कैसी थी, ताजी या उसमें कुछ था, धुआं, धूल या एक भारीपन जो गले में अटक गया हो। अगर आप देश के किसी भी बड़े शहर में हैं तो वो शायद उतना साफ नहीं जितना होना चाहिए, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है वो गाड़ियां जो हर रोज सड़कों पर दौड़ती हैं, हवा में घोलती हैं जहर, धीरे धीरे चुपचाप हर रोज। भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से एक है। हमारे कई शहर जैसे दिल्ली, कानपुर, वाराणसी दुनिया की सबसे जहरीली हवा वाले शहरों की लिस्ट में आते हैं। अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी, दिल की तकलीफ, ये सब उस हवा का हिसाब है जो हम रोज ले रहे हैं। और इस प्रदूषण में गाड़ियों का कंट्रीब्यूशन कहीं 40% तक है, यानी लगभग आधा जहर हमारी अपनी गाड़ियों से आ रहा है। यहीं आता है ई वाहन यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल। बहुत सीधी बात है, पेट्रोल डीजल की जगह बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर और एग्जॉस्ट पाइप से कुछ बाहर नहीं, बिल्कुल भी कुछ बाहर नहीं। गाड़ी चलती है और पीछे छूटती है तो सिर्फ सनसनाती हुई साफ हवा, और जेब भी ढीली नहीं होती। उतनी ही दूर एक ई स्कूटर चलाने में लगता है बस 1.5 से 2 रुपए का खर्चा। 1-1.5 साल की बचत इतनी होती है कि शुरुआती फर्क पूरा हो जाता है। और रखरखाव? अरे इंजन नहीं, तेल नहीं, झंझट आधी। बदलाव दिखने भी लगा है। 2023 में भारत में करीब 15 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकी हैं और ये रफ्तार हर साल बढ़ रही है। कई शहरों में ई बसेस भी दौड़ रही हैं, गांव में सोलर बैटरी से फोन चार्ज हो रहे हैं, ना बिजली का बिल, ना पेट्रोल पंप, बस धूप। और धूप धूप तो हमारे देश में बिल्कुल भी कम नहीं है। तो अगली बार जब भी आप दोपहिया खरीदने जाएं, तो ई स्कूटर पर एक नज़र तो डाल ही दे। जहां बात हो ई बस, ई ऑटो की, वहां इसकी मांग करें और आसपास के लोगों को बताएं, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां एक इंसान कहता है कि हां अब ये जरूरी है। ई वाहन सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये एक चुनाव है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उस हवा के लिए जिससे आने वाली पीढ़ियां सांस लेंगी। हर इलेक्ट्रिक गाड़ी जो सड़क पर आती है वो एक वादा है कि हम थोड़ा और जिम्मेदार हैं, थोड़ा और जागरूक हैं। तो कल की उज्ज्वल भारत के इस धुरंधर को अपनाते हैं और सुनते हैं आज का हमारा अगला गीत, ये

दोस्तों, अभी हमने सुना गीत इश्क जलाकर फिल्म धुरंधर से, जिसे गीत दिया है शाश्वत सचदेव ने। चलिए सुनते हैं एक और गीत फिल्म दिल धड़कने दो से,

दोस्तों, अभी हमने सुना गीत दिल धड़कने दो, जिसे स्वर दिए हैं प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर ने। दोस्तों, आज हमने बात की ब्लड डोनेशन पर। हमने जाना कि रक्तदान जीवन दान से कम नहीं होता। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें और संवेदनशील और ह्यूमन बनाती है। साथ ही हमने जाना ई व्हीकल्स के बारे में, कैसे ई वाहन और उनकी खूबियां हमारे कल के भारत के लिए आज का पहला कदम है। दोस्तों, जाते जाते मैं बस एक बात कहना चाहूंगा, आज हमारे पास अगर कुछ है तो वो सिर्फ आज है। आज ही वो समय है जहां आप अपनी जिंदगी, दूसरों की जिंदगी और आने वाले कल को और बेहतर कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि हम आज की अहमियत जानेंगे और उस पर अमल कदम भी उठाएंगे। इसी के साथ मैं पहल टेवरे आपसे लूंगा इजाजत। ये मेरी उम्मीद रहेगी कि आप अपना ध्यान रखें, अपने आसपास वालों का ध्यान रखें, जानवरों को पानी देते रहें और एक आने वाले कल की उम्मीद बने। इसी के साथ मैं लूंगा इजाजत। धन्यवाद।

आकाशवाणी भोपाल के योगदान के अंतर्गत कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब

या ग्रेटेस्ट आधार पर किया जाएगा। ये सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने के पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in एवं hopair@gmail.com पर अपने प्रस्ताव

0: प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह!
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

शंकर महादेवन और रवि खोटे की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना फिल्म कल हो ना हो से। जावेद अख्तर के लिखे बोल और शंकर एहसान लॉय का संगीत। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। इसी कड़ी में आइए अगला गीत हम सुनते हैं फिल्म हम तुमसे। प्रसून जोशी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने। इस गीत में आप आवाज़ें सुनेंगे सोनू निगम और साधना सरगम की। आइए सुनते हैं।

शान, प्रिया और नीरज की आवाज़ों में ये गीत सुनिए फिल्म मैंने प्यार क्यों किया से, समीर के लिखे बोल और हिमेश रेशमिया का संगीत।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म धन धनाधन गोल से।
1: अरे बिल्लो बोला बिल्लो।

आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा की आवाज़ों में सुना आपने जावेद अख्तर का लिखा यह गीत। संगीत था प्रीतम का। श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, तकनीकी विकास और किसान कल्याण से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 13,800 करोड़ रुपये की स्वीकृति के साथ कई बड़े एवं महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती आबा ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए विदेशी शासन के खिलाफ अदम्य साहस से संघर्ष किया और जनजातीय समाज के आत्मसम्मान व अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा की जा रही है। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन शुरू हो गया है। इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात समेत कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ पहुंचे हैं। और प्रदेश की शौर्य दल की टीम आज देश की सबसे बड़ी महिला सामाजिक नेटवर्क की टीम बन चुकी है। साल 2013 में महज 6 जिलों से शुरू हुई इस मुहिम में अब 22 लाख से ज्यादा महिलाएं और बेटियां जुड़ चुकी हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम

0: सबंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
0: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
0: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
0: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
0: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण के

0: से टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानू यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है।
1: जी हाँ श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान, शांति, अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
0: जी जी जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं?
0: जी जी जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
1: जैसे
0: कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है, इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
1: जी, सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
0: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
1: तो क्या क्या नियम है इसके?
0: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वा यानी हारमोनी या सामंजस्य।
1: और दूसरा शब्द क्या है?
0: दूसरा शब्द है केई
1: जी
0: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
1: और श्रोताओं, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
0: श्रोताओं, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
1: जी हाँ, तो श्रोताओं, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं। ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
0: जी, एक और खास बात यह है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
1: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
0: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हर गोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?

0: लो आ गई बड़ी हवेली, निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ
1: पाए लागू बड़ी बहुरिया।
2: आ गए भैया।
1: हाँ।
2: लो ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
1: हाँ।
0: बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन। बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म हो गया।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: अरे देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
3: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।
3: और हाय,
4: हर गोविंद भाई,
3: हाँ?
4: तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
3: कहाँ बड़ी बहुरिया?
4: मेरी माँ के पास।
3: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
4: माँ से कहना मैं भाभी भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए? किसके लिए?
3: बड़ी बहुरिया।

0: हर कोबिन भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए,
0: अरे
1: हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब,
1: हाँ,
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है। हाँ?

0: थाना बिहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं। बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
4: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
4: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका, जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है, हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
5: हाँ सो तो है। चलो अच्छा है बबुआ, अब थोड़ा जलपान कर लो।
4: अच्छा अच्छा माँ जी।
5: अरे हरगोबिंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
0: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला? ये सोच सोच कर रात भर हरगोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माजी के पास जा पहुंचा।
4: माजी, अब आज्ञा दीजिए।
5: अरे,
4: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माजी, अब पैन लागू।
5: जीते रहो बेटा,
4: अब चलता हूँ।
3: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
4: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
3: अच्छा
4: अच्छा, राम राम।
3: राम राम
4: राम राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो। जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर, लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई, लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पीलो पीलो, शाबाश शाबाश। हाँ शाबाश, अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया, मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई,
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम सारे गांव की माँ हो, तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिंद भाई, तुम
2: मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना?
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
4: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered Viksit Bharat.
5: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम जो हमें लेकर जाएगा मरुभूमि यानी
3: मरुस्थल में या रेगिस्तान में
5: जी,
3: और बताएगा विस्तार से रेगिस्तान के बारे में। तो आइए जानते हैं रेगिस्तान या मरुभूमि के बारे में और सुनते हैं कार्यक्रम द डेजर्ट।
6: दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजंस कवर्ड विद फॉरेस्ट्स एंड सराउंडेड बाय हिल्स may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and, therefore, no vegetation grows. It is dry, hot, waterless, and without shelter. But this is not entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. It is the home of a variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. It may have an oasis, big or small. An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. A desert may be hot like the Thar, or cold like Ladakh. But generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. Some deserts are almost totally without water. In such places, strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as mounds. These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert. Few plants can survive on such dry, shifting sands. All living things need water in order to survive. Camels can do without water for days together. The reason is they sweat very little. We sweat because we must keep our body temperature constant. We sweat when it gets hot, and this cools the body. Camels can stand high body temperature. They don't need to sweat and can, therefore, retain the water they drink for long periods of time. The smaller desert animals do not drink water. They burrow underground during the hot day and come out at night to eat. Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. Others eat plants and seeds and get the water they need from plant juices. Desert plants also adapt themselves to the life they lead. Cactus plants store water in their thick stems. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. The major feature of all deserts is, of course, dryness and variations of temperature. In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. The absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. Deserts are an important part of nature's great plan. They are there like the dense forests and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth.
3: आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के समापन की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम जिसका विषय है पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल, बदलता बुंदेलखंड। विशेषज्ञ हैं राजेश सिरोठिया, राजीव सोनी और वरिष्ठ पत्रकार। वार्ताकार हैं सचिन चौधरी और प्रस्तुति है प्रादेशिक समाचार एकांश की।
9: तो भैया बिन्नाहरो राम राम, और हम हैं सचिन चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो गए हैं। साल 2014 में जब उनने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उस समय देश ने बड़ी उम्मीदों से उनको वोट करे, उनको बहुमत दौर के बाद एनडीए की सरकार के तौर पे उनके 12 साल पूरे हो गए हैं, तीसरा कार्यकाल चल रहा है। देश के मध्य प्रदेश के या बुंदेलखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो विकास के बहुत सारे काम भए और एक नए तरीके के ऐसे ऐसे काम भी भए जिन पे पिछले कई सालों से देश के लोगों को उम्मीदें हती। यही तमाम विषयों पर चर्चा करवे के लाने आज हमारे संगे मध्य प्रदेश के और बुंदेली के दो बड़े पत्रकार राजेश सिरोठिया जी मौजूद हैं, संगे राजीव सोनी जी मौजूद हैं। सो हम उनके संगे विशेष आयोजन पर एक विशेष परिचर्चा करें। राम राम भाई साहब, आप दो ही जन
10: राम राम भैया। राम राम।
9: तो शुरुआत राजेश सिरोठिया जी से करें भाई साहब। मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड या देश के हिसाब से अगर बात करें तो साल 2014 में जब बदलाव आओ, सत्ता में बदलाव आओ, ई के बाद कार्य प्रणाली से लेकर देश प्रदेश और बुंदेलखंड में की प्रकार को बदलाव पिछले 12 साल में आप देखा तो?
10: देखो क्या, अगर आप आपको जो देखने हैं कि 12 साल में मोदी ने क्या करो, तो आपको जो देखना पड़ेगा मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के पहले क्या करो, तो पहले अपने एक संघ के प्रचारक के रूप में पूरे देश भर में उन्होंने दौरा किया। वो दौरा कैसे करो, उन्होंने बसों में, ट्रेनों में, जनरल डिब्बों में भी किया, स्लीपर कोच में भी करी। तो कहा है जनता की नब्ज को वो शुरू से समझता रहे प्रचारक के नाते, वो तब वो वास्तव में मंच पे नहीं आते थे, मंच पे नहीं आते, सिर्फ जनता के बीच में काम करना। आपने बुंदेलखंड में भी खूब घूमे हुए, जब प्रचारक सागर में दीपक होटल में रुकते थे, हैं गोपाल भार्गव
11: जी, अभी 98 तक की बात बता
10: नहीं नहीं, नहीं जब पहले की, पहले की बता रहे होगी। 98 में तो जब उनको 98 के चुनाव के लिए जब प्रभारी बनाओ मध्य प्रदेश को, प्रभारी महासचिव बने 96 में, वो बाद उनको मध्य प्रदेश को प्रभार था वो, तो उन्होंने बहुत कोशिश करी थी। सबसे मैंने भाजपा के दफ्तर का आधुनिकीकरण कर, कोई श्रेय है तो वो मोदी जी को जाऊंगे, क्योंकि उनने आते से ही सबसे पहले कही थी कि हमें कंप्यूटर जाने। अब आप सोचो 96-97 में कंप्यूटर तो कॉमन नहीं है, तो लेकिन पार्टी का काम उन्होंने बिल्कुल करवे के लाने, उन्होंने कहा कंप्यूटर ले आओ।
9: ईमेल को जिक्र तो अबे शिवराज जी ने करे ही है, कोई ने पूछी थी कि ईमेल की के पास है
11: वो किताब में, उन्होंने अपना अपन किताब में
10: 95 की में जो है ईमेल आ गया तो भारत में। लेकिन वो प्रचार प्रसार बढ़ाते बढ़ाते तनक फिर जो 98 तक तो काफी हो गया था वो, तो कुल मिला के मोदी जी ने क्योंकि जमीनी समझ थी ना, उसको फायदा जो है वो 98 के चुनाव में तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब तो भाजपा में बहुत लट्ठा पटक चल रही थी, उठा पटक बहुत भयंकर, तो ये तो 98 में नहीं आ पाए। लेकिन मोदी ये को जब सीधे होते गुजरात को उनको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाओ, तो वो 13 साल में उनने जो विकास को, डेवलपमेंट को जो मॉडल रखो, वह एक बहुत बड़ी गुजरात की, गुजरात में भाजपा के विकास को या गुजरात स्टेट के विकास की एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। तो वो मॉडल उनने अपना दिल्ली में आए तो उन्हें उसको और विस्तार और आकार दो। तो उनकी सोच और समाज और दृष्टि की बात करें तो बहुत व्यापकता मारो है। आज जो ईरान की जंग शुरू हो रही है, एक चक्कर में विदेशी मुद्रा का डॉलर की कीमत, डॉलर महंगा हुआ हो आपके पास, लेकिन मोदी जी ने पहले से विदेशी मुद्रा का भंडार खूब बना कर रखा, तो पूरा ध्यान उनका, साल भर से 1.5 साल से जो है सोना खरीदो जा रहा हो, क्योंकि रिजर्व बैंक में जितना आप सोने है उतने आप मुद्रा भी छाप सका दो आगे चल के। तो बहुत सारी चीज़ें करी। और दूसरी चीज़ ये कि आप दुनिया में वो जो ब्रिक्स के जरिए जो है वो जो अमेरिका की जो डॉलर की डिपेंडेंसी है, डॉलर पे आदमी में निर्भरता है, उसी के कारण डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं। वो निर्भरता को कम करने के प्रयास जो है ब्रिक्स के जरिए कर रहे हैं। 20 ब्रिक्स में 12 देश थे, अब 20 देश हो गए हैं। फिर आप देखो कि हमें विदेशी मुद्रा बचाऊं ना है, तो उन्होंने क्या कि सबसे ज्यादा खर्चा होता था भारत के पास सुरक्षा में, हम सब आयात करते वो में आंखों डॉलर में पेमेंट करना पड़ता हूँ। तो आपने रक्षा के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाए शुरू किए और बहुत काफी कारगर हो गए। वो DRDO जो है, हमने पुणे जाके देखो थे क्या काम काज कर रहे हैं वो लोग, किस स्तर को काम कर रहे हैं। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी ये सब जिस सिंदूर ऑपरेशन में जो आपको देखने मिलो, आज ये ड्रोन जो है वो तो यूक्रेन में और ईरान में जो है काफी वो कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें उनने करी रक्षा के क्षेत्र में। फिर उनने कहा कि टेक्नोलॉजी, दूसरा अमेरिका गर्व करता डॉलर के अलावा अपनी टेक्नोलॉजी पे, तो टेक्नोलॉजी में भारत को खड़ा करने के लिए जो सीडेक है और इसरो है, आकाश अंतरिक्ष विज्ञान के लिए इसरो, इन सब पे जो है पहले ध्यान ही नहीं दिया जाता सरकार, पहले की सरकारों में, लेकिन मोदी ने पूरे फोकस इन पे जड़ा कर रखो कि हम इन चीज़ों में आगे बढ़ेंगे रक्षा। और उल्टो बल की हम दे हैं दूसरे को, तो हमारे पास उल्टा पैसा आएगा, डाला रहा है। तो ये बहुत छोटी छोटी मतलब बहुत गहरी चीज़ें हैं देखा आम आदमी को इतनी समझ नहीं आता, आदमी को उतना क्या दिखाते कि इन्हें नोटबंदी को फैसला कर दो या GST को लेकर विवाद हो। लेकिन मोदी जी की सबसे अच्छी खासियत एक और है कि उनको अगर जावेद जरा भी लगा था कि उनमें कोई गड़बड़ी कर रहे हैं या कुछ गलती हो गई उनसे, तो कुछ सुधार करने में देर नहीं लगा। तो जो कोर्स ऑफ करेक्शन काहू था जो अंग्रेजी में कहें, तो वो कोर्स ऑफ करेक्शन की जो प्रक्रिया जो है उनमें मोदी में कूट कूट के मरी है। आपको याद होगी नोटबंदी के समय जब बवाल मचा, 64 महीना में 64 परिवर्तन करे उनने, जैसे जैसे जनता से फीडबैक, क्योंकि जनता उनकी बहुत से जनता से टच उनका बहुत गहरा है और वो उनका एक प्रचारक के नाते वो तो रहा ही रहा है। अब उनके प्रधानमंत्री के रूप में भी उनने पूरा फीडबैक देश भर से जुटाने के लिए बहुत सारी एजेंसियां कर रखी हैं। एक ही एजेंसी पे भरोसा नहीं है कि केवल खुफिया ब्यूरो इन्फॉर्मेशन दे रही है, बहुत सारे स्रोत हैं और हर देश के हर एक इलाके के हैं। इसलिए देखो आप दक्षिण में भी भारत भाजपा को अंदर घुसड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ की उतर की तो योजनाएं कुछ ऐसी डेवलपमेंट की बहुत अच्छी अच्छी वहाँ चालू करी हैं।

0: ये बंगाल ने जिस दिन उनने 2014 में शपथ ली थी उनने कहा था हरियाणा और बंगाल हमारे दो पहले फोकस है, और उनने कौन को भेजो तो कैलाश विजयवर्गीय को, पहले हरियाणा भेजो फिर तो बंगाल भेजो। तो उनने कहा कि अंग्रेजी अपने मैंने 14 में ही उनने 19 की सोच चालू कर दी,
1: मतलब समय टेम से और बहुत आगे की सोच
0: कि अपनी आप 19 में जहाँ से जितनी ज़्यादा सीटें मिली अपने मिल हैं कहूँ तो कहाँ से मिल सकते, तो 19 स्ट्रिक्ट पर फोकस करो उनने। तो जो कोलकाता से आपने 19 में जो भरपाई करी 19 सीटें आ गई थी, तो वह ऐसे ही आपको भरपाई वही ना कहूँ ना से।
2: अब जहाँ तक
1: जी राजीव भाई, जब जो है अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे राजेश भाई साहब ने बहुत सारी चीज़ बताई, मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें तो मध्य प्रदेश पे बहुत जब से प्रधानमंत्री बने मोदी जी, मतलब जितने भी भाजपा शासित राज्य उनमें समय लगा सबसे ज़्यादा दौरे मध्य प्रदेश में, बहुत दौरे भी भाई उनके अलग अलग जगह, चाहे वो निमाड़ अंचल हो, चाहे बुंदेलखंड अंचल हो, चाहे बिंध हो, चाहे मध्य बुंदेलखंड हो, मालवा हो और उज्जैन को हो या मालवा को, उनको लगातार फोकस मध्य प्रदेश पे भी शुरू मतलब जब से ही है, और मतलब एक अलग प्रेम भी नज़र आओ तो और उनको फोकस भी नज़र आओ तो।
2: नहीं, ये बात सचिन भाई आप सही कह रहे हो, मध्य प्रदेश में उनके जो दौरा भय शुरू में जैसे खंडवा आए थे सबसे पहले वो पावर प्लांट को,
0: सिंगाजी
2: पावर प्लांट को हम, और जो संयोग है कि हमें उनके ज़्यादा मतलब हमारे ख्याल से 70-80% उनके कार्यक्रम हमने अटेंड करे या कवर करे, मतलब ये थे सिंगाजी खंडवा, चाहे वो सीधी में 18 के चुनाव हो, सिंगरौली और ये थे फिर जो अपना उज्जैन के दो दौरे उनके लगातार भय भोपाल के भय, तो मध्य प्रदेश से उनको कनेक्ट तो बहुत गहरो है और मध्य प्रदेश की स्टडी भी उनके लाने बहुत अच्छी है। और योजनाओं की जहाँ तक बात करें या रोजगार की बात करें तो वो मैं अपन को जो राजेश भाई ने बहुत सी चीज़ें गिनाई उनकी, अपन इतने थोड़ा सा विषयांतर या थोड़ा सा मतांतर जो हो सका था कि अबे रोजगार के क्षेत्र में बहुत कछु हुए बाकी है, लेकिन एक बात जरूर है जोन बात से मोदी आज जन जन के नेता बने भए या लोगों के दिल में बैठे हैं, या मोदी का वो एक डायलॉग है जो चला उठे बीजेपी वाले कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, ऐसा कुछ तो वह बात ऐसे है कि वो सनातन को जो इनने झंडा फहराता हुए वो चीज अभी तक अपने देश में अभी तक ने दिखा रही थी, नजर नहीं आ रही थी, वही को एक बहुत बड़ा कारण है कि वो कांग्रेस आजकल हाशिया पे धकेल गई है कि मतलब जब उनको समझ में नहीं आई यह बात कांग्रेस के नेताओं के या कांग्रेस को कि उनने ये सनातन को अनदेखी करवे को नुकसान उनको कितना तो झेलने पड़ सका था। अब यह चीज़ जब अपन के सामने दिख रही है कि आज मध्य प्रदेश में पहले तो 40 सीटें होती जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ी का, तो अब 29 है, तो आज की स्थिति में अपन बात करें 2026 में जब बैठे हैं अपन तो 29 की 29 ही सीटें बीजेपी के पास हैं, वो केवल मतलब केवल मोदी के कारण
1: और तो और कौनों भी प्रदेश में चाहे छोटो प्रदेश हो मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य की अगर बात करें, अगर 100% लोकसभा की सीटें कोनो पार्टी के उनमें हैं तो इको मतलब के जनता के मन में मोदी हैं, उनको मानने तो आए
2: तो है तो सामने दिखा रही है अपन
1: को, वही लोकतंत्र में तो कोई की लोकप्रियता या अलोकप्रियता वोटों से
2: सिद्ध,
1: अगर 100% सीटें अगर मिल रही तो लोकप्रियता तो पर है,
2: लोकप्रियता पूरी है। अब जो है कि बुंदेलखंड की अपन जहाँ तक बात करें तो जैसे केन बेतवा की एक बहुत बड़ी उनने योजना दे दी है बुंदेलखंड के लाने, या और भी जैसे अब हम अपन और जैसे आप ही हो और राजेश भाई हैं, अपन और कबू ने सोची थी कि छतरपुर अपन ट्रेन से जाएं या खजुराहो ट्रेन से जाएं, अब अपन जा रहे कि नहीं जा रहे, तो और भी
1: दिल्ली से खजुराहो वंदे भारत हो गई, पन्ना में ट्रेन पहुंच रही,
2: पन्ना में ट्रेन की वो चल रही है, तो अब सोचो आप तो ये चीजें। अब जैसे हमारी ननियाल है छतरपुर, हमारो जन माता जी की बड़ी इच्छा थी कि कभी छतरपुर ट्रेन से जाएं, अभी जाएं तो उनको गई उनके लाने बड़ा मतलब उनके मन में जो खुशी हुई उनको तो अपन शब्दों में बयान कर वो बड़ा मुश्किल है। तो ये चीजें हैं। अब जहाँ तक बात है कि रोजगार की, ये में तो मोदी जी को तनक सोचने पड़े और करने पड़े जो काम अबे थोड़ा सा
0: आपसे थोड़ा सा अलग राय रखना चाहते हैं। असल में देखो रोजगार की कमी नहीं है, कमी उस आदमी में है, वो सोच रहा है कि हमारे लिए छोटा है हमारे हिसाब से, जो इसे हमें नहीं करना नहीं। हम तो जो है चाहते हैं अब, लेकिन हम डिप्टी कलेक्टर बन गए तो नहीं कर
2: रहे, असंतोष है उनके
0: लाने। या जो प्राइवेट क्षेत्र में जो रोजगार हो रहा है, वो बहुत सारे रोजगार के साधन जो है, आप बुद्ध मोदी जी तो इस विजन के संग चल रहे कि आप खुद दो दूसरों को रोजगार दो, माने आप अपने काम धंधे खोलो, उसको चालू करो, छोटे छोटे एमएसएमई जो
1: एमएसएमई है, स्टार्टअप योजना भी ले आए, प्रयास भाई
0: लेके आए। अब समस्या यही है तनक की कि आदमी को लगा था कि हमें सब, मैंने हर IIT करवे वालों सोचे कि हमें अमेरिका ही में नौकरी करने हैं,
2: तो
0: फिर भैया भारत के संस्थान का खिलाने घुइया छील लिए, घुइया घुइया छील लिए कोई का, भारत सरकार तो पैसा खर्च कर रहा था उन पे। तो अब वो मोदी चाहते हमारा टैलेंट बाहर न जाए, प्रतिभा का पलायन नहीं हो, वो के लाने में बहुत बहुत जगह चीजें कर रहे हैं। और जो जो अब IT सेक्टर में जो सुंदर पिचाई और ये सब गूगल सब NVIDIA सब AI सब आ रहा है, AI पे कितना जोर दे रहे हैं वो। अब आदमी कोई लगा था वो कि AI से जो है अब यही
2: बात है कि नौकरी चली
0: कि नहीं है सर, हमने खूब स्टडी करी होगी कि AI से, तो AI आपके काम को आपकी दक्षता बढ़ाने वाला है। वो जो है चाहे सिविल इंजीनियर हो, उनमें भी AI की ज़रूरत है, आपकी कोर ब्रांचें हैं उनमें भी ज़रूरत है, और आपको कंप्यूटर साइंस और ये में तो है ही है।
2: नहीं, आपके लाने AI हम जहाँ तक देखते हैं कि AI आपके काम में आपके सहयोगी की आपकी मददगार की भूमिका ज़्यादा निभा देती
0: है। जैसे AI की अपनी पत्रकारिता वहीं का बोल देते एक बार कि जो पत्रकारिता के मामले में हमारे एक जगह तक जाके हमारी जानकारी रुक जाती, अंतिम निर्णय तो एडिटर ही है।
1: बिल्कुल,
0: तो बाकी जगह पे भी अंतिम निर्णय जो है वो सिविल इंजीनियर को ही करना पड़ा है, लेकिन वो आपको सजेस्ट कर देगा,
1: बस केवल सजेस्ट कर दे। जैसे अपन कोई भी चीज़ की डिजाइन करो तो वो आपको बता दे कि जो ऐसा हो, जैसे कई बार आप कोई कपड़ा खरीद पे जाओ सो पैर के देख लो कि भैया चार वेरायटी, तो ऐसे AI आपको बता दे कि ई रंग पे जो अच्छा लगे, ई पे जो अच्छा, अब चॉइस तो तुम्हें को
2: करना
0: है। चॉइस तो ये बात मूल में
2: जो हुनर और विवेक वो तो आपके संग है, आपकी एसेट है, तो वो हिसाब से तो आप,
0: लेकिन जा जरूर है कि आपको उतना AI में भी अपने कैसे देखो कहा है, पूरी जिंदगी भर सोच में समझ में की प्रक्रिया रही है। आप पूरी जिंदगी आदमी विद्यार्थी भाव रखे है तो वो दिक्कत नहीं आने।
1: केन बेतवा की भाई जब बात करें, केन बेतवा बुंदेलखंड के लाने एक बहुत अहम योजना है और अटल जी के समय एक सपनों जो देखेगा तो, और चूंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चूंकि कोऑर्डिनेशन से जो होने थी, और ज्यादातर बार ऐसा भाव कहते को की सरकार तो ते को की सरकार।
0: अब देखो तो डिफरेंस करें, क्या आप पूछो कि बुंदेलखंड में एक तरह से काम हुई है
1: जी,
0: काम मिले लोगों को बहुत ठीक है
1: जी,
0: लेकिन बांध बनवे से मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के लोगों को उतना फायदा नहीं होता
1: जी,
0: क्या कि जो वो तो जहाँ डाउन स्ट्रीम रहते बांध की वो तो ज्यादा नेरे पहुंचती हैं
1: जी,
0: इधर नहीं हो तो उतना तो नहीं
2: इधर से उतना बह के जा रहा
0: है, डूब डूब
2: डूब क्षेत्र अपना
0: जा रहा है। आज से बुंदेलखंड जो है जिनको मतलब मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं कि मध्य प्रदेश नदियों को मायका है
1: जी, जी।
0: हम भी कहते हैं कि बुंदेलखंड जो है मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का मायका है
1: जी, जी।
0: तो बनो बुंदेलखंड सूखो रह जाते हैं
1: जी,
0: तो आपको कम से कम जैसे कि अभी जो बीना दसान मालो परियोजना है
1: जी,
0: ये पूरा फायदा बुंदेलखंड को ही मिले है
1: जी,
0: तो जाओ धीरे चल रहा हो काम। हमने मुख्यमंत्री को भी कही थी बार तो वही हमें लिख के दे दू जो तो, लेकिन अपन के बगल में बैठे थे अफसर उनसे नहीं बोल सके कि भैया कराओ इसको ट्रैप पार्टी पे। तो ये बुंदेलखंड में सबसे बड़ा समस्या ये है कि बुंदेलखंड से नदियाँ निकलती, बुंदेलखंड जो है सूखा रहता है।
2: अबे राइस भाई, पाँच तारीख को पर्यावरण दिवस है, तो 5 जून को रहते, आज अपन 9 जून को बात कर रहे हैं, 4 दिन पहले हमने नदियों पर हमने पिछले साल भी छापो तो कि बेतवा उतर उद्गम पे ही सूखी है, उतर धूल उड़ रही, धूरा उड़ रही है उतर। और अब 5 तारीख को हमने स्टडी करी चंबल की, छिप्रा की, और बेतवा तो है ही, और नर्मदा की। यार आज की स्थिति में राइस भाई आपको बताते हैं, नर्मदा जो अब जीवन रेखा मानी जाते हैं अपने मध्य प्रदेश की, 16 जिला तो सीधे जुड़े हैं उसे, जो कुंड है ना, कुंड में वो गोमुख बने हुए, गोमुख में से पानी नहीं टपक रहा और कुंड में जो पानी भरो है वो ही तो होते से भर के, और कुंड में से ओवरफ्लो हो तो जो ओवरफ्लो बंद हो गए आज की स्थिति में, जून है हालांकि, और वो जो कुंड को पानी आगे बह के जाते हो कपिल धारा पे एक बहुत बढ़िया वाटरफॉल बनत तो वो पहाड़ सूखो पड़ो है। तो जो अपन इतने सालों से देख रहे
0: हैं, उसका जो मैं जो उसके सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ, नर्मदा जी की खासियत ये थी कि नर्मदा जी के पास लगे हुए जो पेड़ थे साज के साल के
2: है ना,
0: वो क्या करते थे हवा से नमी
2: सोखते थे और पानी जड़ों में पानी पहुंचा लेते
0: थे। अब इतने वृक्षारोपण के अभियान चले तो उनने ऐसे पेड़ लगा ले जो पानी नमी खींचने लगे, जमीन से नमी खींचने लगे, तो उससे नर्मदा जी के उस पे तो प्रभाव पे फर्क फड़क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा।
1: तो भाई जैसे जो संत रविदास जी जो मंदिर की जो परिकल्पना बनी,
2: बिल्कुल,
1: और जो सामाजिक समरसता को जो कॉन्सेप्ट जो है मोदी के आवे के बाद, प्रधानमंत्री के तौर पे आवे के बाद, तो इस पे एक जो जगह नहीं मतलब सब जगह बहुत काम हो, जैसे बुंदेलीखंड के लिहाज से अगर बात करें तो कोई भी निर्णय हो रहा है तो भी ये हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को भी समाहित करे जाए, जैसे मान लो अभी को निर्णय देख लो आप, जैसे हालांकि राजनीतिक निर्णय है कि भाई मध्य प्रदेश की राज्यसभा से बुंदेलखंड से केवट समाज के एक व्यक्ति को ले आए भी, या अग्रवाल के तौर पर, मतलब इन इन जातियों के बहुत वोट नहीं है लेकिन उनकी कोशिश जा है कि हर वर्ग कोनू ना कोनू जगह जाके राजनीतिक तौर पे एडजस्ट हो जाए कहीं ना कहीं।
2: एक पहले
1: सुमित्रा वाल्मीकि जी को जैसे जबलपुर से ले आए, बुंदेलखंड से ही लगो इलाका जबलपुर है,
2: बड़ा वर्ग है। और दूसरा एक चीज और अपन ने जो देखी, जैसे अपन तीन ही जनों को बैकग्राउंड बुंदेलखंड को है, तो अपनों ने शुरू में बचपन में देखी कि जाति प्रथा ज्यादा दिखाती, अब वह चीज धीरे धीरे कम हो गई है, खत्म हो रही है लगभग। तो जो केवट समाज की अगर अपन बात करें, महेश केवट किलाने जैसे उनने कैंडिडेट बनाओ राज्यसभा किलाने, तो केवट समाज बहुत है, अमोरों के संघ कितने स्कूलों में पढ़े अपन और कॉलेज में पढ़े संघ है बहुत। और दूसरा वो तरफ करीब मध्य प्रदेश के क्षेत्र में हमने एक आध बार खबर भी छापी, करीब 32 सीटें ऐसी हैं जो उन पर केवट समाज 25,000 से ज्यादा उनकी संख्या है, और 16 सीटें ऐसी हैं जो उनमें 30,000 के ऊपर हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी अगर कोनो विजन लेके चल रहे तो उनमें स्थानीय स्तर की सरकारें, चाहे मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, बाकी भी हों, या उके और नीचे जिला स्तर के प्रशासन के लोग सोच अगर वो विजन पे मिला लें तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड की रोजगार की समस्या पे भी, चूंकि विजन बड़ो तो आ रहो लेकिन नेचे भी संगे संगे उसे कनेक्टिविटी हो तो जुड़त रहे, और इसके संगे ही जो है समावेशी सोच को लेकर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को विजन है तो उको लेकर लगातार काम हो रहा है, और एक बड़ो बदलाव कई बार, और जैसे काम में हर बार कई भी जात के जब कोई भी व्यक्ति 10 काम करे तो 2 में चूक भी हुई है तो उसमें सुधार की गुंजाइश भी हुई है, 100% तो कोई हो नहीं सकता है,
2: सबके संग है वो अपन देखा है कि
0: ओवरऑल कंप्लीट
1: तो कोई भी नहीं हो सकता
2: है, अपन उनको स्वीकार ऐसे ही कर रहे हैं कि आपके अंदर 80% खूबियां हैं, 20% खामियां हैं, वो धीरे धीरे दूर हो जाए,
1: कहीं ना कहीं शुरू हुई है। तो कुल मिला के बहुत सारे नए काम नए विजन के संगे पिछले 12 साल में भय हैं, और उम्मीद करें कि जब तक उनको कार्यकाल रहे या आगे भी जो भी सरकारें जब भी आती हैं तो अपन तो हमेशा कोशिश यही करें और सोच भी यही रखें कि चाहे बुंदेलखंड हो, मध्य प्रदेश हो या देश हो, उनके समावेशी विकास के संगे, सबको संगे लेके चलने वाले विकास के संगे हमारे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काम करें। फिलहाल 12 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूरे भय, और हमने तो अपने जीवन काल में पहली बार कोनू प्रधानमंत्री को 12 साल ही देखे, मनमोहन सिंह जी नेहरू जी को देखे नहीं, राजकरण देखे नहीं है, मनमोहन सिंह जी 10 ही साल रहे, अपन ने तो अपने जीवन में पहली बार 10 साल से ज्यादा कोनो प्रधानमंत्री को देखे, तो ईश्वर उन्हें दीर्घायु प्रदान करे और ऐसे ही देश के विकास के लाने काम करें। चर्चा में आप दो जने शामिल भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम।
3: अभी आप सुन रहे थे पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल, बदलता बुंदेलखंड, ये विशेष कार्यक्रम। विशेषज्ञ थे राजेश सिरोठिया और राजीव सोनी, वार्ताकार थे सचिन चौधरी, और प्रस्तुति थी प्रादेशिक समाचार एकांश की। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारा अगला प्रसारण कुछ ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमें उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की जरूरत पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती

मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी, जिससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए थे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7:05 हुए हैं और यह समय होता है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के साथ हाजिर हूं मैं आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। अब से कुछ ही देर में यानी 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं के लिए दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे समेकित कृषि प्रबंधन में पर्यावरण संरक्षण विषय पर डॉक्टर सतीश कुमार परसाई की भेंट वार्ता। रात्रि 8 सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 आर्थिक विकास। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:35 और रात्रि 10। उर्दू कार्यक्रम कहकशां का प्रसारण 9:30 पर किया जाएगा और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज सुनेंगे आप संगीता गोस्वामी का ख्याल गायन। राग होगा मारू बेहाग। इसका प्रसारण रात्रि 10:30 पर किया जाएगा। ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल यानी बुधवार 10 जून 2026 को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। सुबह की खूबसूरत शुरुआत होगी हमारे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के साथ 7:20 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा का आनंद आप लेंगे सुबह 8:30 पर। सुगम संगीत के अंतर्गत 9:15 पर आप सुनेंगे राजेश खरे द्वारा गाए गीत और भजन। 9:30 पर सुनिए प्रदेश की सुर्खियों में। सुबह 10:05 पर सुनिए कार्यक्रम महिला संसार और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में आप सुनेंगे ऋत्विक सान्याल का ध्रुपद गायन। राग होगा गंगे आभूषण सुबह 10:30 पर। श्रोताओं, इन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत किया जाएगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने सुबह 11:00। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का प्रसारण दोपहर 12:00 और दोपहर 2:30 पर किया जाएगा। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जंग लगी तलवार का 8 आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:00 सुनिए कार्यक्रम महिला सभा 1:30 पर लोक संगीत 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर के योगदान से प्रसारित किए जाएंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए दोपहर 2:00 शाम 5:33 6:30 और रात्रि 8:35 पर।

शाम 6 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण शाम 7:21 पर किया जाएगा। इसके अंतर्गत कल आप सुनेंगे खरीफ फसल हेतु मिट्टी की तैयारी में सावधानियां विषय पर डॉक्टर अमर बहादुर सिंह की भेंटवार्ता। रात्रि 8 बजे सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर। कार्यक्रम चर्चा का विषय है का प्रसारण रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रेडियो नाटक तुम सही हो गार्गी। इसके लेखक हैं विमलकांत येंदे और प्रस्तुति राकेश ढूंढियाल की होगी। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेंगे सरवर हुसैन का सारंगी वादन, राग होगा पूरिया कल्याण, 10:30 पर। श्रोताओं, ये थे कल यानी 10 जून 2026 बुधवार को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर से फोन पर बात की, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर जताई चिंता। केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह नई योजना के लिए राज्यों को 95,692 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक, भोपाल मेट्रो समेत कई बड़े फैसलों को मंजूरी। और इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का पहला दिन, 21 देशों के प्रतिनिधियों ने साझा घोषणा पत्र के मसौदे पर की चर्चा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई और कुवैत की संप्रभुता पर हमलों की कड़ी निंदा दोहराई। उन्होंने शांति बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति की जरूरत पर जोर दिया और कुवैत में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा के प्रति अमीर के व्यक्तिगत ध्यान के लिए भी आभार व्यक्त किया। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपये के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ये मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण में सुचारू परिवर्तन के लिए है। ये नया कानून अगले महीने की पहली तारीख से पूरे देश में लागू होगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पिछले साल की तुलना में बजट में 40% की बढ़ोतरी की गई है और किसी भी राज्य के आवंटन में कटौती नहीं की गई है।
1: किसी भी राज्य का मैं एक बताना चाहता हूँ, ये आशंकाएं कई बार लोग व्यक्त करते थे, इसका कम हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा, किसी का कम नहीं हुआ है। ये जो हमने दिया है 60% ही, पिछले साल मनरेगा का जो एलोकेशन था लगभग उतना तो 60% ही दिया है, मतलब 40% ये बढ़ेगा पिछले साल से, तो किसी राज्य को कमी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
0: इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज पहला दिन रहा। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात समेत कुल 21 देशों के कृषि मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने इसमें शिरकत की। आज दिनभर कई दौर की बैठकें हुई जिनमें प्रतिनिधियों ने साझा घोषणा पत्र के मसौदे पर गहन विचार विमर्श किया। ये सम्मेलन 13 जून तक चलेगा जिसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती और छोटे किसानों को मजबूत बनाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई जिसमें करीब 13,800 करोड़ रुपए की स्वीकृति के साथ कई बड़े फैसले लिए गए। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित लागत के लिए 13,565 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी

0: मंजूरी दी गई। प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
1: विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा विभिन्न योजना संचेवाओं के लिए 235 करोड़ की योजना के निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। एक महत्वपूर्ण निर्णय किसान कल्याण वर्ष में लिया गया है। किसानों के लिए जो कपास में मंडी शुल्क लगता है, वह मंडी शुल्क अभी 1 रुपया प्रति 100 रुपए के ऊपर या 1% लगता है। अभी निर्णय करा है कि हम हमारे यहाँ पर मंडी शुल्क उसका आधा टका करेंगे। आधा परसेंट मंडी शुल्क होने से मध्य प्रदेश के किसानों का जो कपास है वह मध्य प्रदेश की ही जिन फैक्ट्रियों के अंदर प्रोसेस होगा।
0: मंत्री श्री कश्यप ने जानकारी दी कि मंडी शुल्क से मिलने वाली 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय किसान सड़क निधि और कृषि अनुसंधान में लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी है। डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को हमेशा प्रधान सेवक माना है और गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के जीवन में नया बदलाव लाए हैं। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने करोड़ों परिवारों की जिंदगी को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया,
3: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
2: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया,
4: यहाँ पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है, मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
2: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा कर इस महीने की 21 तारीख को होने वाली नीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्रों तक सामग्री पहुंचाने तक पूरी गोपनीयता बरती जा रही है। नीट पेपर लीक मामले में श्री प्रधान ने कहा कि CBI जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने पर आज प्रदेश के सभी जिलों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त जांच, दवाएं और विशेषज्ञ परामर्श मिलेगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सभी गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों से इन शिविरों का लाभ उठाने की अपील की है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्रदेश में अब तक 10 लाख से ज़्यादा पथ विक्रेताओं को लाभ मिल चुका है। योजना की पहुंच और बढ़ाने के लिए 1 जून से पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो 30 जून तक चलेगा, जिसके तहत पथ विक्रेताओं को बिना गारंटी के 15,000 रुपये तक का आसान कर्ज और डिजिटल लेन देन की सुविधा दी जाएगी। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में आज भीषण गर्मी का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने 10 और 11 जून को भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं दूसरी तरफ मानसून के 15 से 18 जून के बीच प्रदेश में प्रवेश करने का अनुमान है। अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबर का। ट्राई सीरीज के पहले वनडे में इंडिया ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। डांबुला में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जिसके जवाब में श्रीलंका ए की टीम 48.5 ओवर में 269 रन पर ही ऑल आउट हो गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर नगर निगम के अग्निशमन विभाग ने शहर के करीब 325 स्कूलों, अस्पतालों, कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को फायर NOC जमा करने के नोटिस जारी किए हैं। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति के प्रभावी क्रियान्वयन में शहडोल जिला पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। श्रम विभाग और आयुष विभाग द्वारा आज धार औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए एक दिवसीय योग शिविर एवं स्वास्थ्य जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाजापुर में मलेरिया की रोकथाम के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कटनी में बारिश में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम के द्वारा नालियों की सफाई एवं गहरीकरण का कार्य कराया जा रहा है। राजगढ़ में आज से 16 जून तक विभिन्न जनपद पंचायत मुख्यालयों और ITI में रोजगार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में मृगनैनी मध्य प्रदेश प्रदर्शनी 2026 में बुनकरों और हस्तशिल्पियों के लिए एक विशेष चौपाल कार्यशाला का आयोजन किया गया। खंडवा के सभी विकासखंड एवं नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 14 जून तक 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिवपुरी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने आज शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित EVM वेयरहाउस का औचक निरीक्षण किया। झाबुआ कलेक्टर ने आज नगर परिषद मेघनगर के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण कर जल गुणवत्ता की जानकारी ली और मंदसौर के गरोड़ तहसील के ग्राम कुलारसी में करीब 5 करोड़ रुपए की 6.16 हेक्टेयर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इसके साथ ही गुना में 15 जून से 19 जून तक ब्लॉक स्तर पर सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर भर्ती के शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये ग्वालियर का आकाशवाणी केंद्र है, भैया रे सुने अपना प्रिय कार्यक्रम चौपाल।

जय जवान जय किसान और ग्वालियर चौपाल कार्यक्रम सुनने बारे हमारे सभी भैयारन को कल्पना बहन की राम राम और करत है स्वागत आज के चौपाल कार्यक्रम में। तो भैयारो देखो सबसे पहले बता देवे कि आज के चौपाल कार्यक्रम में काका है। तो भैयारो हम और हर मंगलवार को लेके आउट हैं फोन आउट कार्यक्रम आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फोन पर मौसम की जानकारी एवं कृषि सामयिक सलाह और नौने नौने लोकगीतों का मनोरंजन भी करवाए हैं और संग संग में देखो कछु चर्चा के विषय भी हैं। तो अब चर्चा शुरू करते हैं आपकी और हमारी बातचीत से। तो यार देखो सबसे पहले ये बताओ कि आप और उनके कैसे का हाल चाल है। हम जानते हैं कि हमारे सभी भैया हरे खूब ही अच्छी तरह से हैंगे और देखो हम भी अच्छे हैंगे और हमेशा देखो दिल से जो ही चाहते हैं कि हमारे सभी भैया हरन के घर परिवार में हमेशा खुशी को माहौल बनो रहे, सभी जने खुश रहें स्वस्थ रहें और ऐसी मंगल कामना हम अपने भैया हरन के घर परिवार के लिए कराते हैं। तो भैया रो देखो हमारे देश में दुनिया में कई संत महात्मा वैज्ञानिक धर्मात्मा विशेषज्ञों ने

धरती पर जन्म लो। तो हम सभी जने मानस इन महान व्यक्तियों को जन्म दिवस और पुण्यतिथि मनाते हैं। तो इन सब में हैं बिरसा मुंडा। आज भैया और महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक बिरसा मुंडा जी को की पुण्यतिथि पे श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। तो भैया और देखो, बिरसा मुंडा को निधन 9 जून 1900 को रांची जेल में हुआ तो, और भी 25 साल की उम्र में ही देश और समाज के लिए अपन सर्वस्त्र नौचावर कर गए। और उनको जन्म 15 नवंबर 1875 की वर्तमान झारखंड के अलीहातू गांव में हुआ तो, और उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध जनजातीय समाज को संगठित करो। और ऊ टेम भैया हो आदिवासी समुदाय अपनी भूमि जंगल और अधिकारों से वंचित हो रहो तो, फिर बिरसा मुंडा ने लोगों को अन्याय के खिलाफ खड़े हुए को साहस दो और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी करो। फिर भैया रो देखो, जनजातीय समाजों ने प्रेम और सम्मान से धरती आवा यानी कि भैया हरो धरती के पिता के नाम से याद कराते हैं। तो भैया हो उन्होंने अपने केवल अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष ही नहीं करो बल्कि समाज में फैली कुरीतियां और अंधविश्वासों और बुराइयों को दूर करवे को प्रयास करो। उनके संदेश हतो कि शिक्षा एकता और आत्मविश्वास के बल पे समाज को आगे बढ़ाव जा सकता है। और भैया हरो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चला अल गुलान और आंदोलन जनजातीय स्वाभिमान और अधिकारों की लड़ाई को प्रतीक बनो। और उनके संघर्ष को प्रभाव इतो व्यापक तो कि बाद में जनजातीय भूमि की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए। सुभैया रो आज उनकी पुण्यतिथि हमें यह संदेश देते है कि हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, समाज में एकता बनाए रखना चाहिए और देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। और भैया रो बिरसा मुंडा को जीवन त्याग साहस और संघर्ष की प्रेरणा गाथा है। तो भैया रो उनकी पुण्यतिथि पे हम सभी को संकल्प लेना है और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएंगे और समाज में न्याय समानता भाईचारे की भावना को मजबूत करेंगे। तो भैया रो धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पे पुण्यतिथि पे सत सत नमन कोटि कोटि नमन। तो भैया हरो सुनते जो देशभक्ति गीत देशराज पटेरिया से।

अगर हिमालय जैसा शीश है तो पांव भारत की भूम धन धन गांव गांव भारत की भूम धन धन गांव गांव अरे हिंद महासागर

हो गए सुभाष चंद्र शेखर आजाद कि जान दई जान जान दई जान जान दई ना मर जा।

चंदन सी माटी अयोध्या से ग्राम, चंदन सी माटी अयोध्या से ग्राम, हर नारी में सीता हर

0: भैया और देखो, अब बातचीत करेंगे डिजिटल इंडिया की, जो हमारे देश को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ावे को एक महत्वपूर्ण अभियान है। तो भैया और देखो, इको उद्देश्य है कि सभी जनमानस एक डिजिटल सेवाएं आसानी से पहुँचें और लोगों को जीवन अधिक से अधिक सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बने। सो भैया देखो, डिजिटल इंडिया के माध्यम से गाँव में इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाओं को विस्तार बहुत हो, और अब भैया हरों ग्रामीण लोगों को घर बैठे नई सरकारी योजनाएं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि भैया राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन, किसान सम्मान निधि, बिजली बिल भुगतान और बैंकिंग जैसी अनेक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इसे भैया हरों देखो, समय और धन दोनों की बचत होते हैं, हम घर बैठे सारे काम कर सकते हैं। भैया और देखो, आज को टाइम ऐसा है कि हमारे किसान भैया हरे अपने मोबाइल फोन से मौसम की जानकारी, फसल संबंधी सलाह और मंडियों के भाव देख सकते हैं। इसे भैया हरन को खेती के बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलता है, और छात्र छात्राएं भी देखो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से नई नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और भैया रो देखो, डिजिटल भुगतान भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, और भैया रो देखो UPI भीम ऐप और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से लोग सुरक्षित रूप से रुपया पैसा भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि भैया रो लेन देन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और भैया रो देखो, डिजिटल सेवाओं को प्रयोग करते टाइम सावधानी रखवो भी जरूरी है। अपने बैंक खाते, ATM, OTP और पासवर्ड की जानकारी कोनो भी अनजान व्यक्ति को कबू नहीं देने हैं। और भैया हो, साइबर ठगी से बचवे के लिए केवल विश्वसनीय वेबसाइट और ऐप को ही उपयोग करने हैं। आजकल भैया और देख ही रहे हैं अपन कि ठगी कितनी हो रही है, कि घर बैठे ही पैसे निकाल लेते हैं, है? कोई फ़ोन पर बात करके, कोई भेष बदल के कोनो ना कोई रूप में खाते से पैसे निकल जाते हैं। सो भैया और देखो, डिजिटल इंडिया केवल योजना की नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की ओर बढ़त भाव एक बड़ा कदम है। सो भैया और हम सभी को डिजिटल तकनीक को सही उपयोग करने हैं और नई जानकारी सीखें और अपने गांव को, देश को, नगर को और मोहल्ले के विकास में भागीदार बने। सो भैया और देखो, अब अपन बात करें हैं फोन आउट कार्यक्रम के बारे में। भैया और देखो, आज है मंगलवार और हर मंगलवार को लेके आउते हैं फोन आउट कार्यक्रम। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फोन पर मौसम की जानकारी एवं कृषि सामयिक सलाह की जानकारी दे हैं डॉक्टर हरविंदर सिंह। तो सुनते हैं जो मौसम की जानकारी।
1: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से डॉक्टर अरविंद सिंह का सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, हमेशा की तरह मैं सबसे पहले आपको मौसम के बारे में जानकारी दूंगा, साथ ही संभावित मौसम में कौन कौन से कृषि कार्य करके उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप पिछले सप्ताह के मौसम के बारे में जानिए। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना स्थित मौसम वेशाला की गणना के आधार पर पिछले सप्ताह में मुख्यतः साफ से छुटपुट बादल रहे तथा हवा लगभग 4.5 से 5.1 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम उत्तर और पश्चिम दक्षिण दिशा से बही तथा अधिकतम तापमान 39 से 41 और न्यूनतम तापमान 27-30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया एवं आपेक्षिक आर्द्रता सुबह 56 से 59 और शाम को 27 से 34% के बीच दर्ज की गई। किसान भाइयों, आगामी 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार से है। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना को मध्यमकालिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के आधार पर आगामी 5 दिनों में छुटपुट से घने बादल रहने तथा छुटपुट वर्षा होने का अनुमान है। हवा लगभग 11 से 23 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम और पश्चिम उत्तर दिशा से बहने की संभावना है तथा अधिकतम तापमान 42.1 से 42.9 और न्यूनतम तापमान 31.2 से 32.4 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहने की संभावना है। आपेक्षिक आर्द्रता सुबह 41 से 43 और शाम को 20 से 28 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है। किसान भाई, संभावित मौसम में जिस प्रकार से हवा की गति दिखाई गई है 11 से 23 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगामी 2-3 दिन में थंडर स्टॉर्म की संभावना बनी हुई है। थंडर यानी तेज सतही हवाओं की संभावना बनी हुई है, तो इसको देखते हुए जो कृषि कार्य करने की सलाह इस प्रकार से है। किसान भाई, संभावित मौसम में थंडर स्टॉर्म के अनुमान को देखते हुए इस समय पकी हुई और कटी हुई जो आपकी मूंग या पश्चिम की पकी हुई फसल कटाई के बाद में यदि खेत में पड़ी है तो उसको इकट्ठा कर सुरक्षित खलिहान पर रखें तथा जब मौसम साफ हो तब उसकी सुखाकर गाही करें। साथ ही किसान भाई, संभावित मौसम में इस समय खेतों की जुताई करें और छूटी हुई मेड़ों का मरम्मत का कार्य करें, क्योंकि आगामी 10 या 12 दिन में आपके यहाँ मानसून आने की संभावना है, तो उसकी तैयारी करें। साथ ही किसान भाई, फसलों की बात करें तो इस समय धान की फसल के लिए धान संभावित मौसम को देखते हुए इस समय धान की नर्सरी हेतु खेतों में जुताई कर तैयार करें और उन्नत सीड किस्मों के बीजों का चयन कर इस समय नर्सरी डालें। साथ ही किसान भाई, सोयाबीन की बात करें, संभावित मौसम को देखते हुए सोयाबीन की शीघ्र बुवाई हेतु उन्नत किस्में जैसे RBSM 2001-35, RBS 2007-35 एवं देरी से बुवाई हेतु उन्नत किस्में जैसे JS 20-29 और RBS 2001-4 आदि का चयन कर क्रय कर अनुसंधान अनुसार की बुवाई करें। साथ ही किसान भाइयों, ज्वार की बात करें तो संभावित मौसम को देखते हुए ग्रीष्मकालीन हरे चारे की उपलब्धता जो ज्वार बोई गई है उसमें आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। साथ ही किसान भाइयों, इस समय अरहर की बुवाई हेतु खेतों की तैयारी करें और उन्नत किस्मों के बीजों का चयन करके अरहर के पलेबा की अगर स्थिति है तो पलेबा कर अरहर की बुवाई करें। साथ ही किसान भाइयों, सब्जियों की बात करें तो इस समय बैंगन, टमाटर, खरीफ प्याज, अगेती, फूल गोभी हेतु नर्सरी तैयार करके नर्सरी डालें। साथ ही भिंडी की बात करें तो इस समय भिंडी की फसल में फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु डायमेथ्रो 750 ml दवा प्रति हेक्टर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर 10-10 दिन के अंतराल से 2 या 3 छिड़काव करें। बात करें तो इस समय मिर्च और टमाटर में चूड़ा मुड़ा रोग की संभावना हो सकती है, सतत निगरानी रखें और दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु थायोमेथाग्राम 25 WG 100 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर मौसम साफ होने पर इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई, बैंगन और टमाटर की बात करें तो इसमें तना छेदक और फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है, अतः सतत निगरानी रखें और दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु नीवाक्लोन 1 लीटर दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टर इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई, पशुपालन की बात करें, जैसा कि संभावित मौसम में थंडर स्टॉर्म की संभावना बनी हुई है, तो ऐसे समय में जब आपके यहाँ थंडर स्टॉर्म की संभावना दिखाई दे तो ऐसे समय में पशुओं को विद्युत खंभे एवं कमजोर शेड और बड़े वृक्षों से अलग रखें और जहां तक संभावित हो मजबूत और पक्के शेड में रखें। साथ ही किसान भाई, तापमान वृद्धि को देखते हुए पशुओं को दिन के समय छायादार स्थान पर बांधें और स्वच्छ ताजा पानी पिलाएं और आवश्यकता अनुसार 1 अथवा 2 बार नहलाएं। साथ ही किसान भाई, संभावित मौसम में तापमान में वृद्धि को देखते हुए दुधारू पशुओं को विटामिन व खनिज लवण मिश्रण

0: की सामान्य मात्रा जो 40 ग्राम प्रतिदिन प्रति पशु से बढ़ाकर 60 ग्राम प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से दाने में मिलाकर के दें, जिससे उनके दूध उत्पादन में कोई कमी नहीं होने पावे। साथ ही किसान भाइयों, संभावित मौसम में तापमान वृद्धि को देखते हुए पशुओं को दाना चारा दिन के ठंडे समय यानी सुबह जल्दी और देर शाम को खिलाएं, जिससे पशुओं को आहार में ग्रहण करने में होने वाली कमी से बचा जा सके। साथ ही किसान भाई, संभावित मौसम को देखते हुए इस समय खुरपका और मुंहपका के बचाव हेतु पशुओं में टीकाकरण कराएं। मुर्गियों की बात करें तो संभावित मौसम में मुर्गियों को परजीवी से बचाने हेतु पिपराजिन दवा अनुसार डॉक्टर की अनुशंसा अनुसार इनको पिलना है। इसी के साथ किसान भाइयों, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से मैं डॉक्टर हरविंद सिंह।
1: भैया और देखो, अबे सुन रहे थे आप फोन आउट कार्यक्रम। तो भैया और देखो, अबे हमारे डॉक्टर हरविंदर भैया ने बहुत ही अच्छी तरह से पूरे विस्तार के संग जानकारी दी कि सब्जियों की देखभाल कैसे करने हैं, खेती की कैसे करने हैं, रखरखाव कैसे करने हैं और अपने पशुओं की देखभाल कैसे करने हैं। तो भैया और देखो, वो जब इस पर बात कर रहे थे कि आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फोन पर मौसम की जानकारी एवं कृषि सामयिक सलाह। तो भैया और देखो, हम उम्मीद कर रहे थे आप उनके बताए रास्ते पे जरूर चलेंगे। अब भैया लेते हैं तनक विराम।

भैया देखो विराम के बाद स्वागत है फिर से चौपाल कार्यक्रम में। भैया रो देखो आप और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि बेटी हमारे घर की आन है, शान है, बान है, हमारे घर की लक्ष्मी है। तो बेटी से देखो घर आंगन की रौनक होते है। वो हर वक्त अपने घर परिवार को साथ देते हैं, माता पिता को साथ देते हैं और ख़ासकर अपनी माँ की हर कदम कदम पर खड़े रहते हैं माँ के संग। तो देखें अपन सुनते हैं कि राजीव कुमार रावत क्या कह रहे हैं।

भैया वो देखो, अबे आपने कितना प्यारा लोकगीत सुनो कि बेटा बेटी एक समान। और भैया और जे बात बिल्कुल 16 आना सांची है कि बेटा बेटियाँ में कभी भेद नहीं करना है। भैया और देखो, अब अपन बात करेंगे कि यातायात नियमों के बारे में। भैया और कहते ना कि जान है तो जहान है, जो हम सभी को अपनी अपनी सुरक्षा पे ध्यान देना है। सो भैया और देखो, सड़क सुरक्षा केवल सरकार या फिर पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी को कर्तव्य है कि कछु जनमानस की ऐसी लापरवाही होत है कि हर बरस सड़क दुर्घटनाओं में अनेक लोगों की जान चली जाती है। लेकिन थोड़ी सी लापरवाही और यातायात नियमों की अनदेखी के कारण जे होत है। सो भैया हरो, जरूरी जे है कि हम खुद भी नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इके लिए प्रेरित करें। वैसे भैया हो देखो, गांव में खेती किसानी बाजार और अन्य कामों के लिए देखो लोगों को आवो जावो बनो रहते हैं, तो ऐसे में सड़क पर चलत वक्त विशेष सावधानी बरतवो जरूरी है। सो भैया और देखो, अगर मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल चला टाइम हमेशा हेलमेट पहने और जो पीछे बैठे वालों व्यक्ति है वासे भी पहनवे को बोलें। और भैया वो देखो, 4 पहिया वाहन चला समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं। सो भैया और देखो, वाहन चला टाइम फोन पे बातें नहीं करने हैं, अगर जरूरी बात करने भी है तो गाड़ी को एक तरफ खड़ी करके बात करें। और ना ही भैया वो देखो तेज गति से वाहन चलाते हैं, तो कहते ना भैया हो देखो, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी में खुद की भी जान जा सकते हैं और दूसरों की जान को भी खतरा हो सकता है। और ना ही भैया देखो, नशे की हालत में गाड़ी ना चलाए, ये भैया कानूनन अपराध होवे के कारण जे संग संग में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और भैया और देखो, सड़क पार करत समय हमेशा दाएं बाएं देख के ही आगे बढ़े, जो अपने बच्चे हैं बुजुर्ग हैं उनको सड़क पार करने में मदद करें। और हाँ भैया हरो, देखो रात के टाइम वाहन में आगे और पीछे की लाइटें सही स्थिति पे रखें ताकि अन्य वाहन चालक आपको आसानी से देख सके। और भैया देखो, छोटी सी सावधानी बड़ों हादसों टाल सकते है। सो भैया और देखो, घर परिवार के लोगों को आपकी सुरक्षित वापसी को भी इंतजार करत है। सो भैया और देखो, सड़क पे हमेशा सतर्क रहें, यातायात के नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा को अपनी आदत बनाएं। सो भैया और देखो, हम सभी को जे संकल्प लेना है कि यातायात के नियमों का पालन करेंगे, स्वयं सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करेंगे। और हाँ भैया और देखो, जे सभी बातें अपने लड़का बेटियन को भी बताने हैं, उनको समझाने हैं, जैसे कि वे भी सुरक्षित रहें। भैया और देखो, चर्चा तो अपन आगे और भी करें हैं, पहले सुन लेते हैं जे 900 लोकगीत उर्मिला पांडे से।

मायके में मर गई तुम खा खा महे। मायके में मर गई तुम खा खा महेरी, ब्यारी में महेरी दोपारी में डुबरी। अब डुबरी मंगन की बनत मगुआ, ताजी मंगन की मायके में मर गई तुम खा खा महेरी, ब्यारी में महेरी दोपारी में डुबरी। यही से धना तुम हती भोत दुबरी, इते मान हूं

हमरे बाबुल के लगे नौ करो चाकर। अब भगवान कसम को नहीं लगो थे बता रहे आपका मायके में ये का करती रही, मायके में करती रही कंडा पथर।

भैया और अब अपन बात कर रहे हैं कृषक प्रेरणा के बारे में। भैया और देखो, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसान भैया अपने कठिन परिश्रम से खेतों में अन्न उगाते के पूरे देश को पेट भरते हैं। इसे किसानों को आत्मविश्वास और उत्साह हमेशा बनो रहता है। तो भैया और देखो, खेती केवल एक व्यवसाय नहीं है बल्कि जीवन को आधार।

भैया। और देखो आज के समय में खेती में नई तकनीकों को उपयोग करके उत्पादन बढ़ाया जा सका है और उन्नत बीज, संतुलित खाद, समय पर सिंचाई और वैज्ञानिक खेती विधियों को अपना के बेहतर से बेहतर पैदावार कर सकते हैं। और भैया वो देखो मौसम की जानकारी, सरकारी योजना और कृषि विशेषज्ञों की सलाह को लाभ उठा के खेती को और अधिक लाभदायक बनाओ जा सकता है। भैया वो देखो हमारे किसान भैया और उनको चाहिए कि वे फसल के संगे पशुपालन, बागवानी, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और भी ऐसे अन्य कार्य करे जा सकते हैं। इसे आय के नए स्रोत बनाते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होते हैं। और भैया देखो एक सफल किसान वही होते हैं जो परिस्थितियों से घबरात नहीं है बल्कि उनसे सीख लेके आगे बढ़ते हैं। तो भैया और देखो कभों कभों मौसम की मार या बाजार की एक कारण मौसम के कारण कठिनाइयाँ आते हैं, तो लेकिन धैर्य, मेहनत और सही योजनाओं से चुनौतियों को सामना करो जा सकता है। तो भैया देखो आधुनिक कृषि तकनीक को अपना के अपनी खेती को उन्नत बनाएंगे। भैया और देखो अब चलवे की बेरा हो गई है। हमें सभी भैया को कल्पना बहन की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष आर्थिक विकास।
1: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। आज सुनिए सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं पत्रकार शिशिर सिन्हा।
2: नमस्कार। 26 मई 2014 नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता संभाली। तब से लेकर 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में देश की जनता ने दो बार और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान हमने कई परिस्थितियां बहुत ही कठिन देखी। कोविड का दौर था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट। लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा की दर से विकास करती रही। कैसे संभव हुआ? क्या कुछ रही कहानी? आगे क्या कुछ हो सकता है? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेलवे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार
2: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा की विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
3: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के NPS बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके NPS कम करने का प्रोसेस चालू किया, कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, NPS लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब $30 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज $130 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर्स बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर्स बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें UK से तो मेरे ख्याल से less than 50% है। कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई, उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को

और ज़्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीति

0: पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा।
1: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपये तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है, उसे आप किस तरीके से परिभाषित कर दें?
0: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी, हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने। 1,300 स्टेशन का पुनर्निर्माण, नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन में से करीब करीब 250 स्टेशन कम्प्लीट हो चुके हैं। इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कम्प्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, मैंने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना, कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे, जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है, जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में, वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलके। तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए। ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट जैसे ये चिनाब का ब्रिज, अगर आप देखते हैं तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को। प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
1: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
0: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
1: पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
0: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया। जनरली पीपीपी माने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस। देखिए, रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू द हाईवे सेक्टर। इसलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस, जो आपने कहा, प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है। और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। माने प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी, और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही है, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से। तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे।
1: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है, उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
0: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए, आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशंस लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का ये भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे। ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी। इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया, इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे

0: बहुत फोकस किया टैलेंट में. 324 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है. ये इसका उदाहरण है आपके सामने. देखो, सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिजाइन की हुई है चिप्स. ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया. हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहाँ पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की. 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए.
1: तो अब अगले, अगर मैं 2 वर्ष में कहूँ तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहाँ देखते हैं?
0: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है. विद इन 4 ईयर्स जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप्स हमारी, ये माइक्रोन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से, 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स. तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना. और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा, इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और ATMP यूनिट्स और आएंगे. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है, उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है.
1: सर, एक चीज हमने और भी देखा कि जो PLI इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया, और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला. एक ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन की बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था. अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें, तो ये जो PLI स्कीम है, ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया और वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
0: बहुत फायदा हुआ. सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई. और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है. ये क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर जी, तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट? इसमें कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा. ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट? इतना प्रिसीजन का काम था. जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है. तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट्स सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है. तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर द सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है. करीब 250 फैक्ट्री होंगी और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है. प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जांपल आपको दूंगा. रेलवे का जो प्रोपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, वो प्रोपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स. लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड US. तो ये बहुत बड़ा चेंज है. प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी.
1: तो अगले, अगर मैं PLI के अगले चरण की बात करूं, तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
0: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना, और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, 6 सिग्मा लेवल पे लेके जाना.
1: सर, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं, तो 2 ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं. एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट. ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पे रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पे अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते.
0: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था. हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना. ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी. इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया. इसका बहुत बेनिफिट मिला है. अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के CEO का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके सीईओ मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था, और उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुइसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीज़ें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपये मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपये मैं गेमिंग में गंवा देता था, और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है।
1: लेकिन
0: इस तरह के कई एग्जांपल्स।
1: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए,
0: ये बात ठीक है आपकी,
1: तो आप कैसे उस पे रोक
0: लगा? ये बात ठीक है। देखो, जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
1: और सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरीके की?
0: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये, जिसमें 7 principles के बेसिस पे सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
1: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे, और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप तो?
0: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट AI। एक टेलीकॉम टावर करीब 2000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती हैं, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें AI लगता है हर टावर के अंदर तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी, और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल और टेलीकॉम में AI का रोल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
1: लेकिन ये भी कहा जाता है कि AI बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, AI के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
0: जितनी IT सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में NASSCOM के माध्यम से IT इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है, जिसको AICT के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है IT इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
1: अश्विनी वैष्णव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने की कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रख कर लाया है। चलिए, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है, तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था, किरण रिजिजू जी का। और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके। तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
4: धन्यवाद।
3: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
4: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है, और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है। और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है। नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनावों में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन से बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूँ कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश, और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
3: आपने, क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब 1 रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
4: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता है तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया, केंद्र सरकार के ओर से कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम्स जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था। जब कांग्रेस यूपीए सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
3: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम वो बोल रहे हैं।
4: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। देश के जिस आदमी का भी आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे। चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाया था, कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं, सामान बेचते हैं, उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
3: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे?
4: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो, लेकिन मालिक तो जनता है। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो

0: मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो वो तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा। स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था। सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी, हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे। और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपना इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
1: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ से आप आते हैं, वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था। वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
0: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो, चाहे मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है। जो 1 इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले, आज वहाँ चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है। गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे। तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
1: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है,
0: वो तो विषय अलग है। उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है, ये बड़ी बात है।
1: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी, खतरा लग रहा है क्या अभी?
0: देखो जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं।
1: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगी, राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से।
0: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहाँ वो छुट्टियां मनाते हैं, रिजोर्ट में छुप के कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है। और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
1: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
0: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आ करके फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
1: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
0: देखो
1: आप...
0: किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हम आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो विदेश वाला राहुल गांधी आजादी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
0: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है, लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारे सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं, और अभी ईरान अमेरिका इसराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रहे है, तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं, तो मेरा ये कहना है कि आम तौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है, जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया वो कम्युनिस्ट भाग हो गया, 1965 हो 71 हो या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जब विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए, ये तो सब मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है, मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ, पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया, नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है, अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं, दिन भर नारा लगाते रहते हैं अपना एमपीओ को जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहां तमाशा कराते रहते हैं, तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मल सी कर दिया, अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व मान लिया है, संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां है तो उसको उजागर करना, और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं, तो एक बोलना मुश्किल है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही, और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।

0: अभी आपने सुना समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर ग।

0: AR रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म रॉकस्टार से। इरशाद कामिल के लिखे बोल और AR रहमान का संगीत। श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गुमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ, मनोरंजन समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
2: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया, तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक, हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
3: The amount of time we have spent
4: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या

या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद्य और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफ़ी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर नीट लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
5: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
6: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेगी।
5: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
7: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाके ठीक ठाक रह रहा हूँ।
5: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर

0: Ministers and Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मुल्क की खारजा पॉलिसी अपने असल कौमी अहदाफ से हम आहंग रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की बदलती हुई सलामती की सूरत हाल पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से सारिफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जमीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमद और रफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। दिफा तवानाई की यकीनी फराहमी के तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी तवानाई जखीरा निजाम वाला 250 मेगावाट शमसी बिजली प्रोजेक्ट कायम करेगी। अब खबरें तफसील से। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि नई दिल्ली पाकिस्तान से आ रहे वीडियोज और फर्जी खबरों के पैटर्न पर निगाह रखे हुए है। जनाब जायसवाल ने इन्हें पाकिस्तान की अपनी नाकामियों को छुपाने और इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया है। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 200 जख्मी हो गए। हुकाम की जानिब से सिविल सोसाइटी के सरकर्दा इत्तेहाद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC पर पाबंदी आयद करने के बाद खित्ते में कशीदगी बढ़ गई है। JAAC ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में इकतसादी और सियासी वजूहात की बिना पर मुजाहिरों की शुरुआत की है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की खारजा पॉलिसी अब अपने बुनियादी कौमी मकासद के साथ हम आहंग है। जनाब जयशंकर ने कहा कि खारजा पॉलिसी और सिफारती अमल अब हुकूमत की जानिब से समाजी तहफ्फुज़ और कौमी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करने को तरजीह देने के मकसद के साथ मुंसलिक हो गया है। डॉक्टर जयशंकर DD न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती आज के दौर में महज सरहदों की हिफाजत करना ही नहीं बल्कि इसमें माशी तवानाई सेहत फर्टिलाइजर्स और साइबर ताकत का तहफ्फुज भी शामिल है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत खलीजी खित्ते में अपने मजबूत स्ट्रेटेजिक और इकतसादी मफादात का तहफ्फुज करने के साथ साथ ईरान अमरीका और इसराइल के साथ अपने आजादाना ताल्लुकात भी बरकरार रखे हुए है। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ती हुई जुग्राफियाई सियासी कशीदगी के दरमियान कलीदी खित्तों में भारत के मुतवाजन रवाबित पर भी जोर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता 12 साल के दौरान दूरंदेश क़यादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के तहत भारत में खातिर ख्वाह तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों किसानों खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम के बारे में एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम हिफ्ज़ान सेहत की खिदमत से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में बात करेंगे।
2: पिछले 12 बरसों में हुकूमत ने मुल्क के हिफ्ज़ान सेहत के निज़ाम को नुमाया तौर पर मुस्तहकम किया है। अब ये खिदमत ज़्यादा काबिल रसाई कम खर्च और मेयारी हो गई हैं। साल 2018 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा सेहत बीमा प्रोग्राम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की थी। इस स्कीम के तहत सामाजिक व इकतसादी तौर से पसमानदा कुंभों को सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त सेहत बीमा की सहूलत फराहम की जाती है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने कहा कि इस कार्ड की मदद से अब वो प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
3: फायदा होगा, क्या है, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे और कार्ड से क्या है, मेरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और अच्छा इलाज हो सकेगा।
2: इसके अलावा हुकूमत ने हर एक नजदीकी मकाम पर बुनियादी सेहत की सहूलत फराहम करने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कायम किए हैं। इसके अलावा तिब्बी कॉलेजों की तादाद 387 से बढ़ाकर 818 हो गई है। नीज साल 2025 तक 942 आयुष इदारे भी शुरू किए जा चुके हैं। आकाशवाणी से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर कुवैत के अमीर शेख मिशल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से टेलीफोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया में बदलती हुई सलामती से मुतालिक सूरत हाल पर नज़रियात का तबादला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया और कुवैत के इक़्तदार आला और इलाकाई सालमियत पर हमलों की भारत की जानिब से सख्त मजम्मत का इआदा किया। उन्होंने कशीदगी कम करने, जल्द अज जल्द अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए मुज़ाकरात और सिफारती अमल शुरू किए जाने का इरादा किया। जनाब मोदी ने कुवैत में कसीर तादाद में भारतीय बिरादरी की बहबूद और सेफ्टी के लिए मुसलसल ज़ाती तवज्जो के लिए कुवैत के अमीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज़ फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोज़ा सरकारी दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म मोदी इतवार के रोज़ फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों से नाइस शहर में दो तरफ़ा मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों रहनुमा भारत फ्रांस दो तरफा ताल्लुकात के सभी पहलुओं का जायजा लेंगे। इन ताल्लुकात को इस साल खुसूसी आलमी स्ट्रेटेजिक साझेदारी का दर्जा दिया गया है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में वज़ीर आज़म 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया जमहूरिया के सरकारी दौरे पर रहेंगे। साल 1993 में स्लोवाकिया की आज़ादी के बाद से किसी भारतीय वज़ीर आज़म का स्लोवाकिया का ये पहला दौरा होगा। दौरे के तीसरे मरहले में वज़ीर आज़म 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये आकाशवाणी है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों के बोझ से सारफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तेल मार्केटिंग कंपनियों को दी गई ये माली मदद मगरबी एशिया तनाज़े के पहले 78 दिनों के लिए है। इस साल माली मदद में एक्साइज ड्यूटी कटौती भी शामिल है। ज़राए ने बताया कि सोने की बरामद में कमी देखी गई है। ज़राए ने यह भी कहा कि कम अज़ कम एक साल तक सोना ना खरीदने की वज़ीर आज़म की अपील और इम्पोर्ट ड्यूटी में किया गया इजाफा सोने की बरामद में कमी की वजह बना है। ज़राए ने मजीद बताया कि मईशत की तरक्की दबाव का शिकार नहीं है और तेज़ रुझान इस बात का इशारा है कि घरेलू मईशत से मुल्क को मदद मिल रही है। ज़राए के मुताबिक बैनुल अक़वामी बाज़ार में खाद की कीमतों में काबिले ज़िक्र इजाफा हुआ है, लेकिन हुकूमत किसानों को बेहद रियायती कीमतों पर खाद फराहम कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत की ज़मीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमदोरफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS विनिमय का इफ्तिताह किया। ये निज़ाम ज़मीनी बंदरगाहों को मरकजी निज़ाम के तहत मरबूत करने की कार्रवाइयों के लिए डिज़ाइन किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। यह हवाई अड्डों और बंदरगाहों के लिए पहले से मौजूद डिजिटल निज़ाम को ज़मीनी बंदरगाहों के लिए दस्तयाब कराते हुए लॉजिस्टिक्स और इंजबाती मालूमात के महफूज और हकीकी वक्त पर मबनी तबादले को मुमकिन बनाएगा। जनाब शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यह पहल जदीद और टेक्नोलॉजी पर मबनी सरहदी इंतजाम के निज़ाम की तामीर की जानिब अहम कदम है। जनाब शाह ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म विकसित भारत 2047 के नज़रिए से हम आहंग है और ये तिजारत में आसानी, कनेक्टिविटी और कौमी सलामती को मुस्तहकम करेगा।
4: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: जनाब शाह ने जोर देकर कहा कि हुकूमत डिजिटल टेक्नोलॉजीज और मौसर इंतजामी निज़ाम को अपनाने के जरिए सरहदी सलामती के तहत अहद बस्ता है। وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ وینیمے پلیٹ فارم کا آغاز سرحدی

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

आकाशवाणी भोपाल की जानिब से हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम कहकशां को लेकर हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त जावेद। इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। सामेईन, आज के कहकशां प्रोग्राम में महफिल समा सीरीज़ के तहत हम बात करेंगे फ़र्द की ज़िंदगी में तौबा की अहमियत मौजू पर, और साथ ही लुत्फानंदोज़ होंगे मखमली आवाज़ों वाले गुलूकारों की कव्वालियों से। दोस्तों, किसी बर्तन में कोई अच्छी चीज़ डालने के लिए ज़रूरी है कि पहले उसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया जाए और उसमें कोई गंदगी बाकी न रहे। इंसान का दिल भी एक बर्तन की तरह है, जिसकी इस्लाह से इंसान का पूरा वजूद सालेहियत के सांचे में ढल जाता है और जिसके बिगाड़ से उसका पूरा वजूद बिगाड़ का शिकार हो जाता है। जैसे ज़ाहिरी गंदगी और मैल कुचैल से इंसान का जिस्म और उसका लिबास गंदा हो जाता है, इसी तरह गुनाह भी एक रूहानी गंदगी है जो कल्ब के पैमाने को नापाक और गंदा कर देता है, और इसको साफ़ करने का तरीक़ा तौबा है। परवरदिगार की शान करीमी है कि इंसान कितना भी बड़ा गुनाह करे, तौबा से गुनाह का दाग धुल जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स कुफ्र व शिर्क में मुब्तिला हो और वो उससे तायब हो जाए, तब भी उसको अपने जुर्म से मुआफ़ी मिल जाती है। दरअसल इंसान खैर व शर का मजमूआ है, ये नेकियों पर क़ादिर है लेकिन बुराइयों से आजिज़ नहीं। ना फरिश्ता है कि बुराई का ख़याल तक दिल में ना आए, और ना शैतान है कि ज़िलालत व गुमराही से कभी दिल खाली ही ना हो। इसलिए उसे इस इम्तिहान गाह में रखा गया है कि देखा जाए कि उसकी नेकियां बुराइयों पर फतह पाती हैं या बुराइयां नेकियों पर गालिब आती हैं। अंबिया के सिवा कोई इंसान नहीं जो गलती और ख़ता से यकसर महफूज हो। गलती करना इंसान की फितरत में है, अगर ये ना हो तो इंसान फरिश्ता बन जाए। अंबिया के बाद सबसे कामिल इंसान वो लोग होते हैं जिनको अंबिया की रफ़ाकत और नुसरत के लिए मुंतखब किया जाता है, लेकिन उस मकाम व मर्तबे के बावजूद बाज़ औक़ात पैगंबरों के असहाब से भी गलतियां सादिर हुई हैं। अलबत्ता अल्लाह ताला की तौफीक से उनको फौरन ही अपने गुनाह पर नदामत और पशेमानी होती है, और इस तरह यही नहीं कि उनकी ये नदामत उस गुनाह की तलाफ़ी का सामान बन जाती है, बल्कि उनका इस तरह गुनाह करना और फिर गुनाह के बाद अल्लाह ताला की शान के मुताबिक पशेमान होना बजाय खुद उम्मत के लिए उसवा करार पाता है। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हकीकत को इस तरह इरशाद फरमाया कि हर इब्ने आदम ज़रूरी ही ख़ता करता है, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार वो है जो गुनाह का इर्तिकाब करने के बाद अल्लाह ताला के दरवाज़े मग़फ़िरत पर अपनी नदामत की पेशानी रख दे और तौबा कर ले। मखलूक का मिजाज ये है कि वो इंतकाम लेकर खुश होती है, उससे उसके जज्बे अना की तस्कीन होती है और कलेजा ठंडा होता है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात पर रहमत का गलबा और वो रहमान और रहीम और गफूर और करीम है, इसीलिए उसे गुनहगारों और कोताहकारों को माफ़ करके खुशी होती है। इंसान इंतकाम के लिए बहाने ढूंढता है और अल्लाह ताला बहानों से मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमाते हैं। सामईन, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा प्रोग्राम महफिल समा कव्वालियों से सजा होता है, तो आइए सुनते हैं अपने प्रोग्राम की पहली पेशकश में ये खूबसूरत कव्वाली। समात फरमाइए।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशां, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
4: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
4: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन।

0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं मिस्टर नटवरलाल फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें हैं। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

शैलेंद्र का लिखा यह अगला गीत सुनिए फिल्म गाइड से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं। इस गीत को संगीत दिया है SD बर्मन ने।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का।
1: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गलियों पे निखार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म आराधना से। आनंद बख्शी की शब्द रचना और संगीत था एसडी बर्मन का। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म लव स्टोरी से। लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ें हैं, आरडी बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी के बोल।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म गोरा और काला का ये गीत। आनंद बख्शी की शब्द रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

एस एच बिहारी का लिखा यह गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। कश्मीर की कली फिल्म के इस गीत को संगीत दिया था ओपी नैयर ने। लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनिए मजरू का लिखा यह गीत फिल्म शागिर्द से। इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, फिल्म शागिर्द कैसे गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए संगीता गोस्वामी का ख्याल गायन, राग है मारू बिहाग।

0: अभी आपने सुना शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी।
1: राग तेलंग।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
3: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने DD न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या COVID-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
4: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की DG और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, SP की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें NTA के DG स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
2: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि CBI इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट UG पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही CBI ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताज़ा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds.

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:53 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।